ही समझाओ दिल इसको दूं या उसको दूं। इतनी बड़ी महफिल और एक दिल किसको।

खाली दिल किसको दूं या उसको दूं।

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: सभी को नमस्कार आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आस्था से आस्था आपको नमस्कार
1: नमस्कार शुक्रवार 11 सितंबर के सुबह प्रथम समाचारों में स्वागत है आप सभी का मोशन रोगियों को बिना बड़े ऑपरेशन के आधुनिक इलाज उपलब्ध कराने की पहल इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रोफेसर एडवर्ड लम शांगलिंग ने कल प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात की वे बिना कोई फीस लिए मॉरिशस में रेडियोलॉजी और कैंसर के इलाज को बेहतर बनाने में मदद करेंगे विशेष इलाज के लिए 12 मरीजों को चुना गया है छात्रों की भूमिका में दुनिया भर में गिरावट दर्ज की गई है ओईसीडी की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 वर्षों में विज्ञान में औसतन 3 अंक मैथमेटिक्स में 9 और पढ़ने में 14 अंक की कमी आई है संगठन ने जेनरेटिव एआई के बढ़ते उपयोग से इसके संभावित संबंध की ओर संकेत किया है विपो के महानिदेशक दहांग तांग पहली आधिकारिक यात्रा पर मॉरिशस में है विदेश मंत्री रितेश रामफल के साथ उनकी मुलाकात में नई खोज एआई और बौद्धिक संपदा के जरिए अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई विपो पैरेलल इंपोर्ट्स के लिए कानून बनाने में भी सरकार की मदद करेगा मालागासी कारोबारी मामी गावातु मांग की जमानत की मांग पर सुनवाई पूरी हो चुकी है बेल एंड रिमांड कोर्ट में 12 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा हल्की वर्षा के बाद भी जलाशयों की स्थिति में बड़ा सुधार नहीं आया है मऊवाकुआ फिलहाल लगभग 39% भरा है इसलिए पानी की आपूर्ति पर लगे प्रतिबंध जारी रहेंगे अमरीका 11 सितंबर के आतंकवादी हमलों के आज 25 वर्ष पूरे हो गए हैं न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए इन हमलों में करीब 3000 लोगों की जानी गई थी अवैध रूप से कचरा फेंकने के खिलाफ देश भर में जागरूकता अभियान शुरू इस अपराध पर जुर्माना 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है कचरा उठाने के लिए फैसिलिटीज को 6 नए वाहन दिए गए हैं और अब चलिए बढ़ते हैं आज की मौसम की जानकारियों की ओर मॉरिशस में ऊंची समुद्री लहरों की चेतावनी जारी है ये चेतावनी आज सुबह 10 बजे तक लागू रहेगी पूर्वानुमान आज सुबह आसमान में बादल छाए रहेंगे पूर्वी दक्षिणी और ऊंचे इलाकों में कभी कभी बादल बने रहेंगे और हल्की वर्षा होगी दोपहर बाद मौसम अधिकतर साफ रहेगा हालांकि ऊंचे इलाकों में कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 20-23 डिग्री सेल्सियस और तटीय इलाकों में 25-28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा रात में बादल छाए रहेंगे मुख्य रूप से पूर्वी दक्षिणी और ऊंचे इलाकों में रुक रुक कर वर्षा होगी न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस और तटीय इलाकों में 19 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की दिशा से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी कुछ स्थानों पर हवा के झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं शाम से हवा धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी खुले समुद्र में स्थिति बहुत खराब रहेगी करीब 4 ऊंची लहरें उठेंगी मछुआरों नाव चलाने वालों और आम लोगों को समुद्र में नहीं जाने की कड़ी सलाह दी गई है सूर्योदय सुबह 6:10 पर सूर्यास्त शाम 6:03 पर होगा
2: कंटिन्यूअस म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक

मोहतशम सामईन, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम की रूह है। ये इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है जो सहराओं को गुलजार बनाता है, दिलों को नूर से भर देता है। ये तो अता है, और जिसे ये अता हो जाए वो दुनिया की हर चीज़ को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर दुनिया की हर चीज़ छीन जाए मगर दिल में इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी रहे तो कुछ नहीं गया, और अगर सब कुछ हो मगर दिल खाली है इस मोहब्बत से तो यकीन जानिए सब कुछ होते हुए भी हम खाली हाथ हैं।

मोहतरम सामईन, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अनमोल खजाना है जो दिलों को सुकून देता है, आँखों को नूर बख्शता है और जिंदगी को राह दिखाता है।

है, ये ऐसी रोशनी है जो कभी नहीं बुझती, ये वो मोहब्बत है जिसके बगैर ईमान अधूरा है और दिल बेकरार। ये मोहब्बत हमें सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से जोड़ती है, उनके अखलाक को अपनाने पर मजबूर करती है और हमें बंदगी की असल राह दिखाती है।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, दुनिया में बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनका आपस में प्यार और मोहब्बत का रिश्ता कायम होता है। मसलन वालिदैन अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, दोस्त अपने दोस्तों से मोहब्बत करते हैं। ये सारी मोहब्बतें आरजी होती हैं, ये मोहब्बतें फ़ानी होती हैं, ये मोहब्बतें दुनिया की हद तक महदूद होती हैं। मगर सामईन, करीम व मेहरबान आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत से मोहब्बत का रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को अपनी हयात ज़ाहिरी में भी याद रखा। कब्र अथर में जिसमें अनवर को उतारा जा रहा था, तो उस वक्त भी अपनी उम्मत को याद किया, और क़यामत के दिन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को याद फरमा रहे होंगे।

सामईन इकराम, उर्दू महफिल सबाल खैर में निसार अख्तर एक बार फिर आप लोगों का इस्तकबाल करता है। यूं तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदासराई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल कमालात व मौजजात का जिक्र खा अशार की सूरत में करें या नसर के अंदाज में, ये सब सनाखानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाती हैं। बेशक नाचरीफ जब खुशुलहानी से पढ़ी जाए तो ये दिलों में इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम रोशन करती हैं। सामईन, इसी बात पर आइए ये नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलायजा फरमाइए।

मोहतरम सामईन, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आम जज्बा नहीं, ये वो नूर है जो जमानों सदियों को रोशन करता है। ये वो इश्क है जिसने बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्को अजान देने के लिए मीनार पर खड़ा किया, अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्को गार में सुकून दिया, उमर रदी अल्लाह ताला अन्को अदल यानी इंसाफ का इमाम बनाया, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्को करबला में कुर्बान होकर सरबुलंद किया। ये इश्क कौमों की तकदीर बदलता है, कब्र को जन्नत बना देता है।

काश ये इश्क हमें भी छू जाए और हमारा शुमार उन लोगों में हो जाए जिन पर सरवर कायनात शाह मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात वाजिब होगी।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का अमली सबूत देते हुए रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात व अतवार को अपनाना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपनाए हुए अहकाम पर अमल करना अशद ज़रूरी है। बिलयकीन जो कोई रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करेगा तो उसकी बरकत से उस इंसान के दिल में इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम रोशन हो जाएगी। अल्लाह तबारक व ताला हमें दो आलम के मालिक व मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।

अपना मयार जमाने से जुदा रखते हैं, अपना मयार जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते हैं। मोहतशम सामईन, इसी शेर के साथ हमारी आज की सबाल खैर नशरियात अख्तताम पजीर होती हैं। ये बज़्म मुस्तफ़ा तो ख़त्म हो रही है, मगर ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ख़त्म न होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा ता क़यामत जारी रहेगा। अल्लाह तबारक व ताला हमें मोहब्बत मुस्तफ़ा, ज़िक्र मुस्तफ़ा, इताअत मुस्तफ़ा, नस्बत मुस्तफ़ा, सीरत मुस्तफ़ा, अखलाक मुस्तफ़ा, सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सामईन, इसी खूबसूरत दुआ के साथ अपने मेज़बान निसार अख्तर को इजाज़त दीजिए। आपसे रुख्सत होने का तो दिल नहीं करता, मगर क्या करें, यही दस्तूर है। अगले जुम्मे को फिर हमारी मुलाकात होगी। आइए आखिर में सलातुस्सलाम का नजराना पेश करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह।

शक्ति। श्रोताओं प्रणाम, भक्ति में शक्ति कार्यक्रम में आप सभी का अभिवादन करती हैं पूजा। कहा जाता है जहां भक्ति वहां प्रभु प्रेम भी है, और जब भी जीवन में कोई भी समस्या या विघ्न आए तो विघ्नहर्ता स्वयं आते हैं। तो प्रेम से बोलिए गणपति पप्पा मोरिया। ये इसी गणेश वंदना के साथ इस कार्यक्रम का आरंभ करते हैं।

श्रोताओं, आज दिन है शुक्रवार और हम माता रानी को पूजते हैं। कहा जाता है शक्ति का स्वरूप है और जो भी माता रानी को पूजते हैं उनके सभी विघ्न और प्रार्थनाएं मनोकामनाएं भी पूर्ण होते हैं। जब भी आपके जीवन में कुछ भी हो तो आप माता रानी के द्वार जाइए और आप देखेंगे कि किस प्रकार माता रानी आपको अपने भक्त समझकर, बच्चा समझकर आपको फल देंगे।

कहते हैं बिना माँ के संसार का कुछ भी मोल नहीं है। तभी तो गणपति पापा अपनी माँ से, माता से बहुत प्रेम और स्नेह करती हैं। भगवान गणेश जी हमें यह भी सिखाते हैं कि बड़ा बनने के लिए केवल जान नहीं बल्कि विनम्रता और विवेक भी आवश्यक हैं। उनका विशाल मस्तक हमें बड़ी सोच रखने की प्रेरणा देता है। बड़े कान हमें अधिक सुनने और कम बोलने का संदेश देते हैं। छोटी आँखें एकाग्रता सिखाती हैं और उनका छोटा मुख हमें मितभाषी बनने की सीख भी देता है। इस गणपति पर हम केवल गणपति की प्रतिमा को अपने घर में ना लाएं, अपितु अपने गुणों को अपने जीवन में भी स्थान दें, क्योंकि जब बापा आते हैं तो अपने साथ बहुत सारी खुशियां और प्रेम भी लाते हैं और आपके सभी चिंताओं को अपने साथ ले जाते हैं। तभी कहते हैं ना कि बप्पा सबके सुनते हैं, और जब भी आते हैं तो आपके हर चिंता को दूर कर देते हैं।

तो चलिए श्रोतागण, इसी के साथ हम भक्ति में शक्ति कार्यक्रम के अंत तक आ पहुंचे हैं। आप सभी पर बप्पा की कृपा बनी रहे, पूजा को अनुमति दीजिए। मेरी ओर से सभी को प्रणाम। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें। आपसे आस्था नमस्कार।
1: नमस्कार, 12 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। कॉलेजों में पढ़ाई का स्तर केवल मॉरिशस में ही चिंता का विषय नहीं है। OECD की नई पीसा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कई देशों में छात्रों का औसत प्रदर्शन रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। 3 वर्षों में विज्ञान यानी साइंस में 3 अंक, मैथमेटिक्स में 9 और पढ़ने की क्षमता में 14 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। इस अध्ययन में 91 देशों के 7,60,000 छात्रों ने हिस्सा लिया था। बड़े ऑपरेशन के बिना कैंसर का बेहतर इलाज संभव। मॉरिशस में ऐसी आधुनिक चिकित्सा सेवाओं को विकसित करने की तैयारी है। इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रोफेसर एडवर्ड लामशांगलिन ने इस दिशा में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात की। वे बिना कोई फीस लिए देश के डॉक्टरों के साथ अपना ज्ञान और अनुभव साझा करेंगे। इस बीच विशेष इलाज के लिए 12 मरीजों की पहचान कर ली गई है। रीयूनियन मॉरिशस गांजा तस्करी जांच अब पुलिस के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर भी चर्चा में है। वकील रूबेन मुहंगा पिले का आरोप है कि कुछ अधिकारियों ने उनके मुवक्किल गुलशन गोविंद और सांसद विहोनिकलू गोविंद से वकील बदलने को कहा था। आज सुने सांसद को औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी है। हालांकि वकील का कहना है कि गुलशन गोविंद की शिकायत पुलिस ने दर्ज नहीं की। 25 वर्ष बीत गए हैं लेकिन 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों की स्मृति, उनकी यादें आज भी अमेरिका और पूरी दुनिया में जीवित। इन हमलों में 2,977 लोगों की जान गई थी। बाद की जांच में सामने आया कि CIA और FBI के पास अलकायदा से जुड़ी जानकारियां थीं, लेकिन उन्हें समय रहते एक साथ नहीं जोड़ा गया। इस त्रासदी के बाद अमेरिका ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था बदली और एजेंसियों के बीच सहयोग मजबूत किया। सीधे विमान सेवाएं फिर से शुरू हुई। सीमा व्यापार भी धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। अब दुनिया की नजर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की संभावित मुलाकात पर है। शी जिनपिंग 2019 के बाद पहली बार भारत जा रहे हैं। हालांकि

हिमालयी सीमा विवाद और बढ़ता व्यापार असंतुलन अब भी दोनों देशों के संबंधों की बड़ी चुनौती बने हुए हैं। ये मुलाकात बताएगी कि हाल के सुधार को दोनों देश कितनी दूर तक आगे ले जाना चाहते हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। कोंकावाल क्यूपिप में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड के हसम भाई सालागुन इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज दिन के सवा बारह बजे उन्हीं के मकान क्यूपिप से निकाल कर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए कोंकावाल क्यूपिप के दायर ए हबीब मस्जिद ले जाया जाएगा और दफनाने के लिए भी गहा का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट क्वार्टर पोस्ट नून। रामधनी लेन पोंपखाले में 43 साल की 43 ईयर्स ओल्ड के जसबीर रामधनी की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें गासों के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थिक कल शनिवार 12 सितंबर को दिन के 11 बजे उनके पिता लोल रामधनी के मकान पोंपखाले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावंचिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमारो At 11 a.m. शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।

चलो जी यहां पर दिन के 12:09 हुए हैं आपका स्वागत करती हूं मैं विरिता आपी के प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर और सुहाना सफर के जितने भी हमारे प्यारे प्यारे श्रोता हैं मैं आपको बता दूं कि हमारा टिकटॉक अभी थोड़ी देर में होगा लाइव सुहाना सफर तो चलिए दोस्तों यहां पर मोहब्बत का जो नगमा है वो गुनगुनाने के लिए हम तो तैयार हैं और आप हमारे साथ अगर हमारे टिकटॉक पे जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़ सकते हैं और यहां पर किरण जी का तो मैसेज पहले से ही आ गया कहते छोटी सी उम्र में लग गया रोग अरे सिर्फ गाना है अगला गाना सुनिए आपको अच्छा लगेगा

0: मोहब्बत का नगमा जुबान पर ना आता।
1: You're listening to RM3 Radio Man.

0: कोई प्यार तो करते हैं इसलिए बार-बार चले आते हैं लेकर आपके लिए वही प्रोग्राम जहां पे आपका मन लगता है जहां पे आपका दिल लगता है सुहाना सफर प्रोग्राम है सुहाना सफर जिसमें हम अपने सारे लिसनर्स का वेलकम करते हैं यहां पर हमारे साथ हैं कोई जो कहता है राम राम सिस्टर नाइस सॉन्ग थैंक यू हेलो जीवमान किरणपुरी थैंक यू फॉर लविंग दिस सॉन्ग विनोद जी नमस्कार और यहां पर सनारा हमारे साथ हैं थैंक यू सो मच चलिए जी आपका वेलकम करते हैं और यहां पर सरिता थापा हमारे साथ हैं नमस्कार आपको भी एंड रेशमा जी रेशमा नमस्कार नंदिता वेलकम निलिमा वेलकम निरेखा आपका स्वागत है एंड साथ में तनुश्री जी को भी हम कहेंगे थैंक यू सो मच उन्होंने कहा वी लव यू ओ माय गॉड दिल खुश कर दिया आपने एंड आई लव यू टू चलो थैंक यू सो मच फॉर लविंग द शो मीनाक्षी कैसी हैं आप यहां पर पूनम हमारे साथ रोशनी का वेलकम और साथ में यहां पर वैसे रेशमा जी कहती हैं कि मैं मॉरिशस को मिस कर रही हूं हमने तो सब कुछ किया ताकि आप मॉरिशस को मिस ना करें हम सब कुछ करते हैं ताकि आप मॉरिशस के साथ जुड़े रहें इसलिए लेकर आते हैं आपके लिए सुहाना सफर चलिए दुनिया भर से लोग यहां पर जुड़े रहते हैं और हमारे प्रोग्राम को एंजॉय करते हैं थैंक यू सो मच चलिए हेमंत कुमार जी आपका स्वागत है प्रणय का हम वेलकम करते हैं एंड यहां पर जो हमारे बेफिक्रे बॉयज हैं उन्होंने कहा है राधे राधे तो आपको भी हमारी ओर से राधे राधे
1: You're listening RM Free Radio.

0: सफर खाना सफर
1: क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भाई हमें कसमें देने की आदत तो नहीं है हम कोशिश करने में बड़े फास्ट है तो यहां पर चलिए नेक्स्ट गाना जो होगा हम प्रीति गणेश के नाम डेडिकेट करते हैं प्रतिमा की तरफ से उनकी बेटी अपनी का बर्थडे है उनके लिए संजीव कुमार बोझा हिमेश रेशमिया और साथ में त्रिष्टि श्रेया और तनिषा के लिए वी हैव टाइगर हाँ बिल्कुल ये हमारा टाइगर है एंड ललिता तिलक कुमार वेदना फ्रॉम कैटरबोन एंड वी हैव देवी ना जो साथ दे रही है नमस्ते वेदिता जी गाना मेरे लिए लगाएगा मेरे फ्रेंड्स हैं श्यामा प्रीति विलासा जो कि इस समय CW में काम कर रही हैं बो कुआज टू यू और यहाँ पर मिमी कुमार हमारे साथ हैं मिमी कुमार हाय मनीषा कैसी है वेलकम स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में चलिए भाई इतने सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं आप अगर चाहे तो अपनों को याद करना चाहते हैं उनके लिए कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम वेदिता का साथ है 12:25 ये है रेडियो मनोरंजन RM3 श्याम फुलमन हमारे साथ हैं हेलो जी नमस्कार स्वागत है आपका प्रोग्राम में

0: ना जा मेरे हमदम भाई, हम भी सोच रहे थे कि जाएं तो जाएं कहाँ, हमें तो बस आपके साथ कुछ पल बिताने हैं, कुछ हंसी बिताने हैं, कुछ मुस्कुराहट फैलाने हैं। और यहाँ पर एक गाना अरविंद लीना ओकला के नाम, साथ में बबीता नमस्कारम आपको, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े हैं आप। और सरिता थापा, थैंक यू फॉर लविंग दिस सॉन्ग। और यहाँ पर शोना कहते हैं कि भाई मेरे प्यार का बर्थडे है, उनके लिए कोई गाना चला सकते हैं आप, क्यों नहीं। सफर। वैसे नाम तो आपने लिखा नहीं, लेकिन अगला गाना उनके लिए। और साथ में यहाँ पर सुमानी हमारे साथ हैं, आपका स्वागत करते हैं। एंड साथ में यहाँ पर हमारे नेक्स्ट गाने के साथ जुड़ने वाले हैं स्वेट्स, उनके बच्चे वो अब्रॉड में हैं और अगर सुन रही हैं तो थैंक यू सो मच गाइस। अभी सलोनी हमारे साथ हैं, गाती हुई मुस्कुराती हुई आ गई प्रोग्राम में। देविना टू ऑल नर्सेज वार्ड 25 जीतू हॉस्पिटल में जो लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स को भूल गई आप, चलो उनके लिए भी। विनोद और साथ में उनके प्यारे से दोस्त भूमिक पटेल के लिए, जो अभी मेरे ख्याल से लंच टाइम है, खाना वाना खा रहे होंगे और गाने गुनगुना रहे होंगे। और खाने की बात चली है तो छोड़ो, जाने दो। संजू, कविता, नू और साथ में है साहिल, चलो भाभी का बच्चा आ गया। एन टी आर, बिंता और साथ में प्रीति शामलो और माधुरी, सभी साथ में हैं। मधु, प्रेमिला, उनके फ्रेंड्स शर्मिला, तन्वी और टीना के लिए गाना मांग रहे हैं। और वहीं पे रॉक्स कहते हैं हाय।
1: RM3 Radio.

0: अजी हम तो कहेंगे कि आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, सुहाना सफर है, हम सफर बन जाइए।
1: सुहाना सफर
0: के जितने भी हमारे हम सफर हैं, एक बार फिर से दिल से आपको स्वागत कहेंगे। और यहाँ पर हम अगला गाना लता आराध्या दुर्गा राज शिवानी गोविंदन जैन राणा सरोज रियांश पार्वती नोयन नाहिद जरीन प्रीति एंड वी हैव इनायत रोकर फ्रॉम साउथ अफ्रीका। डॉक्टर इनायत, आपका हम वेलकम करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। यू आर लिसनिंग टू रेडियो मनोरंजन RM3 मॉरिशस से हमारा ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है। एंड थैंक यू सो मच, आप साउथ अफ्रीका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरती परमा साथ में यहाँ पर हमारे जो अगले अगले गाने के साथ आगे बढ़ते हैं। रोहित हमारे साथ हैं। रागिनी जी हेलो, कैसे हो आप? तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर रेनू जगारू हमारे साथ हैं, उनके लिए भी गाना होगा और ये होगा फॉर जगारू फैमिली बेलवी मुगैल से जो साथ दे रहे हैं। एंड कहते हैं यहाँ पर कि बहुत अच्छा लगा कि प्रोग्राम चल रहा है। विमला विमला कैसे हो? विमला स्वागत है आपका। अनुराधा जी आपका भी।
1: You're listening to RM3 Radio।

0: RM3 Radio. Radio.
1: चलिए इसी के साथ शैनन सराफुल के नाम गाना अनुषा कीर्ति चतु वी हैव शॉन आसिया बुदू फ्रॉम इटली कैसी हो तितली साथ में बबीता अबू वहाब शुफियान कहते हैं मैं फ्रॉम मॉरिशस आरे बाबा थैंक यू सो मच आपका प्यार आपका साथ चलो तो यहाँ पर हम नेक्स्ट गाना कुशल श्री किशन के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे हाय हाउ आर यू अनिल सलाय आपका भी वेलकम करते हैं करुणा एंड शानन की तरफ से उनके हस्बैंड के लिए भी गाना होगा तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट जो हमारा प्यारा सा गाना है सुबी आपके लिए एंड लीजा आपके नाम

0: RM3 Radio.
1: चलिए तो अगला गाना सुचिता कुलुमत उनके बेटे लक्ष्य के लिए मांग रहे हैं। वहीं पे इंदिरा जी मौसलमा सैतानगे से हैं उनके बेटे निखिल के लिए। विद्या नायक को पूजा शवीना उनके हस्बैंड को याद कर रहे हैं, लेट हस्बैंड को याद करते हुए अगला गाना आपके लिए।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: ये आपका प्रोग्राम है सुहाना सफ़र, और सुहाना सफ़र में चलिए देखते हैं यहाँ पर जो हमारा अगला गाना होगा। ये हम डेडिकेट करने वाले हैं इन तमाम दोस्तों के लिए, वी हैव शबीना उनके दोस्त के लिए, लीज़ा उनके लेट हबी कविराज को याद कर रहे हैं, आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। जानती हूँ जब लोग बिछड़ जाते हैं तो यादें तो आएंगी ही, और चलो यादों के सहारे ही जिंदगी तो जीना पड़ता है। विशाल वर्मा, संध्या, जनिता हरलोल, आयशा, आयशू, थैंक यू सो मच, कहती हैं एक पैरट को देख के सारी थकान गायब हो जाती है, चलो अच्छी बात है। रेट्रो रागा, इंदिरा शाम के लिए गाना मांग रहे हैं, गिरवर, तैयब शाह, साथ में है तरुण रेड्डी, मोहिनी, राजीव निरसू, मेवी, एंड हमारे साथ है राजीव जी, कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, थैंक

0: थैंक यू। एंड आज स्पोर्ट डे है तो घर जल्दी पहुंच गई। अच्छा ठीक है, स्पोर्ट्स तो करना चाहिए। सविता जी नमस्कार, कैसी हैं आप? वेलकम करते हैं हम आपका।
1: यू आर लिसनिंग टू RM3 रेडियो मन।

0: एक बज चुका है, चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी और मिनिमल इन्वेसिव ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में वैश्विक विशेषज्ञ प्रोफेसर एडवर्ड लामशानलिन ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के साथ मुलाकात की है। प्रधानमंत्री ने उन्हें आमंत्रित किया। इंपीरियल कॉलेज लंदन में कार्यरत इस मॉरिशस मूल के डॉक्टर ने मॉरिशस में अपने ठहराव के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को मॉरिशस के डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने में मदद करने के साथ साथ कैंसर से पीड़ित रोगियों की जाँच करने और उनकी सर्जरी करने की इच्छा जताई है। पर्यावरण मंत्रालय अवैध कचरा फेंकने और गैर कानूनन डंपिंग के खिलाफ रुख कर रहा है। इस तरह कोटो में मोरी फैसिलिटीज में एक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया गया। ये घोषणा नए उपकरणों के हस्तांतरण के दौरान की गई, जिसमें भारतीय सरकार के समर्थन से उपहार में दिए गए 6 कचरा ट्रक भी शामिल। ये अभियान स्थानीय अधिकारियों के सहयोग से चलाया जाएगा ताकि आम जनता तक सीधे पहुँचा जा सके। पिछले सप्ताह से ये पता है कि मॉरिशस अपना विमानन क्षेत्र खोल रहा है। इसकी शुरुआत एक प्रशासनिक परिषद कायम होने के साथ होती है। आने वाले दिनों में नेशनल एविएशन काउंसिल कायम किया जाने वाला है। प्रधानमंत्री ने पिछले सप्ताह 3 सितंबर को इस बात का ऐलान किया था। 2001 से लेकर 2004 तक एयर एक्सेस एडवाइजरी काउंसिल के पूर्व सदस्य रहे सेन रामस्वामी ने कहा कि इससे देश के लिए भारी संभावनाएं खुलेंगी। उनके अनुसार हम विमानन परिवहन के लिए एक इलाकाई हब बन सकते हैं, खासकर व्यवसाय और कारोबार के लिए। बढ़ते हैं विदेश समाचारों की ओर। 2026 में 9 सितंबर आतंकी हमलों को 50 साल पूरे हो रहे हैं। एक चौथाई सदी बीतने के बाद भी उस दिन की तस्वीरें और पीड़ितों की कहानियां दुनिया की सामूहिक स्मृति का हिस्सा है। 9 सितंबर ने ये दिखाया कि आतंकवाद का असर केवल तत्काल होने वाली जनहानि तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो देशों की सुरक्षा नीतियों, वैश्विक कूटनीति, समाज और आने वाली पीढ़ियों की सोच में भी प्रभावित करता है। आज भी 11 सितंबर दुनिया को उन हजारों निर्दोष लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने उस भयावह दिन अपनी जान गंवाई, और उन लोगों के साहस की भी याद दिलाता है जो दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए आगे आए। रुख करते हैं भारत। दिल्ली के भारत मंडपम में शनिवार से यानी कि कल 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू होगा। सम्मेलन में ईरान के राष्ट्रपति, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, मिस्र के राष्ट्रपति, अबूधाबी के शहजादे, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख समेत कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार से शुरू हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के 15,000 जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई। संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। टैगोर रोड रिश्मा फ्लाक में

0: ठाकुर रोड रिश्मा फ्लैक में 81 साल के 81 ईयर्स ओल्ड के श्री मोहनलाल जगर, श्री मोहनलाल जगर जो मोहन नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम साढ़े चार बजे उनके घर ठाकुर रोड रिश्मा फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिश्मा फ्लैक की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4:30 PM। शुक मेरू भी इस परिवार के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: You're listening to RM3 Radio Mana.

0: छोटी सी कहानी से, बारिशों के पानी से सारे वादे भर गए। चले भाई, हमारा भी मन भर गया, आगे चले हम।
1: सुहाना सफर।
0: नेक्स्ट गाना हमारा होगा किरण जी के लिए। किरण पुरी जो वैंकूवर से हमें सुन रही हैं, उन्होंने कहा भाई प्रोग्राम तो मैंने रिकॉर्डिंग पे डाल दिया, अभी मैं उठूंगा बाद में तो सुनूंगा क्योंकि थक जाता हूँ। आई कैन फील दैट कि आप थक जाती हैं। सो थैंक यू किरण जी, आप हमारे साथ इतने टाइम तक हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहते हैं। कर्सी बैक फ्रॉम वैकेशन। अच्छा जी, तो चलिए यहाँ पर थैंक यू, आप हमारे साथ हैं। अविनाश का वेलकम, हैप्पी हैप्पी फ्राइडे आपको भी। दीप्ति गंदौरी आपका भी स्वागत करते हैं। एंड टू ऑल टिकटॉक फ्रेंड्स एंड आर एम टू टीम की आपको हेलो कहा है, थैंक यू। अभी परी हमारे साथ हैं, थैंक यू। नसीमा बर्डन हमारे, गोबर्धन हमारे साथ, शर्मिला राम भरत और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंशराज करमचंद जी, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। किसका बर्थडे है भाई, बता तो दो। चलो चांदनी के लिए गाना होगा एंड शीला रामफल के नाम भी, साथ में यही गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे दीप्ति गंदौरी के लिए जो बहुत प्यार से हमारे इस प्रोग्राम में अभी भी जुड़ी हुई हैं। हितेश नायर, शीला रामफल, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर गाना प्रिया के नाम होगा एंड वी ऑल्सो हैव सानिया, मनोज पिरतिया, कवि, तहजीब वातू और बहुत सारे दोस्त जो इस समय टिकटॉक पर हमारे लाइव है।
2: RM3 Radio.

देखो ये कौन आया भाई कौन आया हम तो कहेंगे देखो कितने सारे दोस्त आए हैं सुहाना सफर वेलकम स्वागत है आपका सुहाना सफर प्रोग्राम में रेडियो मनोरंजन आर एम थ्री पर मैं हूँ वेदिता साथ दे रही हूँ और यहाँ पर गीतों की लिस्ट में शामिल होते हैं वंदे वल विहाव जत साहब लता यश लक्ष्मी रघुबर ट्विंकल मनीता और

साथ में यहां पर जो लोग बस पुराने गाने पसंद करते हैं मैसेज ना आए कोई बात नहीं लेकिन सुन रहे हैं हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है तो साथ जहां से भी आप दे रहे हैं हम आपका वेलकम करते हैं स्वागत करते हैं चलिए इसी के साथ खूबसूरत गीतों का सफर जारी है

0: रही?
1: हाँ।
0: तेरी कसम आऊंगा।
2: शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है। वैसे जो लोग शादी का ख्याल दिल में रख रहे हैं उनको अगर चाय पे बुलाना जाए तो ठीक है, 4 बजे का आपको टाइम दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा गाना होगा किसके नाम डेडिकेट करेंगे, चलिए ये भी जान लेते हैं।
3: सफर
2: हमारे साथ है वीटी सिवासन समुगम विम, उनके बम्हेवंती का बर्थडे है सुयाक से उनके लिए एंड विमी की तरफ से उनके हस्बैंड के लिए जिनका जन्मदिन है। वी हैव रॉबिन हुड पांडे। पांडे जी कैसे हो जी? चलो मिला के लिए अफीसा प्रवीणा कुमारी रोशन शमिला कलकत्ता हमारे साथ है। चलो तो यहाँ पर वी हैव निशा नाज वॉचिंग फ्रॉम फिजी आइलैंड, थैंक यू, वी आर सो ग्रेटफुल गाइज। फिजी से कितने सारे लोग हैं हमारे साथ, हमारे टिकटॉक के साथ जुड़े रहते हैं और हमारे प्रोग्राम को एंजॉय करते हैं एंड आई होप यू आर लविंग द सॉन्ग सिलेक्शंस। ओके ललिता का भी हम वेलकम करते हैं, थैंक यू सो मच। रूबी कहती हैं कि हाय कहाँ से हो आप? मैं हम लोग हैं फ्रॉम मॉरिशस और आप सुन रही हैं रेडियो मनोरंजन RM3। ठीक है ज्योति चमन नमस्कार, मिलानी वेलकम और साथ में यहाँ पर हमारे टू ऑल माई फ्रेंड्स जो अभी लंच कर रहे हैं बना पिची, मालिनी जी नमस्कार एंड यही FCI टीम के लिए गाना होगा। वैसे रूबी साउथ अफ्रीका से है, अभी अभी साउथ अफ्रीका से एक मैसेज आया था, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ हमारे साथ है पूर्णिमा गोपोल, थैंक यू फॉर द लव, थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। हम भी जब शुरू शुरू में यहाँ पे आए थे अकेले अकेले ही आए थे और फिर उसके बाद एक फिर दो फिर तीन फिर चार फिर यहाँ पर दोस्तों की एक ऐसी लंबी लिस्ट तैयार हो गई और क्या ही कहें हम आपको, यहाँ पर इतनी जैसे हमारी एक फैमिली सी बन गई है और इस फैमिली को मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप लोग रोज़ 12 से 2 हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमारे गानों को छोड़ो आप हमारे साथ बात करते हैं, हमारे मैसेजेस जो हैं आपके मैसेजेस हम तक पहुँचते हैं, जहाँ पर हर एक बार आप बताते हैं किस तरह से आप हमारी इस फैमिली का हिस्सा हैं। सो थैंक यू वंस अगेन, एन्जॉय द सॉन्ग।

0: सपने में भी सोचा न था अपना कोई बन जाएगा। जी हाँ, हम सोचते नहीं हैं। और देखो ना, दिल का दिल से कैसे रिश्ता बन जाता है और कैसे एक दूसरे के लिए हम इतने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं।
1: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
0: चलिए यहाँ पर नेहा माया बच्चू जो कि डर्बन से हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका वेलकम करते हैं। क्या बात है। रोशन रितु सभी दोस्तों के लिए गाना मांग रहे हैं। महेंद्र प्रसाद जी आपकी ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू। वी हैव रॉकी कृष्णन किरण सिंह फ्रॉम कैथो से अमीना हमारे साथ हैं, थैंक यू। अनुराधा को गाने अच्छे लग रहे हैं, वहीं पर पिंकी को कहेंगे वेलकम। नीला रामा थैंक यू। दीप रिवर से आप साथ दे रहे हैं, आपकी सासू माँ का बर्थडे, उनको हैप्पी हैप्पी बर्थडे। और यहाँ पर हम नेक्स्ट गाना जो है माधवी जी आपके लिए डेडिकेट करना चाहेंगे, विनय कतवारू आपके लिए भी। एंड यही गाना होगा आपके लिए। वैसे तो शानन को गाने अच्छे लग रहे हैं, तो थैंक यू, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। समीता हमारे साथ हैं और नेक्स्ट गाना उनके प्यार संजय के लिए। रुपेश सी बारन को हेलो।

0: करिश्मा जहांगी एंड करिश्मा आपको हेलो. देवी मोहन थैंक यू फॉर लविंग दिस सॉन्ग एंड यही गाना शाम पुरन के नाम. हरे कृष्णा जी आपको भी एंड लीना जी आपका स्वागत करते हैं.
1: RL Free Radio Radio Radio
0: वैसे श्याम जी जो हैं वो हॉलैंड से हैं और हमारे साथ जुड़े हैं. लीना वेलकम. थैंक यू श्याम जी. एंजॉय करें अगला गाना. रिया की तरफ से गाना उनके हस्बैंड कृष्ण मॉम बसंती दुखित राम और रामचरण फैमिली के नाम.

0: जैसे कि सलोनी रामफल, जगदीप सिंह, वेलकम, स्वागत है आप सबों का, कल्याणी हरि आपका भी, और साथ में है देवी।
1: You're listening RM Free Radio. Radio. Radio.
0: और ये गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे आशा जानू के लिए, जो कॉटेज से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनकी मामा कुमारी, सभी जानू फैमिली, सभी लिसनर्स के नाम। ललिता जी थैंक यू, वाकवा से साथ दे रही हैं और हमारे गीतों को एंजॉय कर रही हैं और आपको गाने पसंद आए, बहुत अच्छा लगा। ललिता जी स्वागत, और साथ में दीनू मोहिनी आपका भी, बुजावन नौशाद और विजय लक्ष्मी, वनकम आपको।

0: भाई हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हमारे दोस्त हमसे रूठ जाए, इसलिए लेकर आते हैं आपके लिए खूबसूरत पुराने गाने और ये हमारे पुराने गीतों का ही प्रोग्राम है। माला बुद्धू जी आपका स्वागत करते हैं और यहाँ पे शाम जो है कहते हैं कि इस कुमार सानू को कोई गाना चला सकती है। वैसे एंड में देखूंगी, अभी तो मेरे पास बहुत सारे गाने हैं लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच श्यामा महिराली, आपका वेलकम करते हैं। हैव अ ब्यूटिफुल वीकेंड। ये हैं दीप्ति की तरफ से। करुणा जी वेलकम, स्वागत करेंगे आपका।
1: RM3 Radio.
0: यहाँ पे we have Sammy from South Africa. Hi Sammy, how are you? Mishti Prince हमारे साथ जुड़े हैं और वहीं पे जुड़े हैं हमारे साथ रेणुका चगुजी।

0: चलिए जी, हम भी चाहते हैं कि प्यार की ये धागे जो हैं वो टूटे नहीं, आप लोग हमारे साथ रहे। नेक्स्ट गाना हम एना शेस देविका कुनाल जी के नाम डेडिकेट करेंगे। रोशनी, सुनीता, राजन, अनीता फ्रॉम त्रियोले, किरण कुमार, गोविंद, थैंक यू फॉर लविंग द सॉन्ग्स फेवरीज, प्रतिमा, गंगा और गीता का करते हैं स्वागत, साथ में शारदा और बेबू का भी।
1: कहता

चलिए विदुला शर्मा सी गोबिन हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। एंड यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे आरजे रोहित एंड सज्जत, थैंक यू सो मच। यहाँ पर नेक्स्ट गाना जो होगा डेडिकेट करते हैं सभी हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों के नाम, साथ दे रहे हैं हमारे वी हैव रुजीदा निज़ाम और मानसी, तुषिका, अनीता, बिमल देवी, रेखा, केविन एंड कवीना, सज्जद एक बार फिर थैंक यू एंड नशरीन की तरफ से उनके हस्बैंड फिरोज उजिया के लिए। चले जाने का टाइम हो गया है और अगर वक्त ने चाहा तो फिर मिलेंगे। थैंक यू लीना साथ देने के लिए, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।

0: 94.96, 98.2। आप सुन रहे हैं RM3।
1: घड़ी मिलाते चलिए, इस समय दिन के 2 बजे हैं।

0: करते हैं। एक बार फिर सुनते हैं आपसे रजनी, देश विदेश की खबरें। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं परिवहन संबंधी इस खबर के साथ। कार्बन की मात्रा कम करना और हमारी सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाना, इस ट्रांजिशन में तेजी लाने के वास्ते निजी ऑपरेटरों से बस मॉडर्नाइजेशन स्कीम से गुजरने की मांग की जा रही है। एक इलेक्ट्रिक बस खरीदने के लिए 3.5 मिलियन रुपए तक की फाइनेंसिंग मुमकिन। बहुत जल्द UNDP और ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी द्वारा समर्थित प्रोमोटिंग लो कार्बन इलेक्ट्रिक बस ट्रांसपोर्ट इन मॉरिशस परियोजना के संदर्भ में ये सहायता राशि बढ़ाई जाएगी। पिछले सप्ताह से ये पता है कि मॉरिशस अपना विमानन क्षेत्र खोल रहा है। इसकी शुरुआत एक प्रशासनिक परिषद कायम होने के साथ होती है। आने वाले दिनों में नेशनल एविएशन काउंसिल कायम किया जाने वाला है। प्रधानमंत्री ने पिछले सप्ताह इस बात का ऐलान किया था। 2001 से लेकर 2004 तक रहे एयर एक्सेस एडवाइजरी काउंसिल के पूर्व सदस्य सेनराम सामी ने कहा कि इससे देश के लिए भारी संभावनाएं खुलेंगी। उनके अनुसार हम विमानन परिवहन के लिए एक इलाकाई हब बन सकते हैं, खासकर व्यवसाय और कारोबार को लेकर। इन पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बारिश हुई है, लेकिन हमारे जलाशयों को भरने के लिए ये पर्याप्त नहीं। CWA के महानिदेशक श्यामतानु के अनुसार माओवाकवा अभी भी 39% भरा है। उनका कहना है कि करीब 40% होने पर भंडारण का संचालन अच्छी तरीके से किया जा सकेगा, जबकि 20% से कम होने पर स्थिति चिंताजनक हो जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप पाबंदियां बरकरार है। CWA मौजूदा भंडारण को नवंबर दिसंबर महीने तक बनाए रखना चाहता है। साथ ही बारिश की स्थिति पर भी नजर है, जिसके बाद ही संभावित बदलाव स्ट्रैटेजी तय की जाएगी। विदेश समाचारों में भारत में दिल्ली के भारत मंडपम में कल 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू। सम्मेलन में ईरान के राष्ट्रपति, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, मिस्र के राष्ट्रपति, अबूधाबी के शहजादे, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख समेत कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। इस तरह 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के 12,000 जवानों के साथ अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई है। भारत मंडपन में होने वाले सम्मेलन को देखते हुए दिल्ली के संवेदनशील इलाकों और विदेशी मेहमानों की आवाजाही वाले मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। म्यांमार के दूसरे सबसे व्यस्त मंडले इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 2 दिनों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। सुरक्षा सूत्रों ने AFP को इसकी पुष्टि की। ये फैसला एयरपोर्ट पर हुए उस ड्रोन हमले के ठीक एक दिन बाद आया, जिसमें सैन्य समर्थित सरकार ने लोकतंत्र समर्थक विद्रोहियों पर सुसाइड ड्रोन से हमला करने का आरोप लगाया था। संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।

0: साहित्य और परंपरा।
1: सभी श्रोताओं का हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। जैसा कि आपका जाना पहचाना कार्यक्रम है गीत नृत्य और परंपरा। श्रोताओं, आज हमारी टीम में यज और साथ में उरुसा जी हैं और प्रोडक्शन सीट पर बैठे हुए हैं रितेश महाबिल जी। और आज के हमारे अतिथि हैं जो कि डॉक्टर राजशेखर जी हैं, महात्मा गांधी संस्थान ICCR चेयर पर हैं हिंदी के लिए, और साथ ही उनको आप अनेकों कार्यक्रमों में मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग से सुनते रहते हैं। अनेक कहानियों का सिलसिला उनका चलता रहता है। आज तक उन्होंने 55 कहानियाँ हमारे श्रोताओं के साथ बांट चुके हैं और भी अनेक अनुभव आज वह हमारे साथ साझा करेंगे, क्योंकि हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर उनकी एक विशेष पुस्तक भी लोकार्पित हुई है, सॉलिटेयर वाली, जिसमें अनेक अन्य कहानियाँ भी हैं जो कि हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में विश्व हिंदी सचिवालय में विमोचन हुआ उसका। आप सब श्रोताओं के साथ मिलकर हम स्वागत करते हैं डॉक्टर राजशेखर जी का जी। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आज के गीत नृत्य और परंपरा कार्यक्रम में। वैसे तो गीत नृत्य और हमारी संस्कृति परंपराएं सभी में हिंदी भाषा विशेष है, क्योंकि वे एक सांस्कृतिक धरोहर है, परंपराओं का उसका एक लंबा इतिहास है, और साथ ही ये सुरक्षित इतिहास भिन्न लोगों को, संस्कृतियों को एक साथ जोड़ता है, एक बहुत ही सुदृढ़ सेतु बनाता है। तो हम आपका स्वागत करते हैं, और दो दिन बाद हम हिंदी दिवस मनाने जा रहे हैं जो कि भारत की राजभाषा घोषित हुई थी 14 सितंबर को, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर भी अनेकों संस्थाओं ने, बहुत सी बैठकाओं ने हिंदी दिवस का आयोजन किया। जहाँ आप कार्यरत हैं महात्मा गांधी संस्थान में भी पूरे सप्ताह तक हिंदी के कार्यक्रम चले। तो हमारे गीतों नृत्यों और हमारी संस्कृति परंपराओं के साथ हिंदी भाषा को कहाँ जोड़ते हैं आप सर?
2: आपका हार्दिक आभार मैम, और हमारे जो श्रोतागण हैं और दर्शकगण हैं जो हमें सुन और देख रहे हैं उनका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया कि जब गीत नृत्य और परंपरा की बात करते हैं
1: जी,
2: तो उसमें भाषा की क्या स्थिति होती है।
1: बिल्कुल,
2: भाषा जो है एक सांस्कृतिक सेतु के रूप में जो है भाषा काम करती है
1: जी,
2: यानी कई संस्कृति के
1: को जोड़ने का माध्यम,
2: जोड़ने का माध्यम जो है एक ब्रिज के रूप में, एक सेतु के रूप में, एक पुल की तरह जो है भाषा काम करती है। और भारत जहाँ की लगभग हजारों भाषाएं बोली जाती हैं, कहते हैं कि 100-100 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, संस्कृति के रंग रूप बदल जाते हैं
1: जी,
2: वहाँ जब हम देखते हैं तो हिंदी भाषा ने जो है इस सेतु की भूमिका बहुत अच्छे ढंग से निभाई है। तो केवल भारत ही नहीं बल्कि जो हमारा लघु भारत मॉरिशस है या पूरे विश्व में जहाँ भी गिरिमिटिया लोग गए या भारतीय मूल के लोग गए, चाहे व्यापार करने के लिए गए हों या अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए गए हों या अन्य कारणों से गए हों, वहाँ भी उन्होंने अपनी संस्कृति को जो है हिंदी भाषा के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो हिंदी का महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है वैश्विक स्तर पर, और मैं मानता हूं कि हिंदी जो है पूरे विश्व को प्रेम से जोड़ने वाली भाषा है।
1: बिल्कुल, और आज के तिथि में हम जब बात कर रहे हैं तो 2026 के हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये थीम रखी गई है, पारंपरिक ज्ञान के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंचने की।
2: जी,
1: तो
2: जी, जी।
1: जब हम पारंपरिक ज्ञान की बात करते हैं तो वो तो हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति सब के बारे में है, जो कि आज की युवा पीढ़ी को हमें AI से जोड़ते हुए, प्रौद्योगिकी से जोड़ते हुए इसको बढ़ावा देना है, हिंदी भाषा को आगे लेके चलना है।
2: बिल्कुल,
1: इस पर आपका क्या विचार है?
2: देखिए, एक समय था जब हम इंटरनेट पर बैठते थे तो हमें हिंदी में कोई सामग्री नहीं मिलती थी
1: जी,
2: आज वह समय है कि हिंदी में इतनी सामग्री है, कहानियां है, उपन्यास है, संगीत है
1: जी।

0: नृत्य के जो भाव भंगिमाएँ हैं सब कुछ है, जो हमारी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, सब कुछ उपलब्ध है। जो पौराणिक ग्रंथ हैं वे सभी आपको पीडीएफ रूप में जो है आपको वहाँ पर मिल जाते हैं।
1: तो आपका कहना है कि लोक गीतों और पारंपरिक संगीत की वैश्विक गूंज जो है हिंदी भाषा से है।
0: बिल्कुल, देखिए संगीत और लोकगीत जो है वह किसी भी समाज के जो है वो प्राण होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: है ना, उसके बिना तो जीवन ही अधूरा है। जैसे
1: जब हम श्वासों की बात करते हैं तो उसमें भी तो एक लय ताल है।
0: जी बिल्कुल, आप देखते हैं कि जो हमारे 16 संस्कार हैं
1: जी,
0: संगीत के बिना अधूरे हैं।
1: बिल्कुल,
0: हम विवाह संस्कार में जाते हैं वहाँ भी संगीत है, हम जन्म उत्सव मनाते हैं वहाँ भी संगीत है।
1: बिल्कुल,
0: मृत्यु
1: अभी
0: तक
1: हमने जन्माष्टमी मनाई
0: जी,
1: तो 16 कलाओं के
0: बिल्कुल
1: अवतार को हमने पूजा ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी।
0: और जब हम गंगा तालाब की ओर जाते हैं
1: जी,
0: देखिए रास्ते भर संगीत है।
1: बिल्कुल,
0: और प्रकृति में ही संगीत है। जब हम सुबह उठते हैं चिड़ियों की चहचहाट है, है ना, हवा हवा की एक आवाज है, सुरीली आवाज,
1: पेड़ों में पत्तों में आवाज,
0: समुद्री तट पर जाते हैं तो वहाँ एक संगीत है,
1: लहरों का संगीत है,
0: संगीत है
1: जी।
0: यदि वह ना हो तो जीवन ही अधूरा है।
1: बिल्कुल,
0: और जब हम किसी से प्रेम से बात करते हैं वहाँ भी संगीत है
1: जी।
0: जब हमसे कोई प्रेम से बात करता है तो हमें अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे हमें संगीत सुनना पसंद हो। इतना ही नहीं, अब तो यह भी रिसर्च हो रहे हैं कि कई लोगों ने यह प्रयोग किया कि अपने खेत में उन्होंने मोहम्मद रफ़ी या जो भी या क्लासिक जो म्यूजिक है
1: जी, उसको,
0: शास्त्रीय संगीत, उसको उन्होंने जब वहाँ बजाया तो देखा कि जो उनका उत्पादन है
1: वो फसल
0: जो है वो बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल
0: ठीक है। अभी भी मुझे याद है कि जब कोविड का समय था
1: जी,
0: तो चेन्नई में एक जूलॉजिकल पार्क है, अन्ना जूलॉजिकल पार्क है, जू है, तो वहाँ सब लोग जा नहीं रहे थे, तो सभी जानवर जो हैं वो बीमार पड़ने लगे क्योंकि सब बंद है,
1: बंद है,
0: और कोई आदमी आ नहीं रहा है। उन्हें भी अच्छा लगता है कि कोई हमें देखने आता है, रोज़ हमसे मिलने आता है, तो कोई आ ही नहीं रहा है। और जब कोई आ नहीं रहा है तो वे सब बीमार पड़ने लगे। तब फिर वहाँ क्या किया गया कि सभी जगह जो है स्पीकर वगैरह लगा कर जो है गाना बजाना, आदमी की आवाज़ सुनाना, ये किए गए, तो सब नॉर्मल हुए कि नहीं ऐसा नहीं है कि सब लोग हमारे आसपास हैं,
1: आसपास हैं है। तो देखिए प्रकृति से जुड़ते हुए मानव हो कोई भी प्राणी
0: जी, बिल्कुल
1: जीव जंतु जो भी है उसे संगीत से कहीं ना कहीं
0: है।
1: प्रेम है।
0: बिल्कुल,
1: बिना संगीत के हम कुछ नहीं सोच सकते
0: जी, जी। आप देखिए कई तरह की चिड़िया है
1: जी,
0: है ना, सबकी आवाज अलग अलग है,
1: अलग अलग है। बिल्कुल,
0: है ना, ईश्वर ने हमें बनाया है, ठीक है, इतना बड़ा आर्टिस्ट, ईश्वर से बड़ा कलाकार तो कोई नहीं,
1: कोई नहीं है।
0: लेकिन आप देखिए कि ईश्वर इतने बड़े कलाकार हैं कि सबको अलग बनाया।
1: बिल्कुल,
0: रंग रूप में, उसकी भाषा में, उसकी उनकी ध्वनियों में, सब में अलग है,
1: अलग है।
0: हम बोल रहे हैं तो साफ पता चल रहा है कि राज बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं तो पता चल रहा है कि अंजू मैम बोल रही हैं
1: जी,
0: है ना, कोई फोन पर भी बोलेंगे अच्छा आप बोल रहे हैं।
1: आवाज से पहचान लेते हैं,
0: आवाज से हम पहचान लेते हैं,
1: हम एक दूसरे को आवाज से पहचानते हैं,
0: सबकी आवाज अलग
1: पर हो, कहीं भी हो, हम बिना देखे आवाज से हम
0: यानी इस
1: परिचित हो जाते हैं।
0: इस पूरी सृष्टि में यदि 800 करोड़ लोग हैं
1: जी,
0: सबकी आवाज अलग अलग है।
1: बिल्कुल,
0: अलग अलग भाषा है, अलग अलग तरीका है। उसी तरह से तो ये जो संगीत है
1: जी,
0: ये संगीत सभी हमारी जो ये प्रकृति है इसी में निहित है, और वहीं से हमने एक एक ध्वनि को ग्रहण किया है
1: जी।
0: और आप देखेंगे कि जो भाषा है वह भी एक ध्वनि है, और भाषा के बिना संगीत अधूरा है।
1: तो जब हम हिंदी शब्दावली और संवाद के माध्यम से नृत्य की सार्वभौमिक भाषा का प्रसार
0: जी,
1: इस पर आपका क्या विचार है?
0: देखिए आप देखेंगे कि भारत में जो नृत्य की जो परंपराएं हैं
1: जी,
0: उसमें आप देखेंगे जैसे भरतनाट्यम है, कथक है, ओडिसी है, कुचिपुड़ी है
1: जी,
0: या विभिन्न लोक नृत्य हैं
1: जी,
0: जैसे भांगड़ा, गरबा, बिहू, घूमर, ये केवल शारीरिक मुद्राओं का ही विन्यास नहीं है बल्कि वे आध्यात्मिक, प्रकृति प्रेम और लोक कथाओं के जीवंत दस्तावेज हैं। ये नृत्य जो है
1: जो आप,
0: तो हाँ आप देखेंगे कि ये जो नृत्य हैं इनके जो, इनकी जो शैलियाँ हैं, जब हम इसको वैश्विक मंचों पर जब इसको हम प्रस्तुत करते हैं तो वहाँ पर हिंदी शब्दावली की जरूरत होती है, वहाँ पर सांस्कृतिक संदर्भ की जरूरत होती है, वहाँ कथाओं की जरूरत होती है,
1: संवाद की आवश्यकता
0: होती है। आप देखेंगे कि जहाँ नृत्य होते हैं ठीक है, जब हम सभी तरह के वाद्य यंत्र जब बजाते हैं
1: जी
0: है ना, तो उसमें भाषा की, तो भाषा की ही प्रतिध्वनि है,
1: बिल्कुल
0: है ना। यदि हम वाद्य यंत्र ना बजाएं तो नृत्य अधूरा
1: रह जाएगा, हो भी नहीं पाएगा,
0: नहीं है
1: संभव हाँ, नहीं
0: जी,
1: है
0: जी जी। और पर्दे के पीछे भी हम उस तरह के कई बार संवाद करते हैं, आवाज करते हैं या फिर कोई गीत बजाते हैं, तभी जो है नृत्य भी जो है हमारा सफल होता है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे नृत्य हैं जिसकी पृष्ठभूमि में जैसे हिंदी के पद,
1: बिल्कुल
0: हिंदी की कविताएं, कबीर के दोहे,
1: सभी गाए जाते हैं
0: जी जी, कबीर के दोहे
1: बिल्कुल,
0: तुलसीदास के भजन
1: जी, सूरदास के दोहे
0: है ना, मीराबाई की रचनाएं
1: बिल्कुल,
0: ये सब प्रस्तुत किया या जो हमारे संत कवि हैं उनकी रचनाओं को प्रस्तुत करते हैं। उससे क्या होता है कि नृत्य भी बहुत ही सशक्त ढंग से प्रस्तुत कर पाते हैं
1: जी।
0: यदि ये ना हो हमारे पास, उनके दोहे ना हो, उनकी कविताएं ना हो, उनके गीत ना हो, उनके भजन ना हो,
1: जो हो
0: तो फीके लगेंगे।
1: वेद भी हैं, गाए ही जाते हैं मंत्र
0: जी जी जी,
1: गायन है उसमें
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जब देखते हैं तो आप देखेंगे कि चाहे वह गीत हो और नृत्य हो, तो गीत और नृत्य को हम भाषा से अलग कर ही नहीं सकते,
1: और जिसमें हिंदी भाषा बहुत सशक्त है।
0: हिंदी भाषा तो जरूरी ही है, हिंदी भाषा के बिना आज के समय में आप देखेंगे कि हिंदी भाषा के बिना यह गीत नृत्य और जो ये उसकी जो लंबी परंपराएं रही हैं वह
1: भारतीय जो है शास्त्र
0: बिल्कुल
1: जो भी है
0: बिल्कुल,
1: दर्शन शास्त्र ले लें तो कितना महत्वपूर्ण है उसमें हिंदी की भूमिका।
0: नृत्य की जो सबसे बड़े नृत्यकार कौन है, कौन नर्तक है सबसे बड़े, भगवान शिव ठीक है
1: जी,
0: और
1: आदि योगी वो नित्य नटराज वो
0: हाँ नटराज वही हैं
1: बिल्कुल,
0: और उनकी जो भंगिमाएं हैं
1: जी
0: है ना, और भंगिमाओं के साथ जो जब वो डमरू की जो आवाज है अलग अलग है
1: बिल्कुल
0: है ना, गुस्से में है तो उसकी आवाज अलग है,
1: अलग है,
0: खुशी में है तो उसकी आवाज अलग है,
1: नृत्य में भी जब रौद्र रूप में है तो वो तांडव है
0: जी,
1: नहीं तो आनंद तांडव है।
0: और इन सब से जब हम जोड़ते हैं तो हम भरत मुनि के नाटशास्त्र को कैसे भूल सकते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: जिसमें कि नृत्य भाषा के सामंजस्य को इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है।
1: चलिए हम एक गीत सुनते हैं, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी हमारी।

0: संगीत नृत्य और परंपरा।
1: जो श्रोता हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं गीत नृत्य और परंपरा में, उनकी जानकारी के लिए हम बताते हैं कि आज हमारे अतिथि डॉक्टर राजशेखर जी हैं, जो कि महात्मा गांधी संस्थान में ICCR हिंदी पीठ पर कार्यरत हैं और हमारे साथ बहुत सारी ज्ञान की बातें हमें बता रहे हैं, जो कि है गीत नृत्य और परंपराओं से जुड़ी हुई। तो जब हम बात करते हैं डॉक्टर जी, तो परंपराओं का माध्यम, हमारे रीति रिवाजों का माध्यम और भारतीय दर्शन का जो एक वैश्वीकरण है, उस पर आप क्या विचार देंगे हमारे श्रोताओं के लिए?
2: जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जब हम परंपरा की बात करते हैं ना, तो एक उसमें एक आदर्श शब्द जोड़ दीजिए।
1: जी
2: ठीक है। जब हमारे घर में कोई बच्चा कुछ उल्टी सीधी बात करता है तो या कुछ अलग निर्णय लेना चाहता है, तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये हमारी परंपरा नहीं रही है।
1: बिल्कुल, ये हमारे घर में नहीं होता है।
2: हाँ, नहीं होता है, ये हमारी परंपरा नहीं है बेटा, आप ऐसे नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल
2: ठीक है। यानी परंपरा जो है सदियों से चली आ रही जो है वे रीति रिवाज और जो हमारे एक आदर्श रूप है समाज का।
1: मैं यहाँ पर एक विचार साझा करना चाहूंगी।
2: जी।
1: मैं कॉन्वेंट में पढ़ी, पिताजी को उठ के मैंने सुबह कहा गुड मॉर्निंग, क्योंकि स्कूल में हमें सिखाया गया कि आप जब भी सवेरे उठें तो गुड मॉर्निंग बोलें। उसी दिन पिताजी ने गुड मॉर्निंग का जवाब गुड मॉर्निंग से दिया। मेरी माँ ने रसोई में ले जाके मुझे कहा, बेटे गुड मॉर्निंग स्कूल में बोलना, घर में आपको नमस्ते ही बोलना है।
2: जी।
1: तो कहाँ वो हमारे को जोड़ गई हमारी परंपराओं से।
2: बिल्कुल,
1: कि हमारे घर में गुड मॉर्निंग नहीं चलता है, नमस्ते ही चलता है। आप अपने स्कूल में कॉन्वेंट में पढ़ रही हैं तो आप वहाँ गुड मॉर्निंग अवश्य बोलें।
2: जी।
1: तो ये उदाहरण है।
2: हाँ, मैं उसमें और जोड़ना चाहूँगा
1: जी
2: कि हमारे यहाँ ना गुड मॉर्निंग है ना नमस्ते है, सीधे चरण स्पर्श है। ये हमारी परंपरा है।
1: बिल्कुल,
2: जब बड़े लोग आते हैं मिलते हैं, माँ पिताजी हैं, तो हम क्या करते हैं उनके चरण स्पर्श करते हैं।
1: जी।
2: और यह मान्यता है कि उनके चरण स्पर्श करने से जो है उनका प्यार और आशीर्वाद मिलता है, फिर हमारे जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं।
1: बिल्कुल,
2: यानी
1: और हमारे जीवन में बड़ों के आगे झुकना सीखना
2: जी
1: एक बहुत आवश्यक चीज है, जो कि झुक कर रहे बड़ों के सामने, सर उठा कर नहीं।
2: बिल्कुल, बिल्कुल। हम बहुत बड़े ज्ञानी हो सकते हैं, हम बहुत बड़े पद पर जा सकते हैं
1: जी,
2: लेकिन हम अपने माँ पिता से या अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, हम उनसे बड़े नहीं हो सकते। यह हमें मानना चाहिए, जानना चाहिए और यही हमारी परंपरा है। तो परंपरा को हम इस रूप में लेते हैं। अब जब आप ये बोल रही थी कि यदि हम इसको सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में जब हम परंपरा की बात करते हैं, तो कई तरह की परंपराएं होती हैं।

0: हैं
1: जी,
0: जो सबसे एक वेदों से चली आ रही परंपरा है
1: जी,
0: मान लीजिए कि वेद में जो बातें कही गई हैं
1: बिल्कुल,
0: या जो पौराणिक ग्रंथों में कही गई हैं,
1: उपनिषदों में
0: कही गई हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो रामायण में बातें कही गई हैं या महाभारत में कही गई हैं, और ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवत गीता है
1: जी।
0: तो यहाँ जो भी जीवन के दर्शन हैं वे कहीं न कहीं हमारी परंपरा से जुड़ते हैं। और इस संदर्भ में मैं यहाँ पर हिंदी भाषा को जोड़ना चाहूँगा कि इन ग्रंथों में जो भी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं
1: जी,
0: आज के संदर्भ में पूरे विश्व में हिंदी भाषा के माध्यम से वह लोगों तक पहुंच रही है। एक तो यह बात हुई
1: जी।
0: दूसरी बात हुई कि कई परंपराएं जो होती हैं वह है लोक परंपरा। कई बार यह लोक परंपरा जो है वह यहाँ लिखा हुआ नहीं है,
1: बिल्कुल
0: है ना। जैसे आप देखेंगे कि मॉरिशस में पहले भोजपुरी में लोक कथाएं नहीं लिखी हुई थी
1: जी,
0: तो हमारे जो गुरु जी हैं प्रहलाद राम शरण जी ने उनको अपने दादी नानी से सुनकर या बुजुर्गों से सुनकर उन्होंने लिपिबद्ध किया
1: जी।
0: लेकिन वो हमारी जो है लोक परंपरा है, उसमें लोक गीत है, लोक संगीत है, लोक कथा है,
1: अनुभव है जी,
0: जीवन का अनुभव। और जब हम उसे बिल्कुल जब हम उसे अक्सर हम देखते हैं कि जो लोक परंपराएं हैं वह हम देखते हैं या फिर सुनते हैं, पढ़ते नहीं हैं।
1: अब ये गीत गवाही ही ले लीजिए,
0: बिल्कुल
1: जो गीत गाए जाते हैं
0: जी,
1: वो लिखित तो नहीं थे,
0: नहीं थे।
1: दादी नानियां गाती रहती थी, नाचती भी थी, तो वो लिखित परंपरा नहीं थी, वो हमारी लोक संगीत और लोक परंपरा थी
0: जी। और आप जानते हैं कि सरिता बुद्धू जैसे लोगों ने, मैडम जैसे लोगों ने उनको जो है आगे बढ़ाया, लाया और संजोया और प्रस्तुत किया, तो उसे संजोना भी हमारा जो है एक
1: कर्तव्य बनता है।
0: जब हम भारतीय संदर्भ में लोक परंपरा की बात करते हैं तो एक तो मैंने कहा कि कोई भी लोक परंपरा भाषा के माध्यम से ही एक दूसरे के सामने पहुंचती है, यह एक महत्वपूर्ण है। अब देखिए कि हमारे यहाँ जो ज्ञान मीमांसा है, जो ज्ञान की परंपराएं
1: जी,
0: जो पूरे विश्व में बहुत ही लोकप्रिय भी हैं और सब लोगों के लिए उपयोगी भी हैं
1: जी,
0: जैसे आयुर्वेद,
1: बिल्कुल
0: आयुर्वेद आप देखेंगे कि केवल हिंदी भाषा में नहीं बल्कि भारत की कई भाषाओं में, खास करके आप जब मलयालम में आप देखेंगे उसमें सबसे ज्यादा आयुर्वेद के बारे में लिखा गया है, संस्कृत में तो है ही,
1: बिल्कुल।
0: और आज का जो समय है वह कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता का समय है
1: जी,
0: AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
1: जो कि आज की थीम भी बनी हुई है हिंदी दिवस के लिए।
0: और ऐसे युग में अब किसी भी भाषा में कोई भी अच्छी सामग्री है तो वह जिन लोगों के पास पहुंचानी है, जो उनकी जो भी भाषा है हम वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इंटरनेट की दुनिया में यदि हम किसी वेब पेज पर जाते हैं और वहां मान लीजिए कि कोई सामग्री फ्रेंच में है, बस आप 10 सेकेंड में उस पूरी सामग्री को, पूरे पेज को, जो वेब पेज है, आप 10 सेकेंड के अंदर आप अपनी भाषा में, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, क्रियोल हो, भोजपुरी हो, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कोई मराठी, कोई भी भाषा हो, उसको आप 10 सेकेंड के अंदर पूरे वेब पेज को आप अपनी भाषा में देख सकते हैं पढ़ सकते हैं,
1: बिल्कुल।
0: और चूंकि मैं भारतीय संदर्भ की बात कर रहा हूँ तो आज जो भारत की जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो लोक नृत्य है, लोक संगीत है, वह कई भाषाओं से गुजरते हुए पूरे विश्व में फैल रही है।
1: बहुत सुंदर।
0: अब वो अब जो है
1: बैरियर नहीं है,
0: बाधा नहीं है,
1: अब सेतु है,
0: अब सेतु है,
1: बाधाएं नहीं है, बैरियर्स खत्म हो रहे हैं।
0: अब आप देखते हैं कि फिल्म भी आप

0: अपनी भाषा में देख सकते हैं।
1: बिल्कुल, जब आप फिल्म की बात करते हैं तो सिनेमा और लोकप्रिय संस्कृति में हिंदी को माध्यम से सांस्कृतिक विरासत के रूप में विश्व स्तर पर पहुंचाया जा रहा है, उसका वैश्विक स्तर पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हिंदी सिनेमा, देखिए आप फ्रेंच की कोई फिल्म है उसे हिंदी में लाया जा रहा है, हिंदी की जो फिल्म है उसे अंग्रेजी में दिखाया जा रहा है, ऐसे ही धारावाहिक भी एक भाषा से दूसरी भाषा तक पहुंचते हुए अपनी लोक संस्कृति, अपनी लोक कथाएं जोड़ी जाती हैं। जब भी आप कहते हैं ना कि एक बात दूसरे तक पहुंचती है तो उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है, थोड़ा सा आपका विचार भी दूसरे तक पहुंच जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
2: देखिए, अब वैश्विक स्तर पर जब हम मनोरंजन की बात करते हैं
1: जी,
2: तो इसके जो परिणाम हैं वो हमें आश्चर्य में डाल देते हैं। जैसे कि मॉरिशस में, मुझे बड़े लोगों को तो छोड़ दीजिए, मैं ऐसे कई बच्चों से मैं मिला या मिलता रहता हूँ जो कि 14 साल के हैं या 20 साल के हैं या 25 साल के या 30 साल के हैं, विभिन्न आयु वर्ग में मैं जब देखता हूँ, तो मैं उनसे हिंदी में बात करना चाहता हूँ, जानबूझ करके देखते हैं कि वे हिंदी जानते हैं या नहीं जानते हैं। कई ऐसे लोग मुझे यहाँ पर मिले जो ना हिंदी पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना ही उन्होंने विद्यालय या महाविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई की है, वे मनोरंजन के माध्यम से उन्होंने हिंदी
1: सीखी है।
2: कितनी बड़ी बात है।
1: बिल्कुल,
2: जो लोग यह सोचते हैं
1: और गीत नृत्य से बड़ा मनोरंजन क्या,
2: हाँ बुरा सा, मैंने उनसे यह भी पूछा कि क्या आप बैठका गए हैं? नहीं। विद्यालय में सीखा? नहीं। घर में कोई बोलते हैं? नहीं। तो आप आश्चर्य में पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे?
1: बिल्कुल,
2: ठीक है। उनके लिए हिंदी एक तरह से क्या है, फॉरेन लैंग्वेज है, विदेशी भाषा है,
1: विदेशी भाषा,
2: फिर भी वे इतनी
1: जानकारी रखते हैं
2: तो बहुत बड़ी बात है।
1: बिल्कुल।
2: तब मुझे ऐसा अनुभव हुआ, जब हम देखिए किताबों में तो बहुत कुछ लिखा गया है कि पूरे विश्व के स्तर पर हिंदी का जो है प्रचार प्रसार हो रहा है, उसमें फिल्मों की बहुत बड़ी भूमिका है, और आप देखते हैं कि संगीत की भी बात करते हैं और पूरे विश्व में कई जगह संगीत के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से ऐसी तकनीक पैदा किया है, की गई है, जिससे कि बच्चों को हिंदी सिखाई जा सके
1: जी,
2: है ना, ऐसे पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं।
1: बिल्कुल।
2: अरे कुछ ऐसे भी वर्ग हैं जहाँ ना कोई पाठ्यक्रम है, ना उनको कोई बताने वाला है,
1: केवल श्रवण करके,
2: श्रवण करके जो है जो श्रुति परंपरा है,
1: श्रुति परंपरा
2: परंपरा में जो है वे
1: निर्वाह कर
2: बोल रहे हैं
1: जी।
2: तब जब हम लोग जब खुद व्यक्तिगत तौर पर जब हम ऐसा अनुभव करते हैं, तब हमें लगता है कि ये जो फिल्म है, फिल्मों से उन्होंने केवल भाषा नहीं सीखी है, वे फिल्म इसलिए नहीं देखते क्योंकि उसमें हिंदी भाषा है, ठीक है, वे फिल्म इसलिए देखते हैं क्योंकि उसमें बेहतरीन संगीत है, उस संगीत में प्रेम गीत है,
1: बिल्कुल,
2: है ना, दर्द भरे गीत है, भावनाओं को छू लेने वाली पंक्तियां हैं,
1: बिल्कुल, हृदय को झिझोड़ देती हैं,
2: झिझोड़ देती हैं,
1: बिल्कुल,
2: ठीक है। और ऐसे लोगों को जब मैं देखता हूं कि वे गीत गुनगुनाते हैं और उसमें कुछ बहुत ही आप देखेंगे कि शास्त्रीय क्लासिक वर्ड होते हैं, प्रयोग करते हैं,
1: बिल्कुल,
2: मैंने यह जानने की कोशिश की कि क्या उस बच्चे को उसका अर्थ पता है। उसे अर्थ पता है कि ये केवल गुनगुना नहीं रहे हैं संगीत, उस संगीत में उस जो भी शब्द प्रयोग कर रहे हैं उसको वह अनुभव भी कर रहे हैं,
1: अनुभव करके समझते हुए
2: समझते हुए अनुभव कर रहे हैं, और इसी का वे देख रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि चाहे वो फिल्म हो, संगीत हो, धारावाहिक हो, उसके माध्यम से जो भारतीय संगीत है, नृत्य है, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, वे वहां तक पहुंच रही हैं। उन्हें पता है कि शादियों में किस तरह से फिल्म में जो दिखा रहे हैं, कैसे गीत गाए जाते हैं, कैसे हल्दी के रस्म होते हैं, कैसे जूते चुराए जाते हैं।

0: हैं, कैसे
1: रीति रिवाज बढ़ रहे हैं,
0: हाँ सब कुछ उन्हें पता है
1: और निर्वाह हो रहा है परंपराओं का
0: निर्वाह हो रहा है परंपराओं का। तो ये जो चलचित्र है
1: जी,
0: है ना, और जो
1: उसका इम्पैक्ट बहुत गहरा है,
0: गहरा है। और हमारे हाथ में जो ये क्या कहते हैं कि तिलिस्म का जो आईना है मोबाइल
1: जी,
0: है ना,
1: बिल्कुल।
0: तो आप देखेंगे कि पूरे विश्व, चलो मैं भारत की बात नहीं कर रहा बल्कि पूरे विश्व के जो लोक संगीत हैं, जो नृत्य हैं, जो रीति रिवाज परंपराएं हैं, वे सभी आ रहे हैं। चाहे आप टिकटॉक देखिए, चाहे वो यूट्यूब देखिए या कोई भी शॉर्ट देखिए, तो आपको बहुत आश्चर्य लगेगा कि कई बार आपको शॉर्ट्स ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें आप, हो सकता है कि कोई अफ्रीकन व्यक्ति है, वो कुछ फिल्मा रहा है 10 सेकेंड 20 सेकेंड के लिए
1: जी,
0: है ना, और पार्ट्स में हिंदी गीत बज रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: कई लोगों को मैंने ऐसे भी देखा कि वो हिंदी गीत को गाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे?
1: तो भाषा का प्रवाह तो बढ़ रहा है और
0: बहुत तेजी से बढ़ रहा है,
1: क्योंकि एक मोबाइल से एक चीज वायरल होती है, वो कहां तक पहुंचती है
0: हम नहीं समझ सकते, किस जंगल के किस कोने तक जो है वो वायरल होकर जा रहा है हम नहीं समझ सकते।
1: चलिए, गीतों की बात हो रही है तो एक गीत के साथ कार्यक्रम को सजाते हैं, फिर चर्चा जारी रहेगी।

0: एक बार फिर आप जुड़ चुके हैं गीत नृत्य और परंपरा में। आपने एक सुंदर गीत सुना, पर गीत में विशेषता क्या रही? उसमें पहेलियाँ थी, वो भी हिंदी भाषा में पहेलियों को जोड़ा गया कितने सुंदर संगीत के साथ। तो इस पर आप देखिए गीतों के माध्यम से कैसे बच्चों को शिक्षित किया जाता है। पहेलियाँ, मुहावरे,
1: लोकोक्तियाँ,
0: ऐसी ऐसी विचार बहुत ही सहज रूप से बांटे जा सकते हैं। प्राण जाए पर वचन ना जाए,
1: जी बिल्कुल,
0: कितना सशक्त, पर कितनी लंबी परंपरा है इसकी।
1: बिल्कुल,
0: आप इस पर क्या विचार देना चाहेंगे? हिंदी सिनेमा, हिंदी गीत, लोक गीत सभी इसमें जुड़ते हैं।
1: कहते हैं ना कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। इसमें और जोड़ दीजिए कि ना भाषा जाए और ना संस्कृति
0: जाए,
1: दोनों को हमें बचा कर रखना है।
0: एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
1: जी
0: बिल्कुल।
1: कई बार चाहे अनचाहे, जाने अनजाने, हम अपनी ही भाषा और संस्कृति से दूर होने लगते हैं। संस्कृति हमारी पहचान है
0: जी,
1: और ऐसी पहचान है कि जरा सोचिए, जब वह समय महाशिवरात्रि का, जब सब लोग अपने घरों से गंगा तालाब की ओर पैदल जाते हैं
0: जी,
1: इतने भारी भरकम कांवड़ लेकर जाते हैं
0: जी,
1: रास्ते में नृत्य करते हैं, कई लोग स्वान भी रचाते हैं
0: जी,
1: अपना रंग रूप बदल लेते हैं, अलग अलग मुद्राओं में ईश्वर और उनके रूप को दर्शाते हैं, नृत्य संगीत उसमें झूमते हुए और अध्यात्म से परिपूर्ण होकर, जब हम उस आध्यात्मिक स्वर्ग के समान जगह पर जब जाते हैं तो हमें कौन सी अनुभूति होती है? सोचिए, क्या यदि मॉरिशस से गंगा तालाब की यात्रा को निकाल दें तो क्या हमें अच्छा लगेगा?
0: यहाँ की सांस्कृतिक परंपराओं में आप ना शिवरात्रि, ना गणेश चतुर्थी,
1: ना
0: कावेदी, ना दीपावली, ये सब हटा ही नहीं सकते, हम विचार ही नहीं कर सकते। बिल्कुल।
1: और जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि चाहे भारत का प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ हो
0: जी,
1: मॉरिशस में महाशिवरात्रि की यात्रा हो
0: जी,
1: यह केवल भारत और मॉरिशस के लिए ही प्रसिद्धि नहीं रखता।
0: बिल्कुल।
1: बल्कि पूरे विश्व के लोग इससे जुड़ते हैं, देखने आते हैं, उस यात्रा में शामिल होते हैं और उसका अनुभव करते हैं।
0: बिल्कुल। और आस्था चैनल पर जब ये शिवरात्रि की यात्रा दिखाई जाती थी भारत में, तो मेरी नानी दादी ने मुझे कहा कि हम मॉरिशस यात्रा कर चुके हैं, वहाँ बिना जाए हुए हमने पूरा गंगा तालाब का व्यू देख लिया है।
1: जी बिल्कुल। तो भारतीय मूल के लोग पूरे विश्व में जहाँ जहाँ गए और जब उन्होंने वहाँ पर अपनी संस्कृति को उसी रूप में अपनाया जिस रूप में पहले से वो अपना रहे थे, उसी रूप में रीति

0: रिवाज की भूमिका को किया जो जैसा वो पहले कर रहे थे
1: जी,
0: उसी रीति रिवाज परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो वहाँ के आसपास के जो लोग थे वे जब देखते

0: या जो भी पर्व त्योहार हैं सब लोग उसमें शामिल होते थे।
1: बिल्कुल,
0: है ना। क्यों शामिल होते थे कभी आपने सोचा? क्यों जरूरी है हमारे जीवन में गीत? क्यों जरूरी है नृत्य? क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है हमारे रीति रिवाज और परंपराएं?
1: बिल्कुल,
0: इसलिए जरूरी है कि जीवन में यदि रंग ना हो तो हम बेरंग होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और
1: ये छोटे छोटे पर्व उत्सव जो है
0: जी।
1: हमारे जीवन में एक उत्सव के माध्यम से हम अपने प्रेम और अपनी प्रथाओं को जिंदा रखते हैं
0: और उसी अवसर पर हम अच्छे अच्छे खान पान करते हैं, कपड़े सिलवाते हैं, पहनते हैं, अच्छा दिखने का प्रयास करते हैं और हम खुश होते हैं। कहीं ना कहीं हमें मानसिक संतुष्टि मिलती है और जब हम मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं तभी हम स्वस्थ भी रहते हैं।
1: जीवन जीने का एक तरीका है
0: जीने जी। तो ये रीति रिवाज, परंपरा, नृत्य, संगीत, ये सब जो है जैसा आपने कहा कि जीवन जीने का एक तरीका है।
1: बिल्कुल। देखिए मेरे हाथ में मोबाइल है तो हम डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं
0: जी।
1: जब डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं तो इस युग में, डिजिटल युग में, हिंदी भी एक बहुत बड़ा जरिया है लोक कथाओं का, लोक संस्कृति का एक माध्यम है डिजिटल। इसमें भाषा का वैश्विक स्तर, आप इस पर क्या विचार देना चाहेंगे?
0: जी नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही और पूछी भी है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है,
1: क्योंकि भविष्य में जब हम आज की थीम की बात करते हैं तो वो AI है।
0: बिल्कुल।
1: कि पारंपरिक भाषा और आज की AI हम जोड़ रहे हैं तो डिजिटल युग को भी।
0: मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि AI की बात तो अभी हाल फिलहाल शुरू हुई है, उससे पहले भी यदि जब AI नहीं है तब भी आप देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका बहुत ही ज़्यादा रही है। अब AI जो है, जिसको कि हम हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं
1: जी,
0: अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक भूमिका अदा कर रहा है और धीरे धीरे हमारे जीवन में उसकी घुसपैठ शुरू हो गई है। लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जो होता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में बहुत कुछ आता है, जैसे सिनेमा है, धारावाहिक है, जो जनसंचार के जितने भी माध्यम हैं, टीवी है। तो अब इसमें क्या जुड़ गया? तो पहले कंप्यूटर जुड़ा, फिर आपके पास मोबाइल आ गया। तब जब मोबाइल आ गया तो अब मोबाइल से आप संगीत सुन सकते हैं, किसी का नृत्य देख सकते हैं। अब हमारे जीवन में समय का बहुत अभाव है, सब कुछ जल्दी है। जहाँ एक समय था कि क्रिकेट का जब मैच होता था तो वो 6 दिन चलता था, उसको टेस्ट मैच बोलते थे
1: जी,
0: ठीक है।
1: अब वनडे हो गया।
0: हाँ, फिर वनडे हुआ, वनडे में आप देखें कि वो फिर 60 ओवर का मैच होने लगा, फिर 50 ओवर का हुआ। अब फिर लोगों को लगा कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा है, तो अब उसको 20-20 किया गया, 20 ओवर का। और फिर देखेंगे कि धीरे धीरे अब ये भी बात हो रही कि क्यों नहीं 10 ओवर का करें। तो समय का जो है अभाव होने के कारण सब कुछ जल्दी करना है, सब कुछ तुरंत परिणाम की जरूरत है, रिजल्ट तुरंत मिल जाए।
1: इंस्टेंट कॉफी का जमाना है।
0: हाँ,
1: तो
0: जी,
1: हर चीज इंस्टेंट देखना चाहते हैं।
0: वो खान पान, रहन सहन, सब चीज में जो है उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आप देखें कि हम 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड या 1 मिनट का ही हम
1: रील
0: देखते हैं, वीडियो देखते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं देखते।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जब हम वहाँ देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि वहाँ केवल बेकार ही बातें होती हैं, वहाँ बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी भी हैं जो ज्ञानवर्धक है, ठीक है। तो हमारे जीवन में स्वाभाविक रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म का महत्व बढ़ा है। तो और उसके माध्यम से केवल यही नहीं होता, फिर हम यह भी देखते हैं कि किस देश में कौन से लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं, कैसे बाल बनाते हैं, कैसे दिखते हैं, उनका खान पान कैसा है, उनका पहनावा कैसा है, उनका वो किस तरह के गीत गाते हैं, उस गीत में किस तरह के संगीत हैं, किस तरह के वाद्य यंत्र का वो प्रयोग करते हैं, नृत्य में उनकी कौन कौन सी भूमिकाएँ हैं, और नृत्य में जो है जो वो भाव भंगिमा बनाते हैं वे किस तरह से है, कैसे वो भारतीय नृत्य से अलग है, या भारतीय जो हमारे यहाँ जो शास्त्रीय नृत्य है वह किससे कैसे अलग है?

0: या शास्त्रीय संगीत से कैसे अलग,
1: कैसे
0: है,
1: अलग है,
0: है ना। कई बार हम देखते हैं कि कई बार आश्चर्य लगता है कि कंटेम्प्रेरी डांस जो है भी वो बना लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और उसी तरह म्यूजिक भी, संगीत भी हमें जो है देखने को मिलता है।
1: रंगमंच भी हम नहीं सोच सकते बिना
0: रंगमंच, हाँ अब तो रंगमंच में जो है आप देखेंगे कि रंगमंच के लिए मोबाइल ही एक प्लेटफॉर्म हो गया है, अपने रख लेते हैं और उसमें जो है छोटे छोटे कंटेंट बनाकर जो है वे प्रस्तुत करते हैं। तो देखेंगे कि इस यह जो एक छोटा सा माध्यम है, छोटा सा स्लाइड है, छोटा सा जो एक मैंने कहा कि ये जो तिलिस्म की जो दुनिया है उसमें हम छोटी छोटी जो है चीज़ों को देखते हैं, छोटे छोटे रील्स देखते हैं, छोटे छोटे वीडियो देखते हैं। अब बस सब कुछ छोटा हो गया।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन उस छोटे से प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म मैं कहूँगा कि एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो छोटे से में सब
1: बड़ा
0: कुछ
1: सशक्त है।
0: छोटे में सब कुछ है,
1: बड़ा सशक्त है ना,
0: छोटे में सब कुछ है। और वह कहीं न कहीं हमारे रीति रिवाज को, हमारी परंपराओं को परिभाषित करता है, इसको मत भूलिए।
1: बिल्कुल।
0: उससे उसके माध्यम से ये सारी चीजें उभर कर आती हैं और पूरे विश्व के कोने कोने तक पहुंचती हैं। अब किसी किताब की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद पहुंच
1: इसका
0: जा रहा।
1: सबसे बड़ा उदाहरण कोविड काल था।
0: जी बिल्कुल।
1: जब हम किसी तक पहुंच नहीं पा रहे थे, कहीं जा नहीं पा रहे थे, कहीं आ नहीं पा रहे थे, तो ये एक बहुत सशक्त माध्यम बना।
0: जी बिल्कुल।
1: शिक्षा के लिए भी, समाचारों के लिए भी, मनोरंजन के लिए भी, घर बैठे जो यूट्यूबर्स थे वो बढ़ गए, और साथ ही साथ हमें मोबाइल पे रेसिपीज़ मिल रही हैं व्यंजन बनाने के लिए, क्योंकि सभी घर पर थे तो सबके पास समय भी था इस डिजिटल।
0: बिल्कुल।
1: से जोड़ने
0: का। आप देखेंगे कि आज का जो समय है वह बाजारवाद का समय है।
1: बिल्कुल।
0: ठीक है। हम जब बाजार में जाते हैं तो आजकल हमारे पास इतने चुनाव हैं, इतना च्वाइस है, यानी चुनने का जो है विकल्प हमारे पास सबसे ज़्यादा है। तो जब हम बाजार में जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि कम से कम पैसे में या रुपये में हम अच्छी से अच्छी चीज़ लें।
1: बिल्कुल।
0: हमारा ध्यान यही होता है।
1: जी।
0: यानी कहने का मतलब यह है कि अब हम इस पर आ गए हैं कि हमें मनोरंजन भी चाहिए तो अच्छा चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यदि आपने अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे से यदि आपने प्रस्तुत किया है, और यदि दूसरे को जो आपकी संस्कृति या रीति रिवाज और परंपरा के जुड़े हुए लोग नहीं हैं उनको यदि वह अच्छा लगता है तो वे उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं, क्योंकि सबको अच्छा चाहिए,
1: अच्छा,
0: बेस्ट चाहिए।
1: बिल्कुल। हर चीज़ बेस्ट चाहिए।
0: जी। और यही कारण है कि मैंने आपको कहा कि भारत में आयुर्वेद, योग दर्शन,
1: बिल्कुल
0: है ना, श्रीमद् भागवत का जो गीता उपदेश है,
1: दर्शन
0: है
1: पूरा,
0: जीवन जीने की जो परंपरा है,
1: जी,
0: खान पान, रहन सहन, पहनावा, यह इसलिए है कि लोग, पूरे विश्व के लोग आकर्षित हो रहे हैं और ये सभी चीजें वहां तक पहुंच रही हैं। कई बार आश्चर्य होता है कि जब आप देखते हैं कि वे हमारे समुदाय के नहीं हैं और लेकिन वे अपने शरीर पर टैटू ओम का बनवाए हुए हैं।
1: बिल्कुल।
0: आपको बहुत आशा लगता है कि वेद का कोई मंत्र उनके शरीर पर गुदा हुआ है।
1: बिल्कुल।
0: ये क्या है?
1: तो वो हमारे
0: वहाँ भी भाषा है,
1: भारतीय दर्शन से जुड़े, समझ पाए उसको, और उसके बाद वो प्रभाव रहा उन पर।
0: जी।
1: तभी तो उन्होंने वो गुदना गुदाया।
0: हाँ, कई लोगों ने त्रिशूल बनाया हुआ।
1: जी। और ये बहुत पुरानी परंपरा है, अब तो टैटू नाम दिया गया है, पहले तो गोदना कहते हैं, यहाँ पर गोदना गुदाया जाता
0: जी
1: था।
0: लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि जिनका उस चिन्ह से, उससे दूर दूर का संबंध नहीं है, वे भी कहीं न कहीं उससे प्रभावित होते हैं। और चूंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण चीज़ें एक कोने से दूसरे कोने में बहुत आसानी से पहुँच जाती हैं, उनको अच्छा लगता है। चाहे भगवान गणेश हों तो हो सकता है कि भगवान गणेश की मूर्ति जो है अपने घर में रखी हो,
1: अपने टेबल पे रखते हैं,
0: है ना। इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि किसी भी समुदाय के लोग हैं, सब मानव हैं, और चूंकि गौतम बुद्ध का जो दर्शन रहा है वो

0: मानवता के पक्ष में रहा, यानी सभी समुदाय में जो भी उनके दर्शन है वो सब मानवता के लिए है।
1: बिल्कुल,
0: है ना,
1: एक ही पाठ है सब में, ढाई अक्षर प्रेम का।
0: जी जी, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो ये जो ढाई आखर है प्रेम और मानवता है, इसी कारण आप देखेंगे कि गौतम बुद्ध की भी मूर्ति जो है सभी के घर में आपको देखने को मिल जाती है। कारण क्या है कि अहिंसा परमो धर्म, यानी हिंसा नहीं करनी है, किसी से घृणा नहीं करनी है,
1: किसी से बैर नहीं पाना,
0: बैर नहीं करना है। ये कहाँ से बातें आ रही हैं? भारतीय परंपरा से,
1: भारतीय संस्कृति से। बहुत अच्छा रहा आपके साथ, बहुत सारे विचार हमने साझा किए। घड़ी की सुइयां कार्यक्रम को अंत की ओर बढ़ा रही हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज की AI, आज का डिजिटल वर्ल्ड और हमारी लोक संगीत, लोक गीत, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत, सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पर डिस्कस हुआ, पर इस प्लेटफॉर्म से आपका हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में, जो कि हम 14 तारीख को मना रहे हैं, पूरे सितंबर महीने तक हम पूरे माह में हम मनाते रहेंगे, एक दिन का नहीं है, कहीं पर वो सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, कहीं पर वो दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, और उसके बाद गणपति पूजा है, तो इस पर आपका संदेश हमारे श्रोताओं के लिए।
0: देखिए, मॉरिशस एक ऐसा देश है जिन्होंने अपनी भाषा और संस्कृति को बहुत अच्छे से बचा कर रखा है। जब मैं पहली बार हिंदी प्रचारणी सभा गया
1: जी,
0: तो वहाँ पर मैंने एक स्लोगन देखा
1: जी,
0: वो है कि हिंदी भाषा
1: भाषा गई तो संस्कृति गई।
0: मैं हिंदी भाषा से और जोड़ दे रहा था, नया स्लोगन बना रहा था
1: जी,
0: यानी जो भी भारतीय भाषा है या केवल भारतीय भाषा नहीं, और भी जो भाषा के लोग हैं, सबकी अपनी संस्कृति है।
1: बिल्कुल, सभी भाषाएं सम्मानीय
0: हैं, सभी भाषाएं एक हैं। और तो अब मैंने कहा कि अब भाषाई मतभेद तो रहा ही नहीं, आज AI के युग में हम किसी भी भाषा के लोग के करीब हम पहुंच सकते हैं। अब वो समय चला गया कि जब मेरा नाम जोकर में मूवी में, जब राज कपूर को एक सर्कस आर्टिस्ट से प्यार होता है, तो वो एक डिक्शनरी देखता है और उसको जो है देखता है कि वो क्या बोल रही थी, मुझे क्या बोलना है। वो समय चला गया। अब आप तो क्षण भर में जो है आप अपनी बात किसी के सामने रख सकते हैं उनकी भाषा में, या यदि अपनी भाषा में रखें दूसरा समझ सकता है, ये अब समस्या नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि गीत, नृत्य और परंपरा और साथ में हिंदी भाषा
1: जी,
0: इन चारों को हम अलग करके देख ही नहीं सकते आज के समय में। और चूंकि हिंदी भाषा बहुत सशक्त भाषा के रूप में अपनी स्थिति पूरे विश्व में दर्ज करा रही है,
1: मनवा चुकी है,
0: और यही कारण है कि जो भारतीय सभ्यता के महत्वपूर्ण जो गुण हैं, सत्य हैं, या जो बातें हैं, वे पूरे विश्व में पहुंच रही हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो मैं सब लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हिंदी भाषा बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है, बहुत ही सरल भाषा है। हिंदी भाषा यदि आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो आप बहुत सारे ऐसे ज्ञान से परिचित हो सकते हैं जो हिंदी भाषा में लिखी गई है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, समय हमें आज्ञा नहीं दे रहा है, बात पूरी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे विचार साझा हुए, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आभार प्रकट करते हैं, पूरी टीम का भी हम आभार प्रकट करते हैं। हिंदी दिवस और गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ संध्या।
0: और मेरी ओर से भी प्रिय श्रोतागण को ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: उधर से वो लाइट जरा रही है।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है रजनी, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। सबसे पहले स्थानीय खबरें। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और त्वचा से जुड़ी समस्याओं के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई दवाइयों का स्टॉक आजकल देश में नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग के अनुसार प्राइवेट सेक्टर में 900 से 100 दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, जबकि सार्वजनिक जनिक क्षेत्र में ये संख्या लगभग 50 है। हालांकि इनमें से कई समस्याओं के इलाज के लिए दूसरे विकल्प मौजूद हैं। परिवहन के क्षेत्र में कार्बन की मात्रा कम करना और हमारी सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाना, इस ट्रांजिशन में तेजी लाने के लिए निजी ऑपरेटरों से बस मॉडर्नाइजेशन स्कीम से गुजरने की मांग की जा रही है। एक इलेक्ट्रिक बस खरीदने के वास्ते 3.5 मिलियन रुपए तक की फाइनेंसिंग मुमकिन। बहुत जल्द UNDP और ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी द्वारा समर्थित प्रमोटिंग लो कार्बन इलेक्ट्रिक बस ट्रांसपोर्ट इन मॉरिशस परियोजना के संदर्भ में ये सहायता राशि बढ़ाई जाएगी। सार्वजनिक सेक्टर को ज्यादा कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह कैसे बनाया जा सकता है, इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए संबंध पक्ष एक 2 दिवसीय सलाहकारी कार्यशाला के लिए एकत्र हो रहे हैं। मकसद है उन मुख्य सिद्धांतों पर आम सहमति बनाना जो पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म बिल का ड्राफ्ट तैयार करने में मदद देंगी। इस कार्यशाला की शुरुआत रिजवी में अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन में की गई। विदेशी समाचारों में, भारत में दिल्ली में ब्रिक्स समिट 2026 को लेकर तैयारियां पूरी हैं और दुनिया की नज़र भारत पर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की बैठक शुरू हो चुकी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की भी पेजेस्कियान के से द्विपक्षीय बातचीत होनी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 7 साल बाद भारत आए हैं। सम्मेलन में व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, कनेक्टिविटी और वैश्विक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत मंडपम में होने वाले इस बड़े आयोजन के लिए दिल्ली में कड़ी सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था की गई है। और 11 सितंबर 2001 की वो सुबह इतिहास की सबसे भयावह सुबहों में से दर्ज, जब अमेरिका के आसमान में उड़ रहे 4 विमानों को आतंकवादियों ने हथियार बना दिया था और कुछ ही घंटों में दुनिया की तस्वीर बदल गई। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स और वाशिंगटन के पास पेंटागन को निशाना बनाया गया, जबकि 4th विमान पेंसिल्वानिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस सुनियोजित आतंकी हमले में करीब 3,000 लोगों की जान चली गई और इसके बाद अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था, विदेशी नीति और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का रुख बदल गया। संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, आपने ध्यान दिया, धन्यवाद, नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv.
3: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
4: आज की चर्चा।
5: सभी श्रोताओं को विदिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम आज की चर्चा में आपका हम स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर शुक्रवार को हम जो कानून से संबंधित जो समस्याएं हैं उसके बारे में यहां पर उसके बारे में हम बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान हम यहाँ पर ले आए आपके लिए। तो आज भी हमारे साथ हमारे आज के इस कार्यक्रम में कपिल देव रघुनंदन जी हमारे इस कार्यक्रम में हमारे आज का जो विषय है उस पर बात करेंगे। कपिल देव जी नमस्कार।
6: नमस्कार जी।
5: तो आज के हमने के जो विषय बा ऊहा लापताज जीवोस के बाद, तो जब एगो शादी होवेला तो कोई जीवोस के बारे में नहीं सोचेला, जब शादी होवेला तो सब कोई शादी में जो दीपांस होवेला कौन लुगा पहनियन स के विदेओ बनाए के कौन मेनी बनी कौन चिखाई के होई ऐसे ऐसा चीज के बारे में सोचेलन स, ओकर ले आगे घर किनेलन स, लोन लेवेलन स, बिजनेस करेलन स, तब बाद में जब सदिया नहीं चलेला तो अब तू बिजनेस करला या तो फिर तू लोन लेना, तो ऐसन जब समस्या खड़ा हो जाला तक कौन ची होला, कैसे लापताज होवेला। कबो कबो ढेर कोई कानून के बारे में नहीं जानेला, अपन अधिकार नहीं जानेलन जा,

0: तो आज हमने चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो हमने वो लोग के बतावब जाके वो लोग के धुआ कौन ची है।
1: हाँ जी हाँ है विदिता जैसे बोल है इको मजे एक शब्द में तू सब चीज बोल दे जब एगो जीवोश होएला तो उकर गजिलता का होएला पति पत्नी में कैसे पहतास होएला बस कौन कौन चीज में जाने ला एक बार आदमी शादी करेला हम सदियों देख सभी कब शादी करेला आदमी शादी करेला को ही भी है
0: हाँ।
1: तो बड़ी खुशी रहेला मॉरिशस में इसी रहले को जमाना कोई भी है बोले ना कौन कल से शादी कर ले तू तो बोले हम तो शादी करना ही कोई भी है अब हाउ जोन शादी कर ले बा सिपाहियों जी भी हैं तो वो बोले अरे तो देख ले पगली नहीं हुए सिपा पगला नहीं हुए सिपाहियों जी भी हैं करते हुए तो तू कहीं तो कुछ नहीं मिली समझ बस
0: सिपाहियों
1: लोग सोचे ऐसे में इस सब में हमने देख सर में हम तब हमेशा बोल रहे हैं सबसे जोली शादी कवरे लाई वर्ल्ड में कम्युनिटी उससे पास न जी भी आले जैसे तरह लो बोला शादी हो जीवो सो जाए अब ओके देत बा ओकर लेजिस्ट्री बा ओके जोन जोन चीज में बा संगे रलन सन जहाँ सबके मिलेला जमीन उन्हें उन्हें किनले वनसन घर बनैले वनसन अब जीवो सावेला कैसे सब मेम की शादी कर ले बा कोई भी है कुछ नहीं मिलेला तो सेपरेशन जी बिया अपन अपन जी बिया अभी देखो भूल जाए सभी के लिए मैं ये देखे ला ये छोटा छोटा कुंसे ही जैसे हमने है मैं आयला से ये कानून के है प्रोग्राम में ये हमने कितने का बाहर जो ज्वाइन करेला बोले ला इतने ना कुछ उन लोग के कुमार जल डिस्प्री खोले ला तही वो आदमी अभी कल ओके मन हुई शादी करेगी तो कि देखे कि चला अरे कौन सी अभी तह को लामोद हो गल बा आदमी जाता शादी करे कोंतरा में
0: कॉन्ट्रा
1: कॉन्ट्रा हाँ कॉन्ट्रा एगो कॉन्ट्रा वो देख सा कैसे तीन गो क्वालिटी अभी शादी देख सा कैसे वो कॉन्ट्रा जाके सिंह करेला गो नोते रिया सब चीज अरे सुबोजो तुहर एगो लोतो बा पति के जोन से भी शादी करब कुमार जे ओकरो एगो लोतो बा तो हियाँ जाके सब पापिये में लिख देब लोतो तोर लोतो हमर ई हौ घर ई हई घर हमर सब एगो पापिये नोतेर के आगे ऐसा शादी है तो देख लो मॉरिशस में हमेशा हमने कोई भी है से बगासियों हैं जी बिया के बात कर ले
0: सर जब हमने मॉरिस में जब शादी करी लाजा तो अभी आजकल तो सब कोई किसी वजह लव मैरिज करता था
1: हाँ
0: यानी कि खुशी होके शादी करत हो अच्छा तब एक जना खुशी होके शादी करता तो खुशी खुशी शादी करी
1: हाँ, हाँ,
0: वो थोड़ी ना सोची कि काल अगर जीवोस हो जाए तब जीवोस हो जाए तो कौन सी जाना करेगे अभी जब सब कोई खुशी होवन जा तो संगे लोन लेवे लन जा ये काम करे लन सा शादी ले आगे देर कोई अब अथी मया सिविल कर लेवे लन सा अब मया सिविल हो गल बा अब लोन लियन जा इधर उधर करे के घर बनाए के तो बाद में पता चला कि शादी नहीं चला था शादी जो बा करे ले आगे
1: हाँ।
0: परेला तोड़ दे के
1: हाँ हाँ तो यही बोलेला एक बार आदमी बोलेला शादी करे के तो सोच के तुके चाहत ना ओके है शादी करे के बिना सोच ले आधे वही से देख लिया तो के जीवो सोई कोई नहीं सकी बोले हई अमर एक्सपीरियंस कब शादी कर ले हुआ वो आदमिया से तोर एक दिन हुई जीवोश कोई नहीं सोचेला कि शादी करी आज तो वो एक दिन जाके जीवोश करी
0: वैसे आगे के जो शादी रहल उकर में कहीं ना कहीं महिला लोग घर पर रहता
1: हाँ।
0: घर के संभाला तलंजा तो वो लोग जब शादी करके तब बेटी पराया धन है
1: हाँ,
0: सब कोई बोलेगा यानी कि एगो छोकरी जब शादी करके अपन ससुराल में चल गल तो आंख जब बंद होवेला तबे ऊ घरवास में से निकलेला
1: हाँ
0: अभी के जो महिला लोग हवन जा अभी तब बड़ा बड़ा पुस में शादी करत हवन जा तो जब शादी करत हवन जा तो वो लोग के नहीं सकबा अपन पैर के नीचे दबा के रखे उनकरा नहीं सकबा ओकर जो इच्छा बा ओकर गला घोंटे यानी कि आज ओके पढ़ाई के मन बा तो आगे पढ़ी ओके कहूँ पर मान ला परदेश जाए के बा कोनो कू करे के बा कुछ करे के बा तो वो बोली ओके जाए के बा उछल जाए तो ढेर कोई सोचेला ढेर कैसे पति लोग की ईगो जुन बा तनिकुन कहीं ना कहीं उन लोग के तनिकुन लगेला कि हाँ ये तो अपन मर्जी के करता ऐसे करते करते कभी रिश्ता जुन बा खट्टा हो जाला तो ऐसन में जीवोस हो जाला लेकिन जब शादी कर ला इतना पैसा आज एक मिलियन नहीं रही तेगो शादी नहीं सकबा करे
1: जरूर
0: जितना खर्च आवेला सब कोई जैसे शादी में अब कॉम्पिटिशन करा था हमार शादी के कौत ऐसे चला रहे के हमार लहंगा चला इतना महंगा के रहे के हाई अवधि के रहे के तो इतना सब कुछ हुआ था तो वो लोग नहीं सोचा था कि काल एगो समस्या सकी आई एगो प्रॉब्लम सकी आई जहाँ पर जीवोस हो लेकिन जब हमने तुलना कर अब सा आगे के शादी के और अभी के शादी के तो अभी के शादी में जस्ती जीवोस हुआ था
1: जरूर जरूर कि नोम दे जीवोस मॉरिशस में बहुत सा बढ़ गल
0: और आप तब जब जाल केस

0: देखेला तोहर लागे त कितना केस आवेला हम तोर से पूछे खोजत है इकरले पहले कि हमनी लापताज के बारे में बतियाब छ है जो जीवोस होवेता ज्यादातर तोहर लागे कौन वजह से ई जीवोस के केस आवेला
1: अली पहला चीज हमनी देखल स जीवोस के बड़का कुमज समस्या है आजिलते है आज के जमाना में कुमज एगो जाफे फासिल है पति हो या पत्नी हो एगो कुमेगाज हो के एक बान केस जो नावेला मेन रीजन जैसे हमने बोले सर दिख बहिया अजिलते एगो कुमेगाज एकल से हो गल बा दूसरा से कुमज खुशी हो गल बा इले पति पत्नी में नहीं बनता
0: ज्यादातर पत्नी वे जाके केस अवधि करेला
1: नहीं दोनों दोनों दोनों बस कि अभी एगो जमाना चल रहा बा पति भी दूध करेला पत्नी से न बोले नहीं सकेला ओकर कुमेगाज हुई मिसलमा जैसे आदमी जिएला तो कर कई ओकर से तो जान जाइबा तू ही सिवा ई का सोचता का होल अरे वो पोठी होगा था कहूँ एगो जाए कि पतिया नहीं जाता तो देख भा पत्नी अब वो तब अपन खूब आबिए उ करके बिना पूछ ले के ओकर से साइड सकेला चल जाए अब जान के कहाँ गल बा ऊ भगवान जाने सब मैंने जब सा देता युवा में अजिलते एगो कुमेगाज के लिए एगो सांसे नहीं थोड़ा हर इंसान के अभी के लिए मातालिते एगो शादी में अनमन बराबर नहीं बा पहले के जब खूब बोला माँ बाप तक मजे से तू माँ उ तो जाने कहाँ जाए वो घर वहाँ छोड़ के न जाए दूसरों या एगो सदियों में जाए तो देख बा अपन परिवार हो संगे अभी का और मिशे वो लोग मिशो अच्छा दोनों के चाले गो पत्नी के चाले गो पति के तब न गो खूब होवेला ते गो को में राजो में चाले गो एगो मैडम एगो मिशे न त नहीं कुमा जे नहीं होला मैं इच्छा चाहे ना दोनों के ना मैं अभी ई एगो सबसे बड़का मेन रीजन जैसे हमने बोली रहा सर ई ह जब एगो दूसर पति दूसर से कुमा जे को में राज बा अभी यहां के पत्नियां के कुछ नहीं ले
0: एगो कुप में एगो थ्वाजम चल इंसान चला मिला
1: ही तब सब मजे नाश हो जाला
0: और दूसर एगो एगो एगो एगो वजह जकर वजह से यहां जीवो सो होला
1: ते यहां दूसर जमी देख बा दोनों है नहीं से केला जैसे हमने टू गेट ऑन नहीं कुमार एकर कागते ओकर कागते एकर सोची सोच एकर सुर ईगो सब बा ईगो हो गांस एक बान चीज बा दूसर की तरह रिमार्क करी बोली तू तो ऐसे होवे कैसी तू आउसे बाप रे बा ई एगो कुमार आर नागिंग लड़ाई घरवा में सब चीज के विषय में एक छोटा छोटा चीज में देखबा लड़ाई हुई कब ड्राफ्टे करब ओकर रेजोआ तो अंतिम कार जोन आवेला केसवा लकुरवा में देख भाई या मिशे हो या मैडम हुई तो मिशे हुआ आ एगो मिशे बोझ एगो मिशे के लिए जा सर हम सब भैया तू तार है अरे कौन प्रॉब्लम है बोलो पश्चिम लिखे चला सब प्लें तो हमें लिखे के काहे जीवो स्वा मांगे थे बोले कहाँ बोली भैया हम बोले बोले हमारे पत्नी एगो दूसर के खुशी बा अब देख ला अब वो बगल भी कुमाजे का पत्नी आए हुआ था यहाँ एगो केस करे तो मैंने हुई बता हमारे मिशे तक वो कुमेगाज बा दूसर से अब हमके कोट नहीं लेवेला खाई के नाने ला लड़का के नहीं दे सब खाली ते किशो मैं मेन रीजन इजे हम नहीं बोल सा एगो कुमेगाज जुलते है कि कुमाजे रहे
0: डोमेस्टिक वायलेंस भी सकेला रहे धीर कोई मार पीटेला
1: डोमेस्टिक वायलेंस बा मैं नहीं देख बकी कुमार मार पिटाई के हरे सदिया में बा मैं डोमेस्टिक वायलेंस होना नहीं बा बा मिसल मा कि कुम का मारे ला मैं कौन की देख बला मारे ला का बाई थोरिया तो किते देख बा तो कुमार जगो ओजीने बा तो पूछ बा ना ले डोमेस्टिक वायलेंस आल बा तुअरा मारे ला पापी बा कुनो दिन मरले रहल तुअरा से बोले पापी उन्हें बा लात घुसा देवता था कहाँ मिली होकर है कुमार जी है पा है एगो पापी तहिया मिसल मा ई भी हुए ला बताओ ला ई भी गो रीजन का मिसल मा अजीज दिखेला जीवोशवा में ई मार पिटाई के विषय हुआ आ हाउ के आ चिलते में आ रहे शादी कर ले हुआ था एगो आदमी से रही बना नहीं सकब कुमा जगो को मेगाज करे मैं डोमेस्टिक वायलेंस में आका उकर कौवा बड़ी सुलित बाइगो डोमेस्टिक वायलेंस के केस बताई के कि ई मार ले बा पतिया तब से उमांगता उ जीवोशवा तब जीजुआ सकेला सीधे करे मैं हर घर में तो ये देखो एगो कुमा जगो को मेगाज एगो डिस्क्रिशन सब तो हुई भी करेला मैं जैसे बोलिया ना अभी के जमाना में सबसे बड़ा जीवोश के कारण अजुलते अली आई ला सर
0: अब जान गए नहीं जा कि जब हमने के काहे जीवोस होवेला
1: हाँ जी
0: कौन उकर मेन रीजन है अब जब बात करब जा मान ला जीवोस होई के बा पति पत्नी अब अलग हुआ था
1: हाँ जी
0: अब बा लापता आज के बाद
1: और दिखब स अपितार कौन कालीते शादी ज्यादा अच्छा बा ये गो कुमाजे लोकाजों भी मिली हमने की दिखब स बस की बान आदमी बोलेला सेपरेशन बिया जी बिया का हुई कोई बिया शादी करब स तो हमने सदियों भी दिखब स कौन कौन क्वालिटी शादी बा तब हमने देखा सब पौत हुआ अली

0: हमने देखिला सा कि जीवोस एंट्रेने करेला एगो पताज एगो जीबियन देत पति पत्नी में कब जीवोस हो जाला तो दिखबा पति पत्नी में एगो पताज होल जाला एगो डिविजन होला देत कुमा जे होला में सिलमा सब डिपेंड कौन क्वालिटी के रेजिम मैट्रिमोनियल में उ शादी कर लेबा अरे सी बुझो शादी कर लो ये कॉन्ट्रा में कल तो प्रॉब्लम हुई तो से दिए कि गाड़ी तक बोल दे ले ये घरवा तो वो घर घरवा हमारा तो सवे जो शादी के बाद जिसे पपी हुआ कॉन्ट्रवा बनाई लेबा उसने करी अनसन तो हियाँ देखी रहा सर कि एगो है एगो कब एगो आदमी शादी करेला तो के जाने ला कौन रेजिम मैट्रिमोनियल में ओके मन बा शादी करे के आज हम तो बोलती शादी करे के आगे कोनो जोन आदमी जोन भाई जो लाजमी बा एक्सपीरियंस बा ओकर से पूछ कैसे कुमा जे तू सोचो अच्छा हम जाते हैं शादी करे के एगो चीज में न हम समझे ला एगो आदमी कब खुशी हो जाला वो सब नहीं देखेला वो नहीं देखेला कौन रिलीजन कौन में जा रिजिम में जाता शादी करे कौन कार्तिक को हुई बिया से प्रकाशन जी बिया नहीं हियाँ तो खुशी हो गल खुशी में पगला हो गल बा वो तम के मन बात से दिया करे ये नहीं एगो और बोले न सर एगो खुशी मजा लव इज एगो आवेग ओके कोई के नहीं लव के हाँ खाली तो हियाँ देखेला खाली मॉरिशस में हमने देख लिया पताज जी बिया जो हुएला और देत भी ई कुवे करेला हमने के कुछ सिविल मोशिया हमने के कुछ सिविल मोशिया एगो पुस्तक मॉरिशस के कानून ओकर लीगल सिस्टम उ में सब लिख दिले बा है हमने के है है कानून कैसे गुवे ने हुएला कौन ची हो तो साविजे काल देखब एगो कुमा जे प्रॉब्लम होई सी बोझो शादी के विषय में एगो जीवोस के तो हमने के देखब को हमने के देखिए हमने के कुछ सिविल मोशियाँ हमने के कुछ सिविल मोशियाँ वो कब आर हमने तभी लोकेशन तो हमने के नहीं आल बस सिस्टम कैसे हो रहा तो हमने के अपने बा दूसर पे ही कि हमने नई स्वाजिरे कर ली सर हमने के कानून बा है कुछ सिविल मोशियाँ जो अभी होगल बा हाँ हमने के ला हुई शुरू हो सिस्टम कोड नापोलियन से फ्रांसे से मैं अपनी आज बना दे रही सर खुद अपने एगो है कानून ये कुछ सिविल मोशियाँ जैसे हमने बोल सर जो गुवेने करेला सर हमने के कानून तो दिखेला सर मॉरिशस में एगो आदमी अब ओके मन बा शादी करे के तो ओके एक गो सिस्टम रेजिम मैट्रिमोनियल कौन शादी करी कौन क्वालिटी में तो देखब पहला तीन कार जो रेजिम दे कम्युनिटी दे बियाँ एक हमने बोली ला सा कोरे बियाँ तो तीन कार मॉरिशियन कब शादी करेला उ शादी करेला कोरे बियाँ अर्थात एक एन एन खान देख सक से दूसरा कोई बा शादी करेला तो वो रेजिम सेपारेशन जी बियाँ उपमा जे सेपारेशन जी बियाँ तेजी तो करे न मुँह तो बोल दे होता सेपारे तो तोहर जमीन वो जो या उपमा जे है जो चीज तोहर रही और वो रखी जो ओकर मजे चीज बा सेपारे और तीसरा जैसे हम बोले रही तरेलवा बा एगो रेजिम कन्वेंशनल वो जैसे हमने बोले ला कॉन्ट्रैक्चुअल ये कॉन्ट्रैक्चुअल यही है तरेलवा बोली तोरा ना नुतिर के आगे जाके सब लिख दे बा कौन काली ते शादी करत हुआ और कुमा जे का करे के चाहेला कौन कौन चीज तोहर है बस ई चाहेला लिख दे के सब शादी कर तो देख लो हमने के मॉरिशस के कुछ सिविल मोशिया बोलेला कब शादी करेला तो स्वाजगे करेला कौन रेजिम मैट्रिमोनियल शादी करत हुआ या शादी करत हुआ कोरे बियाँ या शादी करत हुआ सेपारेशन जी बियाँ या शादी करत हुआ कॉन्ट्रा में देख लो ये तीन गो जोन बा इमे चाहला एक गो में शादी करे के नहीं तीनों में सक बस शादी करे नहीं सक बा मैं तो बड़ा स्वाद के करे के चाहला एगो वा एगो रिज्यूम जोन कुमार जी
1: इमे अभी अभी तीन गो हमने के बोलला
0: हाँ
1: शुरू करी ला जा को ए बिया के साथ तो जब एगो शादी होला को ए बिया तो कौन ची बोला जला को ए बिया
0: हाँ आले एक बार आदमी है सोचेला कि को ए बिया तो आदमी ने आदमी बोले ला अरे हम का तो लिखोए से शादी करब कुमा जो ओकर शरीर से शादी ई करे कर को और ओकर तो बियाँ तो सब चीज जो ओकर बा धन दौलत हो जमीन हम सब ओकर जी बियाँ जैसे हमने बोली ला सर मैं सेलमा हमने रेजिम कम्युनिटे दे बियाँ देखी ला सर ये जब एगो पति पत्नी जाला शादी करे है कुमा जो लेता सिविल में तो वो बोलेला कौन कालीते शादी करता मैं एगो चीज है हम तो गईली शादी करे तो सोच ले नहीं रही हम के वो आदमिया बोले कुंज ओलोफिशिवा मतलब बोले था कुंज साली काली ते शादी कर बे तू आ तोरा एगो छोटा सा पापिए देवेला स्वाजगे करे के कौन ई में आर सबके तनी तनी एगो मजा एफ ओ माशो बा को बियाँ का हे पैरा सोन जी बियाँ

0: शादी सिबुजों कोंत्रा में करब कौन कौन ची है तो हिया कब्जाला शादी करे एगो आदमी तो बोले कौन तो बोले तू ही देख देखे लिया अपने नहीं जानता कौन सी शादी करे मिस्र में एगो छोटा सन देवेला एगो मेमो वो लेता सिविल के ऑफिस हुआ जाके तू स्वाज के कर अरे पाँच मिनट में जब वो कुमा जब शादी करता को बियाँ कम्युनिटी दे बियाँ जब को रेजिम मैट्रिमोनियल कम्युनिटी दे बियाँ कब शादी करेला तो वो देखब ओकर दिमयाज में मशोने ही नहीं करेला कोलोन देखब कुमा जे हई राइट हैंड साइड में नहीं बोलेला कौन काल थे शादी कर ले बा जब नई मांशो ने करेला ऊ कौन शादी कर ले बा मैं सेपरेशन जिबिया में लिखे ला यहाँ को बियावा में नहीं लिखे ला तो ऊ अदमिया शादी कर ले बा रेजिम कम्युनिटी दे बियें बस ही नहीं बा ऊ कर लाग दे मयाज में कौन काली थी शादी कर ले बा और ऊ जोन जे कुमा जे जोन के नहीं लिखल बा ऊ शादी कर ले बा सेपा है कोई बियावा कब शादी करेला कोई बियें तो ओके चाहे ला है कि कब लाखुआ बनाई हो ऑफिस हुआ हुआ ओके बोला वो अरे शादी कर लो ना कोई भी है अरे कोई अल से तू शादी कर लो कोई भी है मैं नहीं मोशने करे ला सा ईमेल हो कौन सी है
1: अब जब सेपरेशन जु बियन रहला हां तो कर मैं कहीं ना कहीं लिखा रहला कि सेपरेशन जु बियन हां पहले रात में लंस
0: हां हां पहले में लंस मैं भी हमने आई ला सा ई कोई बियन हुए में रेजिम मैट्रिमोनियल में बड़ी खुशी की बात है शादी करेला के एगो आदमी जब एगो मजे हो गल बना
1: हाँ,
0: हाँ, हाँ। नहीं मैं एक बान आदमी सोचेला एगो मिले नहीं सकी शादी करे एगो शादी ये कभी सुन ले हुआ बोले अरे तू तो कोई लड़का हुई मिने के हाँ तो ओके कब ओके बोला था हमने के कानून लिखेला लिखल बा एगो मिने जोन के 18 बा और 18 ans oui comment dire 16 ans c'est 18 ans tant si vous ont 17 ans bah hein tu ou le quoi ou le comment dire minewa ce qui s'adit carré régime communauté des biens de ces mots ça régime légal communauté des biens
1: आगे माफ करा लेकिन आगे 16 बरिस के 17 बरिस के ये सब शादी होता हल
0: हां होत रहल में एक बान आदमी उ बखतवा नहीं जाने कि अभी को पूछे जो अभी देखो सब कैसे होला हो मजा शादिया कैसे करेला तो तीन कार तक में बोले नहीं तो अभी तो लाज नहीं होलबा अतान करिए कब हो जाए तो के कुमा जैसे बुजन जिस बीता तो मीने मजे हो गए
1: हम जाना थे हमार माँ के शादी 16 बरिस में हो रहा
0: हाँ है का तू देख दे सिलमा पहले की शादी कुमा जे रहल तो सिविल नहीं रहल समझ लेना कुमा जब कब शादी करें सन 1981 से कब लालवा सांझे रोल बोले हर है आदमी जो शादी कर ले बा कुमा जे है एगो शादी में खाली शादी के कुमा जे जो रिकोनेट नहीं हुए उस सदिया से सकी अब कानून हो जाए वही सदिया अब से की करी मोया सिविल नियर समझ लेना
1: आगे उतना मोया सिविल नहीं होता
0: नहीं नहीं फंस के हमने के देखो बोलिए कि हे माँ बाप शादी कर ले रहल तो नहीं शादी कर ले रहल कुमा जे सिविल वो बकतवा में मोया सिविल नहीं रहल में का होल 1981 के बाद लेता सिविल के लालवा गवर्नमेंट पास कर लग कि मजे अब एगो आदमी शादी करी तो मौजा सिविल करी और जे नहीं कर ले हो ऊ बकतुआ में कैसे बोले तो माता जी अब का तो वह एन के बाद सखी जाके कुमाजे लेता सिविल में जनाई कि अब ओके कुमाजे मन बा ऊ सदिया जोन कर ले रखल अब ओके मौजा सिविल
1: ओके एगो एगो पहचान दे बेलन जा ना एगो हाँ। एगो थप्पा ले गेला एगो पहचान दे वेलन जा और ऐसन में काल के पति के कुछ हो जाए या पत्नी के कुछ हो जाए तो जमीन के मिली जायदाद के मिली के ऐसे जरूरी है जाने की कि जिबियावा कहाँ जाता
0: हाँ, ना हाँ आली अब यहाँ देखा था ऐसे ना ओके कुमा जे 18 ans बा या 18 ans से कम बा मैं 16 ans से 18 ans तक ऊ पेयड हुआ में सके शादी करे एगो रेजिम कम्युनिटी दे बियाँ में जैसे कोई बिया बोलते हैं कोरे में एगो चीज है एगो बोले कि एगो छोकरवा जन शादी करता या छोकरिया बोले हम नहीं शादी करब कोई बिया हम के मन बात शादी करे सिपोजो एगो सेपरेशन जी बिया ओ मिने हुआ सकी शादी करे एगो लोट है में कम जी को जे रेजिम कम्युनिटी दे बिया में नहीं नेसेसेर एगो दूसर में सिपोजो सेपरेशन जी बिया हाँ तब ले ओके जीज परमिशन वा नहीं दे वो मांग करता जीजुआ से तो जीजुआ हुआ देखी

0: en sombre, ou décider kari dune ke kab dekyo kar haime, est-ce que il chokorwa ke dune ya chokoria, dune ke 18 ans, hai kuma de seta jabi hai maze neiba, 18 ans ar hai se 16 ans takba, hum décide karab i, si pa, dune mangata ou shakal da ide nei, ou décide ou la accepte oui, ya zizwa boli en chambre, hum neide. तो देख ला हिया कैसे तीन कार आदमी भाई लोग सोचेला अरे मर बिठवा तो हो गल बतनाला कि इतना छोकड़िया के पाछे बा दिन रात हमके बोलता पा हमके शादी करा दे ओकर से शादी करा दे तो हम तो के बोलल मिनेर हई और हम तो जानत हई मिनेर के दुकान नहीं बा
1: हाँ।
0: नहीं बा हमनी के कानून में
1: माँ बाप खड़ा होला
0: तो हुआ उसके तो उस शादी करे सर बस के ओकर बान माँ बापवा खड़ा रही तो मांग करी एगो जीज सम के देख हमार बेटा के मन बा शादी करे के तो शादी करी तो के परमिशन भी मिली तो सदिया भी होई आर के मन हुई शादी करे कुमा जे रजिम मैट्रिमोनियल हो गई भी है सकी एगो दूसरा है कुमा जे रजिम में शादी करे
1: बहुत बढ़िया
0: देख ल आली अब हमने आइला सा यही इम्पोर्टेंट चीजों में ये हमने जो बोली ला सा को ही भी है तेरे लोग हम क्यों क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं तो हमने बोला ये कैसे हुए ला कौन सी है आली तो हमने के रेजिम मैट्रिमोनियल जो बात को ही भी है ये कंपोज़े हुए ला दे पैट्रिमोन में मतलब दो गो है है में है डिवीजन में सुबह दो भाग में एक मजे जस्ती ऐसा रही बोले के दो भाग में है एगो है जी बी प्रो आ दूसरा है बियन कुमे ई खा तब न देखब सकब जीवोस्वा करब स तब जानब स कैसे ई चीज हुआ बंटाला आली जब उ जी बियन प्रो बा तो ओके दिखिला स ई का होएला हर जमीन हर जी बियन जोन एगो आदमी शादी करे के अगाड़ी उ ओकर रहल शादी करे के अगाड़ी ओकर रहल आली तो उ हमने बोली ला सा उ एगो जीबियन पर्सनल है और एगो जीबियन प्रोप है पर्सनल मतलब शादी के आगे कोनो इंसान का तू हो का हम हई शादी करके आगे अगर एगो बोली कि हम तो शादी के हई कोई बियाह से हमारे पत्नी से मैं ओकर बाप दे दे रहे के बड़का दो नाशो है सब एक देखब सा का दे रहा घर उ दे रहे बा जमीन उ सब दे दे रहे बा मैम कि हम शादी कर लें ओकर से कोई भी है हमके तो कोनो हक नहीं बा ओकर में बस की ऊ जीबियों में ओकर शादी के अगाड़ी वो एग्जाम्प दे ला तो हिया ओके कुमार जब ऊ है जीबियों में ओकर हम खुश नहीं सकब करे ऊ जीबियों में न हमार पे अमीशो बा ऊ मन बा ओके ले गो लिपोते कले ऊ सब देखब सा मन होई गो लिपोते कले के मन होई बेचे के मन होई कोई दूसर के खड़ा होई के गांचू में हम जीरो हैं मेम की हम शादी कर ले कहीं को बियन ऐसे तरह हम बोले रहे हैं एक बार भाई सोचे ला अरे हम शादी कर ले हाई कोई भी है हम मम्मा ओकर तो घर बा कंपमा बा लुटो बा सब हमरो की तो मिलबे करी नहीं भैया ऐसन में कुमार या कॉन्सेप्शन में जाए के नहीं चाहेला तो यहाँ देख ला जी बियाँ प्रोप जो पर्सनल जो ओकर रहल शादी के बाद भी देखब सब एक मिनट मैं यहाँ देखत हैं सर वो प्रोप्रिएटर रही शादी करे के आगे जानेला एक बार है माँ बाप बा कहा करेला बोले हमारे तो एगो बेटा बा एगो बेटी बा अरे काल शादी हुई बंगार ना हो ओकर पति माजे सब ले उले ओकरो के मिलबे करी तो बोले नहीं शादी करे के अगाड़ी चलो पोताज कर देला समर लड़का लोग के
1: हाँ यानी कि बेटी बात है बेटी के मान ला एक बीघा जमीन बेटी के दे देला घर इधर सब बेटा के दे देला शादी ले आगे दोनों के ओकर नाम में एकर जमीन बा ओकर घर बा तो ई सब होगल अब जब शादी होगल तो पति न सकी जमीन में घुसे और पत्नी न सकी घर में घुसे
0: अरे कर से जुड़ी आज खूब एक्सप्लेन कर देला तो आप देखिला सही एग्जांपल जैसे खूब बोलला माँ बाप बा एगो डोनेशन देवता
1: हाँ
0: मतलब ये एगो है दान देवता ओकर लड़का के नहीं दूसर के नहीं दिखते हैं सर ओकर लड़का के एगो डोनेशन देवता शादी के आगे जैसे अभी देख ली सर या शादी के कुमार जब कब शादी कर ले लो जाने पताज हो रहल तब हमर माँ हमके दे ले बा समझ ल ना तमनी को दोनाशो देवत शादी के गाड़ी बोले नहीं तो हमारे धन बा

0: एक उचित भी अच्छा है जब एगो माँ बाप दुनाशों करेला तो तोरा नहीं बाप पेय करे के हई कापत की हई एगो फे बाक में अनरजिस्ट्रेमा सब में करे के मजा पेय करे के नहीं कि काल के लिए सैंक पूछो जैसे हमार तू में से एगो जमीन हमार से बेचत हो काल हम के कब किने ऊ जमीन हुआ तो हम के चाहना सैंक पूछो गवर्नमेंट के पेय करे के ओकर वाले के मिहिया कब मऊआ बपुआ एगो लैका के देवता शादी करे के अगाड़ी या शादी के बाद दिल बाऊ के ऊ जमीन हुआ ओकरे रहेला तसावी जब शादी कर लक कोई भी है मिशेवा के काम मिलल सदियों के गाड़ी इस सदियों के बाद वो जीबियां हुआ ओकरे रही
1: ओके दोनाशियों बने
0: ओकर दोनाशियों ओके ये कब नुतेर के आगे कर लेबा तो नुतेर के आगे कब बोले ला बोला कौन काल थी कर ले वाडा बेचत हुआ ये जमीन हुआ तो हर लड़का से एगो वंत जिसे हमने बोल सा या एगो दान दे हुआ था एगो दोनाशियों
1: नहीं तो अभी एगो माँ बाप अपन लड़का के लापौताज करेला ना हाँ लापौताज अलग बा
0: हाँ?
1: बेचे के अलग बा
0: हाँ?
1: और दुनाशो अलग बा
0: हाँ?
1: या तीन गो चीज बताती सभी
0: हमने हाँ, हाँ? मिसलमत दुनाशो ई देवत एगो दान अपन लड़का के समझ लो हाँ? कैसे माँ बाप को मजे जीते ही में
1: हाँ,
0: जीते ही में
1: तो लापौताज नहीं होगा
0: नहीं नहीं लापौताज नहीं है
1: हाँ?
0: अभी ओके देवता बस वो तो अकेले बा भी
1: हाँ
0: अकेले बा ना अभी नहीं देखा था समझे पताज कैसे हुआ था नहीं सिपा को दिग्बान जिगे बा नहीं हमने देखा था इसे अभी एगो माँ एगो बाप एक के गो लड़का हुआ बा जो सदिया के बतुआ में बोल रही से ना तो ओके का करी ओके देवा था एगो दोनाशो जब जाके शादी करे के गाड़ी उसी बुजुर्ग जमीन हुई एगो घर हुई बोली बेटी सिपा हेले हम तो के दे देव थे अगर ये मरे के आगे हम जानते हैं खुशी रहती तो के दे दिला तो वो लड़कुआ ओकर फोफियते रही उजीबियाँ ओकर पेसोनेल रही शादी के गाड़ी शादी के बाद मैम की शादी कर ले बा ओकर जमीन है मिशेवा के कुछ नहीं मिली नहीं तो दिख ला कोई भी शादी कर ले बा रेजिम को मिनोते दी भी अब हमने देखी ला सा ऊ जमीन हुआ अली एगो सिक्सियों में भी कैसे एगो माँ बाप रहेला एगो जमीन रहेला अली से बोझ इमे जैसे जे तू बोला से बोझ जेगुचे बा पताज करेला कब सिक्सियों होला कब माँ बाप कब गुजर जला ना तो हुआ के मिलेला जोन जोन धन दौलत के मिला ऊ जमीन हुआ जो के सिक्सियों में मिलल बा ऊ जमीन हुआ ओकरे रहेला मैम की शादी कर ले बा हई कोई भी है ठीक है ये कौन कोई भी है कि सिनेमा में जब बड़ आदमी एक बार कोई बोले ला अरे कौन काल से शादी कर ले कोई भी है कुछ अभी तक तो के कुछ नहीं मिली
1: हाँ
0: यहाँ तो शादी शादी कर भाई कुछ ही नहीं मिला था एगो भोली के ते देख लो यहाँ बड़ी ऐ पोता बा और यहाँ कब हमने देखी ला सा एगो लड़का एगो सिक्सेशियों में एगो दुनाशियों में जब ओकर माँ ऊ सब कर दे बा वो नहीं है वो कैन पताज करे के पताज नहीं करके ओके मन नहीं हुई मैडम हाँ। के या ओके मन बा बेचे के या कुछ करे के जैसे बोली सतरे हुआ ऊ जमीन हुआ ओकर हो जाला तो हिया देखे ल शादी करे के अगाड़ी माँ बाप जे दे दिले बा एगो जमीन माँ बाप दे मर गल बा ऊ जमीन छोड़ के चल गल बा ऊ लैकुआ सिख से सू हमने बोली ला सर तो ऊ डेग बा उ ही रहे ला फोफिए ये तो जुली बा हाँ। जमीन के देख ली सही एक बार चीज के अब एगो आदमी शादी कर ले बा सिबोजो हम अभी शादी कर ले हैं अरे एगो बड़का केस अनली जहाँ कुमा जे एगो आदमी का करलक हमके एगो चीज करलक अब हमके पूछिव कर ली लाकूर में
1: हाँ।
0: तो हमके तो बड़का एगो दुमाज मिलल हमारे दुमाजवा कुमा जे अभी हमके यहाँ मिला था तो ऊ दुमाजवा जो मिले ला जैसे हमने बोल सा दुमाज कोपो गैल जो मिलल बा ऊ दुमाजवा ऊ पैसुआ
1: हाँ।
0: दुमाज तो गो पैसा है
1: हाँ हाँ हाँ।
0: तो ऊ हमरे रही
1: अच्छा
0: मिशेवा नहीं सकी मेम साफ है मिशे मैडम का बोलिया था तो मजा दुनो के वाइस वैसा
1: यानी हम आज कोई के दुमाज दनी और ओकर बदले में मान हम के कितना वो
0: 5 लाख 1 मिलियन
1: से 1 मिलियन मिल गल तो वो जो 1 मिलियन बा वो हमर रही
0: तुहर रही
1: पति के नहीं मिली
0: नहीं कुछ नहीं मिली ई दोमास मोगाल भी
1: हाँ।
0: जी ओके आर एक बार चीज नहीं देखला बोली अरे बाप हमर कपार फाची गयो गल बा दोमास हो के तो यहाँ देखला एगो दोमास कोपो गैल एगो दोमास मोगाल जब ओके मिलल तो ओ पैसुआ देखबा ओकर रही मिशुआ ओके कुछ नहीं मिली ई तो जोली बा दोमास के बात बोलत हैं सर अब का होल बा एक बार आदमी सपोज हो ओकर चीज एगो बिजनेस करता कैसे तू हुआ आर है तोहर पति बा, अब तू एगो कुमा जे काम करत हुआ उ में तो

0: परा चाहेला सब तोहर जुची जो के चाहेला काम करे के ई तोहर हो।
1: अच्छा
0: ई हमेशा एगो सुदे के सुबुझ एगो मशीन बा तो ओकर मशीन वा ओकर पत्नी को के नहीं मिली ओकरे रहेला पस की ओक मा जब बोले लन सर उची दे ट्रावाई हो अरे एगो प्रोफेशन करे के रहेला और से तो गो प्रोफेशन से पारे से पारे जे कर ले उनसन सब चीज ओक मा जे अपन अपन कुमा जे रहेला ई तो जुड़ी चीज बा। मैं एक बार आदमी अरे अभी हम काम करते हैं एगो बड़का फेम में हमके एगो फेम में काम करलक पतहुआ हमके बोली जाने ले अब हम तो के निकालब
1: हाँ
0: तो हम बोलिए फेयर डिसमिसल है पिता आप सत्य नहीं प्रोग्राम हमने के हई भाई को हई रलन टूरल वो करतल में हई में हमने तो आपसे पिता लालुआ जी छवाई अरे लालुआ जी छवाई में वो कब काम करता हई हई शिबुसो पतिया बस याम मदमो अब ओके देखबो कर पतहुओं के निकाल दिलक
1: हाँ
0: तो वो बोले नहीं तो के निकाले एंड फेयर डिसमिसल इकरे बोल जाला रीजन नहीं वैलिड बा तू हमके निकल ले एगो केस डाली लाकू इंडस्ट्रियल में अब वहाँ सिबोसो पुशवीव कर लक ओकर एम्प्लॉय के ओकर एम्प्लॉय वा के बिला गलो कर किस एम्प्लॉय वा तो यहाँ लाकू देख लब नहीं वो मैडम वहाँ जो काम कर ले रहा वो अपन काम कोरे कर ले बा यहाँ पथुआ एगे कर लग तो पथुआ के पेये करे के चाहे ला पैसा एगो जब एगो पैसा दिलक सिबोसो दे मिलियो
1: हाँ
0: कोनो के तो दस मिलियो देखो कितना बरिस कर ले हुआ काम कैसे कैसे तोर साले वो सब कितना मिले तो वो पैसुआ जो मिले ला ओकर कमुआ बगल से जो ओके कुमा जब मिलल वो ओकरे रहेला जो अदमिया के लकुरुआ में देवेला लकुरुआ में नहीं बोले ला मिशे मैडम के चाहेला वो के प्लेंटिफ जो अदमिया के स्वाद दल्ले बा
1: ओके चाहेला मिले
0: के चाहेला मिले के तो दिखला ही यहाँ ओकर काम करता तो ओकर लहई में तो ओकर पैसा मिली शादी कर ले बा को भी है रेजिम मैट्रिमोनियल जैसे उन्हें बस को भी है तो कौन को भी है कि सिनेमा ओके तो कुछ नहीं मिला था यहाँ है या कि ये तो जोली हो गल एक बार आदमी मोरिशियन लोग काम करेला अभी के लिए तो बोले जाने ली हम ही के एगो चीज करो बोले हम कि मन पाए लासिरंस ले के आई सिरंस दे वी सिपाही गो कुमा जे आई ले के ओके एगो लासिरंस ले वता कर काम में या कुछ में बस कब कमुआ में कब काम करे तो ऊ तो कंट्रीब्यूए कर ले लासिरंस वा के फिर मुआ से ना जब ऊ लासिरंस वा मैच्योर हो गल सिबोजन ले ले रहा एगो बीस बरिस के बाद बीस बरिस के बाद बेचारा रिटायर हो गल काम में से तो ओकर लासिरंस वा तो मैच्योर हो गल ना तो चाहे लो के लास कंट्रीब्यूए कर ले गल बा तो ऊ लासिरंस वा जो उनके कंट्रीब्यूए कर ले बा एगो पैसा है लासिरंस के पैसा ऊ पेये कर ले बा तो देख बा हियाँ लासिरंस कब दे तो जो नसी में आसीगे रखल ओकरे तो पैसा दे तब ओकरे दे तो वही पोवी तेरा हई मिशी हुआ मेम की शादी कर ले बा कोई भी कुछ हो के नहीं मिली
1: ये बात अलग बाकी पैसा लेके पत्नी वा पैसा दे दे लगता सके
0: ओके देखो से करे ये हमने के नहीं देखी
1: रहा हक नहीं बा
0: ओकर में हक नहीं बा तो ये देखला एगो एगो एगो कैसे होएला अब ये वो जोली चीज है अब सकेला ओकर एगो घर हुई
1: हाँ
0: एगो जमीन हुई शादी करे के अगाड़ी जैसे बोली माँ बपुआ ओके दे दे एगो डोनेशन माँ बपुआ के बाद तो ओके तगो सक्सेशन मिलल घर भर मिलल या जमीन मिलल या कुछ मिलल तो वो ओके दे सीधे कर लग बोले अब जाने ला बूढ़ा हो गल बूढ़ा में कहाँ जा मरे वो घर का हो इतना बड़ा महल नियर हम बेचब तो वो जमीन वहाँ बेचलक घर वहाँ बेचलक ओकरे नहल ना बस ये उजीबिया वहाँ ओकर रखल पेसोनेल रखल तो हियाँ देखब ऊ जीबेवा कब बेचेला ऊ पैसवा ओकर मिशेवा के नहीं सके अब ओके मन हुई ओकर बेटी या बेटा के उठा के दे दे के मिशेवा कुछ नहीं सके बोले हाँ सकेला को मजा तनिया मेरे दे होई बोले देखा का करता उतना दिन जीले हई अब ओके सोचा था एक बार तो नहीं बाबू
1: ऐसे हुएला ना कि आगे जब सब कोई शादी करा था तो बोला था छोकरा चाहना देखिए कि घर बना दिला
0: हाँ
1: तो बोले घर बना दिला तो ऊ जन घर वा बने ले बा बोले से पहला काम करे थे पहला घर बना लुत्तो किन ले तब बेटी दिवप सब तो वो बेचारा जाके पर घर बना दिलक लुत्तो किन ले लग सब कुछ कर ले लग तब गल शादी करे अब शादी कर लग अब बेटी नहीं सकता रहे जीवोस बा तो घर वा ना ओकर होई ना लुत्तो वा ओकर होई
0: हाँ लुत्तो वा तो होई और घर वा जो नदमिया किन ले रहा ओकरे रही
1: है कि वो शादी के पहले किन्ने बा, यानी शादी के पहले के जितना भी

0: तोहर चीज किनले हवा चाहे वो घर रही चाहे वो जमीन रही चाहे कुछ हो रही वो तोहरे हा मैम अपन बिजनेस शुरू कर ले हवा
1: मैम की बिजनेस वो तोहरे रही
0: हाँ वो सब तोहरे रही
1: लोटो किनले वो देखते हैं वो मर्सिडीज हाँ तो शादी के कुमार गाड़ी जो किनले ही बा तो मर्सिडीज वो तोहरा हाँ हाँ पति ने से जो कि बोली बाप 2 million 3 million की किनत है तो ये वो चीज है ना ये वो सैंप देखते हैं लुटो के तो देख वो तोहरा वो नहीं सकी बोले हाँ सकी कौन जीरे करे तोहर परमिशन से मिसिल मान लो तो हुआ तो तोहर नाम में लो तो हुआ तो तोहर रजिस्टर भी कर ले हो एंतिया में तोहर नाम में तो वो लुटो तोहरे रही वो काल तोहरा मन हुई बेच दई के हमर से बेच दिया है बस कि हमरो लुटो इतना जोली नहीं देखो एगो चीज है वो लुटो के पैसा तोहर रही एगो चीज इम्पोर्टेंट है कभी वो आदमी शादी करेला तो कौन काली थे कि सोचेला आयो हम तो शादी कर रहे हैं पिता देखो सभी दे तू तो आय अभी नहीं आता नहीं सकब सो फिनी हुई जोली माँ बोले रही तेरे लुआ कि ये रेजिम सही कम्युनिटी दे बिया जिसे हमने सब कोई बिया ये दुख भाई के रल एगो हमने देख ले सा जी बिया प्रो देख ले ली सब अब बुत अंबुत कैसे होल अब देख ले से कुछ जी बिया कुमें पति पत्नी के कोई से एगो जी बिया कुमें होला ये कहाँ है बिया कुमें जो हमें के पुस्तक मिले बा अरे एगो रेजिम कम्युनिटी दे बिया में बा ओकर नाम ही है बिया कुमें ये दोनों के होला पति पत्नी के जब पति पत्नी शादी में किनेला अभी तू शादी कर ले हो तो उपमा जैसे बुजुर्ग जमीन एगो घर जाके किन ला तो ऊ जमीन वहाँ एगो जमीन एगो बिया कुमें है मतलब ऊ घरवा और जमीन वहाँ तोहर है और तोहर पत्नी के है ये बिया कुमें ये बिया प्रोप नहीं है बिया कुमें है तो साविज्य सब चीज जो किन ले हुआ बिया कुमें जैसे हम बोलिए घर किन ले हुआ एगो जमीन भी बा दोनों किन ले हुआ शादी में ये कुमा जे जी बिया हुआ ये आप अच्छे है जैसे हमने बोले सन ऐ डिविजन में मतलब तोहर और तोहर पति के भाग बा हक बा ऊ घरवा में यहाँ पता नहीं बा बस कि दोनों तो संगे किन ले वंशन कब दोनों संगे किन ले वंशन तो ऊ जमीन हुआ देख बा दोनों के भाग बा हाँ पता नहीं बा एक नाम एजीविज में हमने देख ले रही सर एजीविज में कैसे हुआ काम करे लंसन आलू तो हमने के देखे कि सहला हर चीज जो किन ले बा पति पत्नी संगे शादी में तो उ लोग दोनों के हक बा उ जमीनवा में आले तो हिया देख बा एगो कब मेम की एगो पति एगो जमीन किन ले बा शादी के है में पौधम हो याद जैसे हमने बोला सर शादी में वो अपन पैसा से किन ले बा कोतवा में नहीं मांसियों ने होल बा ओकर नाम पत्निया के एक बार जाला बोले जाए हम तो किन ले हम अपन नाम में डाल ले ला यहाँ शादी कर ले बा कोई भी है मेम के एगो पति या एगो पत्नी कब शादी कर ले बा कोई भी है में माफ करो बस वो जमीन हुआ मेम की वो अपन पैसा से किन ले हुई श्री भूषण जी से बोली ना पतिया अपन पैसा से किन ले बा ओकर नाम में नहीं दे ले बा वो पत्निया उत्तमाचिक ओकर जमीनवा में ओकर भाग बा ओकर धोआ बा एगो प बा हुआ देख ला हिया मेम की पतिया हिया रोज बड़ बोली हम हाँ, हाँ. अपन लिस्टुमा में टापे करके छाती में जैसे हमने बोल जा तो बताइए का थोर जमीन है ई तो हमर हम किन ले हई भैया
0: कोई भैया शादी कर ले हवा
1: शादी में किन ले हवा
0: तो कुछो करवा वो पति पत्नी दोनों के हो हाँ। भले एगो लुत्तो किन ले हवा वो भी पति पत्नी दोनों के होवेला यानी शादी के बाद कुछो किन बा हाँ। जब कोई भी शादी कर ले हवा तो पति और पत्नी दोनों के होवेला अब एगो जैसे अब बोल देला अभी फिर कोई कैसे करेला एगो शादी जब टूट जला दूसर शादी करे लंचा तो जब दूसर शादी करता तो पतिवा जोन बा ओकर घर पहले से बा ओकर सकेला लड़का भी होई अब जब एगो दूसर एगो दूसर जना शादी करके वो घरवा में जाता तो वो घरवा में पत्नीवा की ओकर जैसे अभी समझावत हुआ तो जो पत्नीवा शादी करके गलबा ओकर शादी ले आगे मान

0: शादी ले आगे दीपांश कर लेबा सिपा मेप कर लेबा या घरवा में एक और गो लिताज दल लेबा यानी कि उपत्निवा जोन बा ओकर हक नहीं बा शादी ले आगे
1: हाँ शादी के आगे नहीं बा कुछ बस ये पतिया के हुई बस कि पतिया ने घर किन ले बा आजूते कर ले बा लिताज दल ले बा है उमे बस उस जमीनवा ओकर है ओकरे रही मैं सिलमस
0: अब ओकर लड़का रही था
1: हाँ तो ओकर लड़का

0: पति दूसर शादी कर लेबा तो अभी जो जमीनवा बा जो घरवा बा ओकर में केकर धुआं आवेला लाइक वन लोग के पहला धुआं आवेला कि जो बाद में शादी कर लेबा बस की शादी जब जैसे बोलला कि एगो शादी जब करबा कोई ब्याह करत हुआ तो कोई ब्याह में जब ओकर शादी के बाद कुछ किनबा तब तो हर आवेला
1: लाइकवाल जो दोनों बा अभी सदिया में पहला होला से तसी बुझो हुआ जीवो से कर दिल हई के हो पत्निया के तहिया ओ लइकुआ लोग के हक बा कब जब बपुआ मर जाए तब
0: अच्छा
1: बपुआ तो ही बा जीबिया तो ओकर नाम में बा तो वो के मन हुई काल बेचे के तो लइकुआ के परमिशन तो नहीं खोजी ना
0: अच्छा
1: समझ ला ना पसी
0: मेन के कुछ मिलेला
1: नहीं जो पत्निया के है हाँ जे शादी कर ले होई कुमा जे आर है पंदा सदिया में उ किनले बा घर
0: नहीं पौरा नहीं शादी उकर के वो सब हो गल बा अब पत्नी जब आल बा तब घर पहले से घर बा
1: हाँ तकमा जे एक पत्निया के कुछ नहीं बा कुछ नहीं मिली एक तकमा से अई तक जीबिया तो बोली से ना जीबिया प्रोप उकर रहल मिशेवा के तहिया तकमा जैसे बुझो शादी करके आल तब वो तो नहीं बा बस जीबिया प्रोप किनले बा या उकर जीबिया आगे कर किनले हो या सदिया में कब किनले हो तब वो के मध्यम मुआ की मिली मैं तहिया तो शादी में नहीं है कर ले बा जीवोस कर दिला
0: तो काल परसों जब पतिवा के देहांत हुआ था
1: हाँ तो दू गो लइकुआ आई उमें ओके
0: पतिवा नहीं आवेला
1: नहीं पत्निया के नहीं मिली ना बस वो तक कुमा जे ओकर हई में नहीं बा उकमा जे हई मिले के ओकर जब एगो माँ बाप मर जाला तो चाहेला लइकुआ के मिले के ओकर जिगिछे है तो ओकर जिगिछे वा कब मिलेला तो उ लोग कुमा जे हई एंटाइटल होवेला कुमा जे
0: उ घर पत्नीवा के ओकर कोनो हक नहीं है अभी घर में
1: कुछ नहीं है बस वो तो ओकर नहीं रहल ना जमीनवा रहल आ शादी के गाड़ी कुमा जे हई हई मिशेवा किन ले लेलक जीबिया पोप अब ऊ में का करे अपन पैसा से सिबुजो हई कुंसिया कर ले एगो घर ऊ लाहौ दल्ले बा तो वो तो करे मजे उकरे रही मैडम वहाँ की तो कुछ भी नहीं है मिली
0: मैम पैसा दल्ले बा बाद में
1: हुँ? नहीं जी पैसा दल्ले हुई तब ये कंट्रीब्यूशन फिनेंशियल जिसे हमने बोली ला सर जो ऊ कर ले हो शादी के बाद ऊ घरवा जो मिशेवा के रगल वो कर में आजूते कर ले बा ये भी देख सब कथाज हुए ला तो जीवोस के बाद है तो यहाँ देख ला का हुए ला तब तब मतलब मौक मजे हाँ हंतरे हुई तो अभी यहाँ तो नहीं बस वो तक मजा बेप मजे एक बगल बाब फिर मेकर लड़का हाँ तो
0: कुछ करेला शादी करेला आगे पैसा निकाल के दे देवेलन सा और फिर घर बनावेलन सा तब बाद में वाया सिविल करेलन सा तब वो तब शादी नहीं आगे पैसा दे देलो तब बन गल अब तो रीजन ना नहीं दियाल बा पैसा दे गल दे निकलला देला किनला अब तो सब कुछ तो हो गल बा अब जब शादी के बाद अयला जब डिवोर्स हुआ था तब पत्नीवा के कुछ नहीं मिली काहे वो शादी के पहले त खुशी रहला तो शादी जब करे लंस तब कैसे बोल जाला प्यार में अंधा हो जाला लंस तब लोग के बुझाला कि एगो है एगो एगो कैसे बोल एगो इंसल्ट हो जाला
1: कि बखतवा नहीं देखे
0: वो बखतवा नहीं देखे तब पैसा दे के रहा दे देला लमवार किन लेला लिली किन लेला सब कुछ कर देला होम सिनेमा डाल देला घर में झूला डाल देला सब कुछ हो गल अब शादी करके जइबा हुआ तब बाद में जब समस्या हो गल जीवोस हो गल तब तोहर लागे तो कुछ नहीं बा एको फैव नहीं बा पैसा ओके देला वो अपन नाम से सब कुछ किन ले गल घरवा में दल ले गल
1: तो ठीक यही बोले लन सन औसन औसन का में कितना खुशी हो या कुछ करवा चाहेला कानून बोलेला मैडम तू धर ले वो घरवा में पैसा ना कॉन्ट्रीब्यू कर ले वो ना प्रेबुआ कहाँ बा कैसे हमनी के तो कानून है सर हमनी के पुस्तक में लिखल ला ऐसा का में चला प्रेव तो प्रेव बताई कि चाहेला कुछ ना कुछ लिखल में या कैसे नहीं नेसेसरी लिखल
0: में के दिमाग में ई है ना कि खुशियों के शादी करत हुआ सब परिवार खुश बा तू खुश हवा सब कुछ लाइक ढेर कोई लड़ झगड़ के शादी करेला तो ऐसन में थोड़ी ना बोलियन सके चाहला फेव रखे के ताज वोस हो जाए तो बोले अब तो अब शादी ले आगे वो फिर दालत हुए
1: हां मैं अभी के बोलत तो राय को काट के बहुत सा जोन बा जेन पहले के हमने के मां बाप नहीं वो सकेला को मजा नहीं सोचा तले से अभी के जेन लोग पहला बोली जाने में तो के पैसा दे हां खुशी ऐसा वो बोले इंसान आजकल के
0: पापियेगर
1: हाँ पापियेगर ही में बड़े और दूसरा है बोले पापिया नहीं कर लकू वो मिशेवा सोचा था माले बा कभी ही यहाँ कुमार जाओ कि पापिये बा कानून तो पूरे मांगे ला ना पापिये यहाँ कौन पापिये बोले हम तो के नहीं दे रहे दे मिलियों वो घरवा में बनाए के बोले ना ये कौन पूरे बातोर बोले हम तो के बात

0: पाइला हमर पैब बोले लाबंक में हमर यहाँ में कौन आदमी के पूछ में बात 2 मिलियन हम तो लाबंक से एगो लोन ले रही उ लोनवा ले रही तो जाके कल एगो पापिए लाबंक से मांगी कि एगो ले आ लाबंक पैसा देवे ला रीजन ऑफ मजे काहे मांगले
1: हुआ
0: लिखले बा लोन ले देख ला पेपो सब लोनवा लिख देवे सब तब कल उठा के पपिए वाला कुरुआ में फेंक दे बोले हिका हिका हम दिले रही एगो लोन ले रही लाबंक और लाबंक बोले लोन कब मंगले रही हमके पूछले रही एगो घर में और पूछले सन कहाँ कौन घर कैसे का मजे तो हिया का हमार पैबुआ बा तो देख लो पपीवा में नहीं बा
1: हमने बता दी जा कोई भी है ऐसे पहाड़ जो भी है और जो कॉन्ट्रैक्टर जो शादी है कोथा में कौन जो है अगले हफ्ते बतियाब जा
0: हाँ, हमने देखिला सर जब एगो जिबिया कुमें कब कुमा जे है एगो है पति पत्नी बा दोनों के उ जिबिया हुआ चाहे ला कंसेंटमेंट दोनों के कब बेचे के था एगो मिशवा शादी कर ले बा कोई भी है वो एगो जिबिया वहां रगल बा वो शादी कर ले कब एगो जिबिया कुमें है तो चाहेला पत्निया के भी परमिशन ओकरो कुमा जे है चाहेला कंसेंटमेंट
1: किनबो करबा तो चाहे पति पत्नी दोनों के नाम पर आवेला ना
0: हाँ तो वो कब किन्ना तो हाँ इतना ऑटोमेटिक में सिपोज दिखले से पहला चीज ना एरिते होल कुमा पसी शादी में मिलल बा ओके कुमा ओकर मिले ला तो हिया चाहे ला मिशेवा के कुमा जो कर कंसेंटमेंट बोले जाने पत्नी हमके मन बा हो घरवा जोन बा बेचे के तो बोले बेच बे हम नहीं देव कंसेंटमेंट फिर नहीं सकी बेचे
1: नहीं बेचाए फिर
0: हाँ आप सिनेमाओं के मनो ही बेचे कि अब दे के तो बोली हाँ आले चल नुते रही हम आप सीए करब
1: चल तो एक साथ हमने की आज के जो कार्यक्रम बा आज की चर्चा यहाँ पर समाप्त हुए था और हमने की जो आज के विषय रहा डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर डिवोर्स यानी कि तलाक के बाद जो प्रॉपर्टी रहला तो के कैसे हमने बांटी ला जा केकर हक कौन ची बर्बा एक बारे में हमने एक और कार्यक्रम में फिर बतियाब जा कपिल देव रघुनंदन जी हमने के वकील के बहुत बहुत धन्यवाद और हमने के इतना अच्छा से समझेला उम्मीद करती थी कि हमने के जो श्रोता लोग हम जा वो लोग हमने के दर्शक लोग हम जा वो लोग अच्छा से समझ ला जा अब थोड़ा उपशों बा जब शादी करत हुआ को ब्याह करबा सिपाहियों जी ब्याह करबा या कौथा के करबा सोच समझ के लेकिन जो भी करबा कुछ भी किनबा याद रखिया तोहरा चाहे ना एगो फैव आगे चल के कुछ भी सकेला होई आजकल के ई शादी में नहीं सकबा बोले कि एगो शादी कितना साल से की चले वो तो सकेला 1 महीना में भी टूट जाए 6 महीना में भी टूट जाए या सकेला 18-20 साल के बाद भी टूट जाए था फिर क्वेश्चन लेवल अच्छा है जब भी कुछ किनबा अपन फेव रखिया एक साथ आगे चाहता है बहुत बहुत धन्यवाद शुभ दिन नमस्ते।

0: ये सुनते समाचार रजनी के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। शुरुआत स्वास्थ्य संबंधी इन जानकारियों के साथ। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और त्वचा से जुड़ी समस्याओं के इलाज

0: इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई दवाइयों का स्टॉक आजकल देश में नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग के अनुसार प्राइवेट सेक्टर में 9 से 100 दवाइयां उपलब्ध नहीं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में ये संख्या लगभग 50 है। हालांकि इनमें से कई समस्याओं के इलाज के लिए दूसरे विकल्प मौजूद हैं। आज सुबह कांदेस के विक्टोरिया अस्पताल में जल संबंधी सप्लाई में परेशानियां हुई। अस्पताल में भंडारण समाप्त हुआ था और इसके चलते सेंट्रल वाटर अथॉरिटी की जल टंकियों को भेजा गया। इसके अलावा दमकल कर्मियों की भी मदद ली गई। फिर भी स्वास्थ्य मंत्रालय आश्वस्त होना चाहता है किसी भी प्रकार की आपातकालीन सेवा प्रभावित नहीं हुई है। सेवाओं के लिए अलग जल भंडारण है। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के अनुसार विक्टोरिया अस्पताल के स्तर पर पानी की कटौती नहीं है, क्योंकि ये अहम सेवाओं में समझा जाता है। इन पिछले कुछ दिनों में काफी बारिश नहीं हुई है, लेकिन हमारे जलाशयों को भरने के लिए पर्याप्त नहीं। CWA के महानिदेशक श्याम तानु के अनुसार माओवाकवा अभी भी 39% भरा है। उनका कहना है कि करीब 40% होने पर भंडारण का संचालन अच्छी तरह से किया जा सकता है, जबकि 20% से कम होने पर स्थिति चिंताजनक हो जाएगी। बता दें कि बारिश की स्थिति पर नजर है, जिसके बाद ही संभावित बदलाव स्ट्रेटेजी तय की जाएगी। कार्बन की मात्रा कम करना और हमारी सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाना, इस ट्रांजिशन में तेजी लाने के वास्ते निजी ऑपरेटरों से बस मॉडर्नाइजेशन स्कीम से गुजरने की मांग की जा रही है। एक इलेक्ट्रिक बस खरीदने के लिए 3.5 मिलियन रुपए तक की फाइनेंसिंग मुमकिन। बहुत जल्द UNDP और ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी द्वारा समर्थित प्रोमोटिंग लो कार्बन इलेक्ट्रिक बस ट्रांसपोर्ट इन मॉरिशस परियोजना के संदर्भ में ये सहायता राशि बढ़ाई जाएगी। विदेशी समाचारों की ओर बढ़ते हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के साथ साझेदार और आउटरीच आमंत्रित देशों के नेता भी हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन के दौरान वैश्विक चुनौतियों, बहुपक्षीय सहयोग और ग्लोबल साउथ से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद। भारत की अध्यक्षता में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस आज नई दिल्ली पहुंचे, साथ ही अन्य नेता भी पहुंच रहे हैं। संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

नमस्कार श्रोताओं, रेडियो मनोरंजन की लहरों पर आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं हूं रत्ना, पहुंची हूं आज के इस हसीन सफर में आपका साथ देने के लिए। जहां कहीं से भी साथ दे रहे हैं, बस आशा करते हैं कि आप सभी मजे में होंगे और आज के इस कार्यक्रम के साथ बिल्कुल ही प्यार से जुड़ चुके होंगे। आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम बिल्कुल आप ही लोगों का कार्यक्रम है, जहां पर आपके भेजे गए खत, आपकी भेजी हुई भावनाएं, शब्दों में लिपटी हुई ये बातें हम आप तक पहुंचाते हैं। वैसे फिलहाल एक घंटे का ये सफर है, तो चलिए आज के इस पहली चिट्ठी को लेते हैं जो दोस्ती पर किसी ने हमें लिखा भेजा है। दोस्ती के बारे में वे लिखते हैं कि आज के ज़माने की दोस्ती कितनी अजीब है, कितनी अलग है। आज के समय में दोस्त बस दोस्ती इसीलिए तो करते हैं कि सामने वाले का कुछ फायदा उठा पाए,

पर हम जिंदगी के इस सफर में, अनुभव की इस राहों में यही समझ पाए हैं कि दोस्ती निभाने के लिए बस दिल तक उतरना पड़ता है। नीयत अगर साफ है तो दोस्ती बहुत हसीन है। आप लिखते हैं कि ऐ दोस्त, दोस्ती मत भूलना, दूर रहकर भी याद जरूर करना। मिलना न हो पाएगा आसानी से, पर जब भी मिलेंगे खुशी के आंसू जरूर होंगे हमारी आंखों में। वो यादें, वो याराना हमेशा याद रखना। ऐ दोस्त, दोस्ती हमेशा याद रखना। तुम्हारे जैसा दोस्त ना मिला है, ना कभी हमें मिल पाएगा। निभाई थी जो दोस्ती, वो शायद हो कोई निभा पाएगा। वो दोस्ती की यादें हमेशा पास रखना। ऐ दोस्त, दोस्ती निभाना हमेशा याद रखना। जब अकेली थी मैं, तब थामा था हाथ तुमने मेरा। वो हाथ कभी न छोड़ना, जरूरत आने पर मेरे साथ, मेरे पास हमेशा होना। ऐ दोस्त, दोस्ती कभी मत भूलना। मैंने तो दोस्ती की थी, पर शायद वो मेरी दोस्ती भूल गया। दोस्त, दोस्ती करने के साथ साथ एक ऐसे बंधन में बंधते हैं जो अटूट होते हैं, पर कुछ रिश्ते दोस्ती के नाम से शुरू होते हैं और नफरत पर जाकर खत्म हो जाते हैं। दुख होता है ऐसे रिश्तों को देखकर, दुख होता है ऐसी बातें सुनकर, पर चलो फिलहाल जो दोस्त बहुत खास थे उनके नाम आज की ये हसीन शाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन जज्बात भरे शब्दों के लिए। और बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो दोस्ती है वो चंद दिनों की, चंद घंटों की या चंद लम्हों की नहीं होती। दोस्त बनाए जाते हैं जिंदगी भर के लिए, फिर वो चाहे उनमें कोई ऐब हो, कुछ कमियां हो, कुछ ऊंच नीच की बातें हों, कुछ नेगेटिव्स हों, कुछ पॉजिटिव्स हों, हम उसे पूरी तरह दिल से निभाते हैं, उन्हें अपनाते हैं। और दोस्त एक ऐसा इंसान है जिसके सामने हम दिल खोल कर रखने की हिम्मत रखते हैं। जो भी बात, जो भी दिल में दर्द है, वो बातें हम उनसे शेयर करने की हिम्मत रखते हैं। आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम की आज की ये पहली चिट्ठी थी। आशा करते हैं कि इन सारी चिट्ठियों के साथ साथ जो भी जज्बात बहते चले आ रहे हैं, बिल्कुल ये जज्बातों का कारवां है जहां पर हम आपकी बातों को रखते हैं इस मंच में। आइए एक गीत का ब्रेक लेते हैं और आते हैं हमारी अगली चिट्ठी के साथ।

दोस्तों आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम बहुत ही लाजवाब बहुत ही मज़ेदार कार्यक्रम और साथ ही साथ मज़ेदार इसीलिए क्योंकि आपको ये एक ऐसा मंच मिलता है जहां पर आप दिल खोलकर अपनी बात को रख सकते हैं अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ किए बिना। यही तो सबसे बड़ी बात है। कई बार हम कहते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, कोई मेरे बारे में क्या सोच लेगा, कोई मेरे बारे में मुझे कैसे जज कर देगा। यही सारी बातें तो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही बड़ी रुकावटें खड़ी करती हैं।

वैसे आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम. और चलिए इसी के साथ यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा लेटर, बहुत ही प्यारी सी शायरी किसी ने भेजी है. और आप लिखते हैं कि नींद भरी है आँखों में, नींद भरी है आँखों में, कुछ ख्वाब सजाए बैठा हूँ, तुम आओगी एक रोज कभी, यही आस लगाए बैठा हूँ. हूँ रात में तकता चांद को मैं, तारों की कैद में बैठा हूँ, और भीग रहा हूँ बारिश में, एक नाव में बैठा हूँ. ओके, यहाँ पर आपका अक्षर कुछ ठीक से आपने नहीं लिखा है. तुम आओगी एक रोज कभी, यही आस लगाए बैठा हूँ. लिखता रहता हूँ तुमको मैं, पत्तों में संजोए बैठा हूँ, और करता रहता जिक्र तुम्हारा, कविताओं में छिपाए बैठा हूँ. तुम आओगी एक रोज कभी, यही आस लगाए बैठा हूँ. बहुत ही बढ़िया. और आपने ये किसके लिए लिखी है इस बारे में भी आपने जिक्र नहीं किया, पर ये छोटी सी कविता जो भी आपने लिखकर हमें भेजी है, एक आस. बिल्कुल, कई बार ज़िंदगी में हम बहुत सारी चीज़ों से आस लगाए बैठते हैं, और ये एक कहते हैं ना कि एक आशा ही है, एक जीवन की आस ही है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत हिम्मत देती है. चलिए, आस लगाए बैठना भी एक तरह से कहते हैं ना कि ज़िंदगी से उम्मीद बांधे रखना, रखने वाला काम है. बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यारे से खत के लिए, एक प्यारे से मैसेज के लिए. और बिल्कुल, कुछ शायरियां हैं, कुछ दिल की बातें हैं, कुछ ज़िंदगी की कहानियां हैं, कुछ अपनों की बातें हैं जो इस मंच पर आप हमारे साथ साझा करते हैं. थैंक यू सो मच आपके इस प्यार भरे खत के लिए. और चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं. इस अगले चिट्ठी को अभी थोड़ी ही देर में हम शामिल करेंगे इस गीत के बाद.

दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों का फोन कॉल आ रहा है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मैसेजेस हमें प्राप्त हो रहा है। थैंक यू सो मच, आपकी चिट्ठी मिली। कार्यक्रम रेडियो मनोरंजन पर जारी रखते हैं और ये एक छोटा सा मैसेज यहाँ पर हमें भेजा है और आप लिखते हैं कि अक्सर हम पूरी जिंदगी रिश्तों की कश्मकश में उलझे रहते हैं। हम सबका अच्छा भी करते हैं, सबको खुश रखने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जब हमारी खुशी की बात आती है तो हम अपनी खुशी को भूल जाते हैं और सबकी खुशी को ज़्यादा मायने देते हैं, उन्हीं की खुशी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हम अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को निभाते निभाते हम सब कुछ करते हैं, लेकिन आखिर में इतना सब करने के बाद भी

कोई हमसे खुश नहीं हो पाता, उल्टा हम ही सब की नज़र में गलत बन जाते हैं। अतः आप कितना भी किसी के लिए कुछ भी अच्छा कर लो, लोग आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही आंकते हैं। आप कितने भी अच्छे हो, आपने उनके लिए कुछ भी किया हो, आपको उन्होंने आपको आपसे बस कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंत में जब रिश्ता तोड़ना होता है तो वे रिश्ता तोड़कर आपके दिल को दुखाकर चले ही जाते हैं। चलिए, आपकी चिट्ठी का भी बहुत ही, हम तो यही कहेंगे कि आपने भी ज़िंदगी की उस सच्चाई को इस चिट्ठी के माध्यम से सामने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद जो भी हैं, क्योंकि आपने भी अपना नाम नहीं बताया, पर जो भी आपने लिखा है, हम यही कहेंगे कि बिल्कुल 100% सही बात आपने कही है। कई बार हम बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठते हैं, चाहे वो हमारी पत्नी हो, पति हो, बच्चे हों, आस पड़ोस वाले हों, कोई भी हो, रिश्तेदार हो, उनसे हम कई बार आस लगाए बैठते हैं कि काश आप मेरा साथ देते जब मैं मुश्किल में था या मुश्किल में थी। पर जब वो आस टूटती है तो सच में सपने चकनाचूर हो जाते हैं, हकीकत से हमारा वास्ता पड़ता है। वैसे आपकी चिट्ठी का भी हम तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आपने भी अपने दिल के जज्बात आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ साझा किए, बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं इस गीत को लेते हुए।

आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम। दोस्तों ये जो कार्यक्रम है बहुत ही लाजवाब सा कार्यक्रम, जहां पर हम आपके खतों को शामिल करते हैं, जहां पर आपके कहे गए अल्फाज, लिखे हुए मैसेजेस, लिखे हुए खत इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं और जहां पर आप हमारे साथ जुड़ते हैं। बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम में भी कुछ ऐसी ही बातें हमने साझा की। आशा करते हैं कि ये सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे और अगले शुक्रवार को फिर हमारी और आपकी मुलाकात होगी।

अगले कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए बस अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जिंदगी हसीन है पर उम्मीदें कम रखिए। बस उम्मीद ज़्यादा लगा देने से ही ना उम्मीद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं पर फुल स्टॉप लगाते हैं। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह शुक्रवार के दिन शाम के 4 बजे से 5 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम में। इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को।

94.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3। कलाकार की बात

साथी लोगन भाई बहन लोग कैसे हो अजा हम तो एकदम तैयार है अजा पर रेडियो मनोरंजन के लहर पर तुहर स्वागत बा रोशन तुहर सेवा में उपस्थित हो गल बा यह तुहर अपन कलाकार के बात और बहुत ही बढ़िया बढ़िया गाना सुनला आपकी चिट्ठी मिली प्रोग्राम में जोन के प्रस्तुत करता रलन अपन तुहर अपन सखी रत्ना जी आज है शुक्रवार और सांझ के बखत बा और सितंबर महीना

0: के जो 11 तारीख आज है 5 से 6 बजे तक आप लोगन खातिर प्रोग्राम कलाकार के बात तो चलबे करेला हर एक सप्ताह हमने एक कलाकार के यहां जा आमंत्रित करेला सब परंतु आज कलाकार नहीं आ सकल तो लोग भली भांति जाने लजा कि जब कलाकार लोग यहां नहीं पधारे लंजा तब निके श्रोतागण कब काम आए तू भी तो कलाकार ही हुआ तो चला तोहर खतीरे को बहुत ही अद्भुत खेल हमने खेलब सा तोहर संगे और एगो प्रश्नोत्तर जैसे बोली लजा क्वीज हमर ओर से सवाल रही तोहर ओर से जवाब रही तचला नंबर वन नोट कर ला 402-807-402-8070 402-8070 पर और तो लोग तो जाने लगा कि मंगलवार के पब्लिक होली देबा और गणेश चतुर्थी बहुत जोर शोर से पूरे विश्व भर में मनावल जाए गणेश जी के वंदना गणेश जी के आराधना तो आज ही से बल्कि पिछले कुछ दिनों से शुरू हो गलबा तो चला पहला प्रश्न तो हर खतीर तैयार हो गलबा जरा गौर से सुनिया जा एगो मंत्र बा गणेश मंत्र बहुत ही आसान सा मंत्र है और उ मंत्र ऐसे शुरू होला ओम वक्रतुंड तो हमनी के पूरा मंत्र उच्चारण करके बोला जा 402-807-0 पर 702-807 जिस पर है जो मंत्र है ओम वक्रतुंड एके तू पूरा कर और हमनी के ऑन ए जवाब द तोहरा सुने के सभी लोगों को मौका मिली तो चला देर ने कर ओम वक्रतुंड के पूरा रूप में हमनी के लिए तू उच्चारण कर और पहला जो गाना है गणेश वंदना पर
1: You're listening to RM3 Radio.

0: अवश्य गणेश जी तोहर वंदना के स्वीकार करियन, कहे कि बहुत ही प्रिय देवता होवन और सभी के जो मनोकामना है हमश्य पूर्ण करेलन। तो चल हमनी के जो पहला श्रोता है लाइन पर चलाल होवन, ओकर से हमनी बात करब जा, स्वागत करी ल जा के कर। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, नमस्ते जी।
1: रोशन जी नमस्ते।
0: नमस्ते, का नाम बात तोहर?
1: वैष्णव से अनीता बोलत है।
0: अनीता जी रोशनो से बात करत हुआ, तो तोहरा बोली ला जा अभी
1: तैयार होते हैं जाई के भी कीर्तन करे गणेशा के।
0: बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तक कीर्तन भजन तक करते रहे ला तू। ये तो है जीवन है।
1: हाँ,
0: बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा। तो हमनी के बतावा है जो मंत्र हम तोहरा बोल ली अभी, ओम वक्र तुंड, तू तो भजन कीर्तन करते रहे ला, तो ये तोहर खातिर मुश्किल नहीं हो। हमनी के मंत्र के उच्चारण कर हमनी खातिर।
1: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम प्रदा विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा।
0: बहुत ही अच्छा, खाली एगो शब्द बा जोन अच्छा से उच्चारण नहीं करला, लेकिन पूरा जोन मंत्र रहल तोहर सुंदर आवाज में सुन ली जा, और तोहर खातिर बहुत ही का बोलब तोहरा बधाई हो अनीता जी, और तोहरा बोलब गणेश चतुर्थी

0: कि ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं तुहर परिवार के भी और तुहर जो इन मनोकामना हमेशा पूर्ण हो जाए।
1: हाँ, बहुत बहुत आपको भी और एमबीसी को धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: शुभ रात्रि।
0: शुभ रात्रि। अगर तो लोग भी फोन करके है मंत्र के उच्चारण करे खुशबा तो अवश्य आप भी फोन करके भाग ले सकबा। तो हर हम इंतजार करब ओम वक्रतुंड के पूरी रूप से तू मंत्र के उच्चारण कर 402-8070।

0: जी हाँ, बहुत ही सुंदर सा भजन गैलन विश्वानी दीपुआ जी और मधुर आवाज में। चलो दूसरा श्रोता के हम स्वागत कर अब जा। हेलो
1: हेलो रशन भाई।
0: नमस्ते वीना दीदी।
1: हाँ, सबसे सर्वप्रथम तो मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ सुंदर पुरस्कार के लिए।
0: आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ
1: जी, इसके लिए आपको हार्दिक बधाई है।
0: धन्यवाद बीना जी।
1: तो मैं फोन नहीं करने वाली थी, लेकिन खास आपको धन्यवाद देने के लिए मैंने कि आप मेरा कितना मतलब मेरे मन को रख दिया और कितना ख्याल रखा इसके लिए आपको।
0: जो पुरस्कार रहल तोहरे एक डिजर्व करेला तोहरे तह बधाई के पात्र हुआ ही। गणेश मंत्र के उच्चारण तो बहुत ही आसान बात तोहर खातिर।
1: तो रात दिन बोलते ही रही ला जा, क्योंकि सुबह शाम जब प्रार्थना करी ला जा, संध्या करी ला जा, तो सर्वप्रथम जो प्रथम देव भवन उनका तो चाहे ना नाम उच्चारण करेगी
0: बहुत अच्छा
1: अन्यों से पहले। हाँ। क्योंकि प्रथम पूज्य तो ही एवं, ताकि तो हमने के सब कार्य निर्विघ्न रही।
0: हाँ, बहुत अच्छा।
1: हम सुना दो थे मंत्र
0: सुना
1: वक्र तुन

0: बहुत ही अच्छा, बहुत ही बधाई हो आपको वीना जी। ऐसे ही मंत्र का उच्चारण करते रहिए पूरा जीवन
1: तो,
0: भर।
1: हाँ, ये तो हमारी देववाणी है ना भैया, संस्कृत। तो हमने बकायदा, मैं अपने मुंह में मिठू नहीं बनना चाहती, लेकिन हमने संस्कृत की पढ़ाई की है, इसलिए हमको अच्छी तरह से उच्चारण आता है, क्योंकि
0: बहुत अच्छा।
1: बकायदा हमने क्लासेस किए हैं संस्कृत की, हिंदी के साथ साथ, जो उत्तमा तक किया है, तो इनका भी हमने जो जहाँ तक इनकी पांच कक्षाएं आती है तो किया है, तो इसलिए। और हमारे यहाँ होता रहता है ये मंत्र,
0: बहुत
1: सब
0: अच्छा।
1: हम बोलते रहते हैं बच्चे सभी, तो इसके लिए आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद है, और बहुत बहुत धन्यवाद पुरस्कार के लिए भी। और आप खुश रहिए, भगवान गणेश जी आपके सारे विघ्न बाधा जीवन के हटा दें, आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि लाए, और आप इसी तरह हमारा और आपका जो रिश्ता है ये बना रहे, उनकी कृपा से।
0: धन्यवाद दीदी जी, ऐसे ही तो हर मीठा शब्द,
1: शांति से भरी रहे, यही।
0: धन्यवाद बीना जी, ऐसे मीठा शब्द बोलते रहिए हमनी के खातिर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
2: कंटिन्यूअस म्यूजिक RM3।
3: कलाकार की बात
0: चले साथी लोगन, तो हर स्वागत बा कला

विचार के बाद प्रोग्राम में रोशन के साथ एगो प्रश्न के जवाब त दे देला जा और बहुत ही सुंदर ढंग से अनीता जी और वीना जी ने जवाब देलन। चलो दूसरा प्रश्न तोहर खातिर अब हम जाप तोहर खातिर प्रस्तुत करें। तो लोग तो जाने लगा कि 14 सितंबर को यानी सोमवार को 14 सितंबर जो न गणेश चतुर्थी तब 15 सितंबर के मनावल जाए ओकर एक दिन पूर्व हिंदी दिवस भी मनावल जाला। समाचार में सुनते आवत हुआ जा कि हिंदी दिवस काहे मनायला सा इत बहुत ही आसान एगो रीजन बा एगो वजह बा त हमनी के बतावा कि प्रश्न पूछब हिंदी दिवस पर जरा गौर से सुनिया जा और हमनी के बतावा कि हिंदी दिवस जो न एगो भोजपुरी में तोहर एगो वाक्य हम तोहरा बोलब भोजपुरी में तू ई हिंदी में बताइए बहुत ही आसान बा भोजपुरी में तोहरा एगो वाक्य हम प्रस्तुत करब एक तू अनुवाद करके हिंदी में बताओ हमनी के वाक्य कैसे हिंदी में बोलल जाला। और याद रहे कि 14 सितंबर 1949 के संविधान सभा में भारत में हिंदी के भारत के राज्य भाषा घोषित करल गल 14 सितंबर के। यही खातिर हिंदी दिवस मनावल जाला 14 सितंबर के। और 1953 में यानी 1953 में जो पहला हिंदी दिवस है मनावल गल और उकर उद्देश्य यह कि हिंदी भाषा के जो प्रसार प्रसार चाहेला करते रहे कि प्रचार प्रसार यही खातिर हिंदी दिवस मनावेला सा और सभी के बताए के अपन मातृभाषा पर गर्व कराए के हिंदी दिवस मनावल जाला। और जो सरकारी कामकाज है हिंदी के उपयोग में बढ़ावा दे खातिर हाँ तो हिंदी दिवस जो है तोहरा बहुत ही अभिनंदन। तो हमने के बतावा कि है जो भोजपुरी में हम वाक्य बोले जाते हैं और ये आधारित बा श्री गणेश जी पर एक तू लोग आप लोग कैसे हिंदी में बताएब तो सुना गौर से। श्री गणेश जी के पूजा आप करब त सच में तो हर मन के शांति मिलबे करी। श्री गणेश जी के पूजा आप करब त सच में तो हर मन के शांति मिलबे करी। त ई वाक्य जो न एक हिंदी में तोहरा हमनी के सुनाई के बाद 402 8070 7071 तो वह ससान जिस पर जवाब दा

0: चला धर्मावती चामू जी की आवाज में है बहुत ही सुंदर सा गणेश वंदना सुनत हुआ जा हमने के श्रोता आगल हुआ ओकर से हमने बात करब जा हेलो
1: हेलो नमस्ते रोशन जी गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया
0: बहुत धन्यवाद आशा जी कॉटेज से बात करत हुआ और तुहरा बोली ला जा गणेश चतुर्थी अभिनंदन
1: आपके भी और कलाकार के बात के सुने होला सभी श्रोतालों के और समस्त श्रोतालों के हम अपन पूरा परिवार की ओर से आप सभी के गणेश चतुर्थी व्रत के उपवास के हार्दिक हार्दिक मंगल कामना शुभकामना देवते
0: धन्यवाद आशा जी तुम्हारा मीठे मीठे शब्द के लिए तो चला हमने के हिंदी में अनुवाद कर श्री गणेश जी के पूजा आप करब तो सच में तुहर मन के शांति मिलबे करी बताओ हमने के
1: श्री गणेश जी की पूजा

0: करने से आपको अवश्य ही सच्ची शांति की प्राप्ति होगी।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया आशा जी। ये जो प्रश्न है ये तो हर कहती तो एकदम आसान है, है ना?
0: जी हाँ, काहे के हम तो एगो सच्चा हिंदी प्रेमी है,
1: हिंदी प्रेमिका हुआ,
0: हिंदी प्रेमिका है, और सबसे ही आग्रह और निवेदन करते हैं कि आप सभी अपन अपन घर में भोजपुरी के साथ हिंदी भाषा के में बचेबा, हिंदी भाषा के जीवित रखबा, तो तोहर आगे जीवन जो हमी के नवा पीढ़ी बा और लोग हमी के संस्कार और संस्कृति से एकदम जुड़ा रहे।
1: बहुत ही सुने आने सच बात कर ल आशा जी। तो तुहर घर में जो ना तुहर परिवार के बीच में हिंदी और भोजपुरी के प्रयोग होला?
0: हम तोहरा ये बात 16 आने 100% सच्चे सच्चे बोलते हैं रोशन जी। हमारे घर में छोटा से बड़ा लोग हमें सबके घर में हिंदी और भोजपुरी में बात कर रहा, छोटा लेका लोग सबको हम अपन हिंदी मातृभाषा में ही और भोजपुरी भाषा में बचाई रहते। हमारे माता पिता के एगो हमी के वरदान है।
1: बहुत ही अच्छा। तो हम तोहरा बोला पर बहुत धन्यवाद आशा जी, और बधाई तो हम तोहरा ढेर देब सही जवाब के लिए। और सचमुच तोहर जोन बात कर ल बोल कि अपन घर में हमेशा हिंदी और भोजपुरी में बात करे ल जा, यही है प्रचार प्रसार हिंदी के और भोजपुरी के, यही तरीके से चाहला करे के।
0: बोले हमें के माता पिता सच्चे हिंदी प्रेमी प्रेमिका हवन, और हम यो सच्चे अपन हिंदी भाषा के सच्चे दिल से नमन के लीला जा।
1: धन्यवाद आशा जी,
0: धन्यवाद
1: तुहरा, शुभ संध्या। तो चले आशा जी रलन को तेज से और अन्य को दूसरा श्रोता के स्वागत करी ला जा, देखी ला जा के कौन बा भी। हेलो,
2: ओम श्री गणेशाय नमः।
1: ओम श्री गणेशाय नमः। ई त आवाज जानल पहचानल गोंगुप की श्यामा जी होवन तोहर आवाज एकदम हट के बा, जैसे आशा जी के हमनी पहचान ले ला सर, वैसे ही श्यामा जी के कैसे नहीं पहचान अब सर।
2: चलो खुशी की बात बटे। तो वो जो प्रश्न आपने पूछा ना, हम उतना नहीं सके बच्चाई भोजपुरी
1: हाँ, लेकिन फिर भी अभी तोहरा हिंदी में जवाब दे के बा।
2: तो सच है कि श्री गणेश जी की पूजा करने से आपके मन को शांति मिलती है।
1: बिल्कुल, शांति प्राप्त होती है, शांति मिलती है, और तोहरा भी हम बोलब बहुत बहुत ही बधाई। हमने के बतावा श्यामा जी की तोहर हम भी हिंदी दिवस मनाओ अब जा भी 14 सितंबर के, और आप तो हिंदी में बहुत ही अच्छी तरह से बात करे ला जा। तो जैसे कि आशा जी अपन घर में हिंदी में बात करे लन परिवार के साथ भोजपुरी में, तोहरो उही हाल बात तोहर घर में बता?
2: हाँ, हमने ज्यादातर भोजपुरी में बात होला भाई लोग संगे और लड़का संगे, हमने की तरह असली भाषा क्रियोली।
1: हाँ क्रियोली, हाँ हाँ, कोई बात
2: क्या है झूठा बतिया की हमने मोरिशन है सर ना,
1: मोरिशन है सर।
2: हाँ तो मिलावट भाषा बटे,
1: मिलावट भाषा बा का
2: मिलावट भाषा बा, सब भाषा में बोला सर, कभी कभार चलावेला हिंदी चलावेला,
1: जैसे बोलब सा सुंदर भाषा तो सब सब बोले जोड़ी भाषा बा, पुमनामू के पंदामून बना दे रहा सर मायबू के
2: जैसे अपने रूप रंग में से पानी के जो चीज में डलबा तो ढल जाला,
1: ढल जाला, बिल्कुल सही सही बात फरमाइला।
2: इसने हमने की जो भाषा बाटे अभी तो ऐसे बोला था, पहले के समय में जो क्रिश्चियन लोग रहल ऐसा जोली से भोजपुरी भाषा बोलियन,
1: बहुत ही अच्छा। हाँ, आज आज कल के जमाने में भी देखत है
2: जहाँ तक हम तो ऐसे बोलब जब तू नहीं बतिया बा, हमारे समय में हम कोचिंग क्लास करते क्रियोली के भाषा के, परिवार लोग बोलक मांग कर लन सर। हम ऑसी स्कूल में काम करते अन समय में जब हुआ परी लोग के परिवार लोग मांग कर लन सर की हम लड़का हिंदी पढ़ी, तो 2 बरिस ले धरला कोचिंग क्लास कर ली हम।
1: बहुत अच्छा।
2: आपके कात्रिया से आपके क्लास जैसे क्लास की छुट्टी हो जाए ना, तो धरला एगो सीजन में कैंस ले हम 2 बरिस ले काम कर ली कोचिंग क्लास।
1: बहुत अच्छा, तो बहुत उत्तम कार्य कर देला श्यामा जी तू तो अपन जवानी में।
2: हाँ तब हाँ बहुत काम कर ले है, तो वाला ऐसे ऐसे हमने की जिंदगी चल गल ना।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
2: क्रिश्चियन लड़का लोग बहुत खुशी रहेला, और अभी तो जैसे कि है सब जितना बॉलीवुड के गाना बाटे है सब सुने खातिर तो ज्यादातर अब हिंदी में जोर दे रहे सर।
1: हाँ ज्यादातर, बिल्कुल। अच्छा, बहुत धन्यवाद तोहरो। अच्छा, ऐसे ही बात करते रहिए।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan. कलाकार के बाद
1: कलाकार के बाद रोशन के साथ चला दुगो प्रश्न त पूछ ले लिसा तोहर से अब तीसरा प्रश्न पूछे के बखत चला बा अभी अभी को मंत्र के उच्चारण कर ल जा ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा त ई में एगो दुगो शब्द आवेला सूर्य कोटि सम प्रभ एकर मतलब कह एकर मीनिंग भावार्थ कह हमने के बतावा कि जो न सूर्य कोटि सम प्रभ एके तो लोग भोजपुरी में कैसे हमने के समझेबा 4028070 पर फोन कर 4028070 पर अवश्य फोन कर और हमने के फटाफट जवाब दे

0: सचमुच देवा हो देवा, आपसे बढ़ के कौन गणेश जी। हेलो हेलो।
1: हाँ रोशन भाई नमस्ते।
0: नमस्ते बहन, कौन नाम बात हो हर?
1: थोड़ा दूर हवा।
0: कौन नाम बात हो हर बोला?
1: अमृता हम लोग कानूत से।
0: कानूत से अमृता जी तोहर स्वागत भाई प्रोग्राम में।
1: हाँ
0: कैसे हुआ जा?
1: अच्छी खाए अच्छा हुआ।
0: अच्छा है जा। हाँ बिल्कुल बोला हमनी के जवाब द सूर्य कोटि सम प्रभ तोहर रेडियो सत के बंद कर द प्लीज। प्लीज बंद कर तो रेडियो सत के, तब अच्छी तरह से हम तोहरा सुने सकब। हेलो अमृता जी।
1: सूर्य भगवान की कोटि कोटि प्रणाम।
0: सूर्य भगवान के कोटि कोटि प्रणाम ई बोले कोचत हुआ सूर्य कोटि सम प्रभ। एकर जो मतलब है, एकर जो मतलब है वह करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी देवता ई है। सूर्य देवता के प्रणाम है जाने यह, बल्कि गणेश देवता जोन होवन करोड़ों सूर्य के समान उकर ज्योत बा उकर तेज बा। एक ही बोल ले जा रहा सूर्य कोटि सम प्रभ। ओके ओके अमृता जी।
1: ओके भैया।
0: अच्छा धन्यवाद, ऐसे ही भाग लेते रहिए, और प्रश्न रही मैं अवश्य भाग लिया जा। ओके धन्यवाद धन्यवाद।

0: चला अगला श्रोता के स्वागत करी ला जा। हेलो
1: हेलो रोशन भाई, मैं ही हूँ फिर से।
0: वीना। हाँ वीना जी, हाँ बताइए। हाँ,
1: मैं उत्तर देना चाहती हूँ।
0: उत्तर अपन,
1: क्योंकि हाँ मेरे रेडियो में भी थोड़ा खराबी आ गया था तो, लेकिन मैंने आपका प्रश्न सुना तो मैं फोन लगा रही था, मैं जल्दी से बोल देती हूँ।
0: बताइए।
1: सूर्य कोटि सम प्रभा का उत्तर होता है कि गणेश जी करोड़ों सूर्य के समान तेज वाले हैं, उनमें करोड़ों करोड़ों करोड़ों सूर्यों जैसा तेज है, इसलिए उनको कहा जाता है कोटि सूर्य सम, इतने वो तेजस्वी तेजवान है।
0: बिल्कुल
1: यही है ना।
0: बहुत सुंदर सा जवाब दिला अभिना जी, बहुत अच्छा लगा।
1: हाँ, बहुत अच्छा,
0: ऐसे ही भाग लेते रहे। धन्यवाद।
1: जरूर जरूर अवश्य।
0: धन्यवाद।
2: You're listening to RM3 Radio Manoranjan. Kalakar ke baad, kar ke baad.
0: Kalakar ke baad hami ke shrota logan ke saath. चला अगला प्रश्न तो हर खातिर ले हैं हम। चौथा प्रश्न है और ये आधारित रही हिंदी दिवस के अवसर पर। चला एगो और अनुवाद कर, एगो और ट्रांसलेशन कर भोजपुरी से हिंदी में। तास गौर से है वाक्य सुनिए। इमें जो दो तीन गो शब्द उर्दू में भी आवेला, तोहरा चाहेला शुद्ध हिंदी में जवाब दे के। जैसे कि हम तोहरा बोला, तोहर जिंदगी में मुश्किल होई तो जरूर भगवान के याद कर जा। तोहर जिंदगी में मुश्किल होई तो जरूर भगवान के याद कर जा। ई तू हम हिंदी में कैसे एके जवाब देबा शुद्ध हिंदी में। जैसे कि जिंदगी, जिंदगी जो है वो तो उर्दू शब्द है, मुश्किल भी उर्दू शब्द है और ज़रूर भी उर्दू शब्द है। तो हम तोहर से जानत खोजत है कि है जो वाक्य भोजपुरी में बतैले हैं अभी, तोहरा चला शुद्ध हिंदी में एकर अनुवाद करके। 4028070 फिर से एक बार सुन ल। तोहर जिंदगी में मुश्किल होई तो जरूर भगवान के याद कर जा। 4028070 का तो वैसा जिस पर अवश्य तो लोग जवाब दे।

0: मोरिया रे मोरिया रे चला हमनी देखब सा के हमनी हजा स्वागत करब जा गणपति पप्पा मोरिया। हेलो
1: हेलो नमस्ते रोशन जी।
0: नमस्ते जी, कौन नाम है तुहर?
1: मैं श्रविना बोल रही हूँ वाकवा से।
0: वाकवा से श्रविना जी, तो हर स्वागत बा, पहली बारी प्रोग्राम में भाग ले हुआ थोड़ा
1: जी।
0: हाँ बहुत ही अच्छा, और लगता है कि तू नव युवती हुआ। तो हर एकदम स्वागत बा श्रविना जी, और सकब से जाने की जिंदगी में का करत हुआ जा श्रविना जी?
1: मैं हिंदी बीए कर रही हूँ।
0: क्या बात है, हिंदी के छात्रा हुआ जा, तृतीय वर्ष
1: जी।
0: अंतिम वर्ष है तुहर
1: जी,
0: तो चल ईश्वर से ही प्रार्थना करब जा कि तृतीय वर्ष में अंतिम फाइनल ईयर में बहुत ही सफलता प्राप्त कर ब श्रविना जी।
1: धन्यवाद।
0: अभी बीए ह्यूमैनिटीज करत हुआ बिचलर ऑफ आर्ट्स, तो हम चाहब कि एकर से आगे पढ़ब, मास्टर ऑफ आर्ट्स करब एम ई। बहुत ही बढ़िया, तो चल आशीर्वाद बा पूरी एमबीसी टीम की ओर से तुहरा श्रविना जी।
1: धन्यवाद।
0: हमनी के बुला जो तोहर जिंदगी में मुश्किल हो तो जरूर भगवान के याद कर जा, एके तू हिंदी में कैसे अनुवादित कर बोला?
1: आपके जीवन में अगर परेशानी हो तो अवश्य ईश्वर को याद करो।
0: क्या बात भाई, तो बहुत ही बढ़िया जवाब दे दिला तू। तो हर खतीर इतना मुश्किल नहीं रहा, इतना कठिन नहीं है ना? हाँ, कठिनाई से तो बिल्कुल जवाब नहीं दिला, बहुत ही आसानी के साथ, और हम बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे थे, सराहनीय कर रहे, सराहत है तुहरा, काहे कि हिंदी में तो तू अभी स्टडीज करत हुआ, अध्ययन करत हुआ, परंतु भोजपुरी भी समझे ला, बात करे ला, तो बहुत ही अच्छा।
1: भोजपुरी में बात करती है
0: तो हर माँ
1: भोजपुरी। शोभा जी,
0: ओ शोभा जी के सुपुत्री हो वजा
1: जी।
0: तो शोभा जी के हमारों से नमस्ते कर दिया
1: जी।
0: तो ऐसे ही भाग लेते रहिए, खाली माता जी वे भाग न ले, सुपुत्री भी के भाग जाना ले के। धन्यवाद आपको श्रविना जी, ऐसे ही भाग लेते रहे हैं। ओके, गणपति बप्पा मोरिया। ओके, बाय बाय बाय।

0: Continuous music. Music. RM3.
1: कलाकार के बाद.
2: कलाकार के बाद प्रोग्राम में एक बहुत ही दिलचस्प प्रश्नोत्तर प्रोग्राम चलता और बहुत से श्रोता लोग भाग लेवत हुए जा अपन हिंदी भाषा से बहुत ही प्रेम जतावत हुए जा और गणेश चतुर्थी के अवसर पर भी अपन भक्ति के उजागर करत हुए जा चला गणेश चतुर्थी के अवसर पर ही एगो दूसरा मंत्र के खूब अच्छी तरह से उच्चारण कर और हमनी के पूरा मंत्र उच्चारण करके बताओ ओम विघ्नेश्वराय वरदाय बहुत ही आसान सा प्रश्न तो हम तोहरा से पूछ ले लिया अभी ये मंत्र के पूरा रूप में बताओ ओम विघ्नेश्वराय वरदाय पूरा मंत्र बोला 402-8070-4 2 96 4 02 80 70

0: चले हमने स्वागत करब जा अगले श्रोता का। हेलो
1: हेलो जी।
0: हाँ विना दीदी
1: जी,
0: तो हर आर एक और एक बार हम तोहरा भी स्वागत करब जा बहुत ही हर्ष के बाद बाकी प्रश्न दे के ओकर जवाब दे खातिर तू तत्पर हो बहुत ही अच्छा लगा था।
1: मुझसे रहा नहीं गया क्योंकि हम जाना था ही तो हम बोली सुना दे बिला थोड़ा बहुत।
0: अच्छा सुनाओ सुनाओ।
1: कोशिश नहीं मतलब बोल ही देवा थे
0: बोला
1: विघ्नेश।

0: बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर ढंग से तो मंत्र के उच्चारण कर लिया।
1: और मैं सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ये सब उन्हीं की कृपा है जो मैं ऐसा बोल पाती।

0: करती हूँ।
1: धन्यवाद आपको।
0: ये गणपति जी माँ सरस्वती की उन्हीं की कृपा है और मेरे गुरुदेव की कृपा है भैया जी,
1: बहुत
0: और माता पिता की कृपा आशीर्वाद है।
1: धन्यवाद बीना जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: RM3 Radio. Radio.
1: कलाकार की बात, कार की बात।
2: बहुत अच्छी प्रकार से तो लोग जवाब देवत वजह मंत्र के उच्चारण बहुत ही शुद्ध स्वर में बतावत हुआ। सुन के ता मन गदगद हो जाला। हमनी के श्रोतागण जो ना अपन संस्कृति के जीवित करे खातिर कठोर परिश्रम करत हुआ जा, ऐसे ही तो लोग के साथ ईश्वर दे अर्जुन सभी विघ्न बाधा तोहर जीवन से मिट जाए। चला हिंदी दिवस के अवसर पर एगो और प्रश्न बात तोहर खतिर, त गौर से सुना। जब रोमन अल्फाबेट के बात करी ल जा, रोमन अल्फाबेट यानी ए टू जेड, आ से जेड लेके 26 गो लेटर्स बा, इत जाने ल जा। उमें 5 गो वायल बा, हाँ 5 गो वायल, ए ई आई ओ यू, और फ्रेंच में बोली ल जा आ ए ई ओ यू, और बाकी जो 21 गो बा वो कौनसन हो सा कॉन्सोनेंट्स, जैसे कि बी सी डी वगैरह वगैरह। तो यह रोमन अल्फाबेट में केवल 5 गो वायल बा और 21 गो कोंसोन बा, परंतु जो देवनागरी अल्फाबेट हो जो हिंदी भाषा में हमने प्रयोग करी ला जा, उमें 5 गो वायल नहीं बल्कि 13 गो वायल है, जैसे कि अ आ ई ऊ ऊ, ये सब इत जन्मे करी ला जा। और उमें 37 कौनसन बा, 37 जैसे, तब पुल कुल मिला के अक्षर जो है वह 50 अक्षर। तो जो हिंदी के जो वायल है और कौनसन है तोहरा हिंदी में ओके बोले के बा, वायल के हिंदी में का बोली लस हमनी और कौनसन के हिंदी में का बोली लस। चला आज तोहर परीक्षा बा, हमेशा हिंदी में बात करे ल जा, लिखे ल जा। तो बोला हमनी के हिंदी में वायल का बोले जला हिंदी में, और कौसुन भी हिंदी में का बोले ल जा। 402-8070-7014 2 का तो वह 76 पर हमनी के जवाब दे।

0: देवा श्री गणेशा अग्निपथ फिल्म के गाना है और ऋतिक रोशन में खूबे परफॉर्म कर लन। चला अगले श्रोता के हमनी आवाज सुनब सा, चला हमनी के तोहर स्वागत भा। हेलो,
1: नमस्ते रोशन जी।
0: नमस्ते शोभा जी, कैसे हो?
1: हम ठीक है, आप कैसे हो?
0: ठीक है, सुपुत्री तो फोन कर ले लन श्रवीना जी। अब माता जी के बारी बा। अच्छा बोल हमनी के वाय

0: के हिंदी में का बोला सा और कौसुन के हिंदी में का बोले के चाही बोला
1: वायर के हिंदी में कहब सा स्वर
0: स्वर
1: और व्यंजन को कौसुनेत
0: व्यंजन को कौसुनेत तो चला जो स्वर बोला वो सही बा लेकिन जो कौसुन के बोला व्यंजन

0: गलत गलत नहीं बा सही ही बा
1: धन्यवाद
0: बहुत ही सुंदर जवाब दिला और जानत है कि श्रवीना तो हर मदद कर लन है ना
1: हाँ, आज हाँ, अभी
0: घरे होवन तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी ऐसे ही भाग लेते रहिए
1: हाँ, okay, शुभ रात्रि
0: आपको भी
1: बाय।

चलो 5:47 हो गल बा और 47 हो गल बा तब 3 में अभी किरण जानकी जी चलेयन और अपन प्रोग्राम हमारी धरोहर प्रस्तुत करियन। ओके बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिया जा और हमनी के अभी अनुमति द और तोहरा बोली ले जा अभी से ही गणेश चतुर्थी अभिनंदन। ऐसे ही तू कलाकार के बात सुनते रहिया, खाली कलाकार के बात नहीं बल्कि रेडियो मनोरंजन पर हर गो प्रोग्राम जो चलेला है यहाँ पर एकदम चौचक एकदम मज़ेदार एकदम धमाकेदार। हमनी के जोन यहाँ पे जोन आजेज होवन वो लोग बहुत ही मेहनत करके तोहर खातिर आवेलन जा रेडियो सत्य से जुड़े जुड़ला जा तू और वो लोग के सुनेला जा बहुत प्यार से और वो लोग भी तोहरा अपन प्यार बरसाते रहन सा। तो चला हमनी के अनुमति लेके समय आगल बा तोहर से गणेश चतुर्थी अभिनंदन तोहरा और सोमवार के हिंदी दिवस भी मनावल जाए। तो हमनी के वादा करिए कि भोजपुरी और हिंदी में हमेशा तो लोग बात करब, हिंदी के प्रचार प्रसार में कोनो कसर नहीं छोड़ब, काहे कि हिंदी और भोजपुरी हमनी के मातृभाषा है। एकर से तोहर प्यार करे के कर्तव्य चाहेला तोहरा निभाए के काहे नहीं। और हमनी के जो नौजवान है नई पीढ़ी है वो लोगों के तोहरा छैला बताए कि हिंदी और भोजपुरी सीख बतियाए के और हिंदी में अध्ययन करे के। तो यही बात पर हम तोहर से अभी अनुमति चाहत हैं, हमेशा रेडियो सेट के साथ जुड़ते रहिए, चाहे वो रेडियो मनोरंजन हो, रेडियो मस्ती हो या रेडियो मॉरिशस हो, हमेशा अपन वफादारी निभाते रहिए, खुश रहिए और बहुत से लोगों को भी खुश रखिए। नमस्ते और शुभ रात्रि तोहरा।

0: RM3 Radio. Radio.
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
2: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। काल हमने बत यात्रा लीजा मॉरिशस में कौन कौन रूप में हमने के धरोहर सुरक्षित बा, संरक्षित बा, और बोलत रलीजा कि इमें ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम मतलब कि परंपरागत ज्ञान और साथ में रीति रिवाज भी शामिल बा। तो चला आज एगो पुराना रीति या प्रथा पर बतियाब जा, जेके नाम है सिरनी। आप बुजुर्ग लोग बहुत अच्छा से जाने लजा कि आगे के समय जुन रहल अक्सर लड़का लोग में माता निकलत रहल, माता भोजपुरी में लेकिन किरियोली में लाहुजल। और जैसे कि आप सब कोई मन में जा कि हमने की माता पिता दादा दादी आगे के समय में कोनो बीमारी या कोनो दर्द या फिर कोनो घाव लगी त घरेलू उपचार से काम लेवत रलन सा, और उ सब घरेलू उपचार बहुत काम आवत रहल। आज के समय में जैसे बात बात पर हमने दवा दारू से काम ले ला जा, डॉक्टर के हियाँ क्लिनिक या अस्पताल जायला सा छोटा से छोटा परेशानी खातिर, त आगे ई सब नहीं रहल। ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम मतलब पारंपरिक ज्ञान यूनेस्को के धरोहर के एगो मुख्य डोमेन है, एगो मुख्य विधा है। तो आगे जैसे लड़का लोग के देह में लाल लाल फुसरी बुतों लो की, तो जे उ लरही दुखाए और खचवाए और फोक्का जैसन होई लगी, तो एकर से माँ लोग जान जयन सा कि लड़का के माता निकलल बा।

और सबसे पहला उ लोग लैका के ऊंच के पैसा से एगो कोना में रख दियन जा। लैका के सोना के एगो कोनो भी जेवर पहनयन सा और तुरंत ही घर में उ लोग बिसाइन पकैला बंद कर दियन सा। और नीम के पत्ता खोज के आनल जाए और लैका के मतला के नीचे रखल जाए, घर के द्वारी पर रखल जाए और ई नीम के पत्ता बुई करके लैका के नहावल भी जाए और जहाँ जहाँ ओके घाव होल बा वहाँ पर घी लगावल जाए। और जितना भी केमिकल प्रोडक्ट्स बा जैसे साबुन, डेंटिफ्रिस, खुशबू या फिर कोनो भी कॉस्मेटिक उस सब के फौरन इस्तेमाल करल बंद कर देवल जाए। या तो लैका के चाहिए साफ सुथरा चदर पर नीम बिछा के सुते के और नहीं तो चटाई बिछा के नीम चारों बगल रख के सुते के। घर द्वार चदर बिछौना सब धोवल जात रहल, सब सफा लगावल जात रहल, नीम हरदी होला पानी से लैका के नहावल जात रहल, ओके ओछल जात रहल पैसा से और तीन दिन बाद उ पैसा से प्रसादी किन के सिरनी चढ़ावल जात रहल। और सिरनी खातिर जोन सामान चाही उ पैसा ओकर में लगा के खरीदल जात रहल। सिरनी खातिर अंगना के एगो साफ कोना में माटी के संगे गोबर लिप के हुआ पर बनान के पत्ता रख के पान के साथ गो पत्ता ओकर पर रख के फिर साथ गो कपूर और फिर चना फुलावल और चाउर में चीनी मिला के चढ़ावल जात रहल। कपूर बार देबा त जोन छाक तैयार कर ले हवा लवंग और इलायची से उ गिरा के लैका पर भी उ लगावल जात रहल। और चाहे उ लैका के भेरी बैठा के ओकर पर उ छाक अच्छा से लगावे के और जोन सिरनी जोन प्रसादी चढ़ावल गल बा उ बाँट के बहरा ही सब कोई खाए, लैका भी खाए। और बोलल जला कि जैसे सिरनी चढ़ाइबा त ई जोन माता बा जोन घाव बा उ सूखे लगी। इस तरह से सदियों से दादी लोग के उपचार और जानकारी से लैका लोग अच्छा हो लिया हवन सा। ई माता के दौरान पवित्र रहला से हरदी घी नीम और छाक जहाँ पर लायची और लवंग बा ई सब के इस्तेमाल से घर में एगो स्वच्छ वातावरण एगो अच्छा लवीगुनमा पैदा होत रहल और सब सदस्य लोग एकर पालन करत रहलन जा। आज भी ई मानल जला कि जब माता होई तो सबसे आगे चाहेला वो सब चीज़ खाल बंद कर देवे के जोन वेजिटेरियन नहीं है। और डॉक्टर के दवा दारू के साथ साथ आज भी सिरनी के स्थान हमने के संस्कृति में उतना ही महत्वपूर्ण बा। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला, बहुत धन्यवाद, नमस्ते।

94.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3। You're listening to RM3 Radio Man।

शुक्रवार 11 सितंबर 2026 इस सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुर्खियां इस प्रकार है। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और त्वचा से जुड़ी समस्याओं के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई दवाइयों का स्टॉक आजकल देश में नहीं, हालांकि इनमें से कई समस्याओं के इलाज के लिए दूसरे विकल्प मौजूद। दवाओं की कमी के क्या कारण है और मरीजों के लिए क्या समाधान उपलब्ध, इसके बारे में जानेंगे। देश में कम कार्बन उत्सर्जन और सड़कों पर ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें, ऐसा बदलाव तेजी से लाने के लिए निजी ऑपरेटरों को बस मॉडर्नाइजेशन स्कीम अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत एक इलेक्ट्रिक बस की खरीद के लिए 3.5 मिलियन रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। गणेश चतुर्थी पर्व के लिए कुछ ही दिन रह गए हैं और श्रद्धालु बप्पा को अपने घर लाने की तैयारियां कर रही हैं। लोगों को पर्यावरण प्रिय

0: मिट्टी की मूर्तियां बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते मोश सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन ने कार्यशाला का आयोजन किया। विदेश समाचारों में 11 सितंबर 2001 में अमेरिका पर आतंकवादी हमले किए गए थे, 2500 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। 50 साल बाद आज भी इसकी दर्दनाक यादें दुनिया भर में लोगों की जहन में जिंदा। एक बार फिर से इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं और अब समाचार विस्तार से। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और त्वचा से जुड़ी समस्याओं के इलाज के इस्तेमाल होने वाली कई दवाइयों का स्टॉक आजकल देश में नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग के अनुसार प्राइवेट सेक्टर में 9 से 100 दवाइयाँ उपलब्ध नहीं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में ये संख्या लगभग 50 है। हालांकि इनमें से कई समस्याओं के इलाज के लिए दूसरे विकल्प मौजूद हैं। परिवहन की बात करते हैं। देश में कम कार्बन उत्सर्जन और सड़कों पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें, ऐसा बदलाव तेजी से लाने के लिए निजी ऑपरेटरों को बस मॉडर्नाइजेशन स्कीम अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत एक इलेक्ट्रिक बस की खरीद के लिए 3.5 मिलियन रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के समर्थन से प्रोमोटिंग लो कार्बन इलेक्ट्रिक बस ट्रांसपोर्ट इन मॉरिशस परियोजना के अंतर्गत ये वित्तीय सहायता जल्द ही बढ़ाए जाने का भी विचार है। दैविक राजकुमार, करुणा लालू।
1: 116 सार्वजनिक और निजी इलेक्ट्रिक बसें फिलहाल हमारी सड़कों पर चलती हैं। ये संख्या प्रमोटिंग लो कार्बन इलेक्ट्रिक बस ट्रांसपोर्ट इन मॉरिशस परियोजना के निर्धारित लक्ष्य से काफी ज्यादा है। निजी बस ऑपरेटरों से इसी दिशा में ज्यादा निवेश करने की मांग की गई है। मंत्री उस्मान महमूद कहते हैं, बजट में सरकार ने बस मॉडर्नाइजेशन स्कीम के लिए वृद्धि दी है। ये सरकारी फंड बस मालिकों को अपनी बसें बदलने के लिए सहायता करता है। यदि इलेक्ट्रिक बस लेंगे तो 30% दिए जाएंगे, यानी कि अधिकाधिक 3.5 मिलियन रुपए, जो कि काफ़ी बड़ी रकम है। UNDP 3.75 मिलियन डॉलर उपलब्ध करा रहा है, जिससे इस सब्सिडी को बढ़ाया जा सके। यदि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करेंगे अपने फोटोवोल्टाइक पैनल के साथ तो अतिरिक्त पैसे मिलेंगे। इस पर काम हो रहा है, ये 100% पर्यावरण प्रिय होगा। सार्वजनिक और निजी परिवहन को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने से मॉरिशस को कई फायदे होंगे।
2: दिस इनिशिएटिव इज एक्चुअली एक्सपेक्टेड टू डिलीवर सेवरल।
1: UNDP की आलका भाटिया कहती हैं, इस पहल से मॉरिशस में इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती में गति आएगी और स्वच्छ ऊर्जा से चार्जिंग करने के ढांचे को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उद्देश्य बेहतर गुणवत्ता की हवा है और बस मालिकों तथा यात्रियों के लिए भी बेहतर अनुभव होगा। इस सेक्टर के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया कानून तैयार किया जा रहा है।
3: The bus services bill point game changer.
1: भूमि परिवहन मंत्री कहते हैं, बस सर्विसेज बिल एक गेम चेंजर होगा। मॉरिशस जैसा देश जो प्रति साल बस उद्योग के लिए 4 बिलियन रुपए खर्च करता है और जो प्रतिदिन 4,50,000 यात्रा के लिए जिम्मेदार हैं और जिसके 22,000 बसें हैं और इसके लिए कोई कानून नहीं था, ये स्वाभाविक नहीं। जहां तक सार्वजनिक परिवहन को इलेक्ट्रिक बनाने का सवाल है, ये परियोजना 2028 में पूरी होगी। इस वास्ते 5.6 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 262 मिलियन रुपए निवेश किए जा रहे हैं।
0: बंदरगाह में जहाज़ों के लिए सेवाएं बेहतर करने की दिशा में आधुनिकीकरण की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है। प्रक्रियाओं के डिजिटाइजेशन के लिए मॉरिशस पोर्ट्स अथॉरिटी ने मैरिटाइम सिंगल विंडो नामक एक नया मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर विकसित किया है। ये प्लेटफॉर्म धीरे धीरे बंदरगाह के विभिन्न सेवाएं एक साथ लाएगा। इस प्रणाली से बंदरगाह को समुद्री यातायात में होने वाली संभावित बढ़ोतरी को बेहतर ढंग से संभालने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। दासा परसोमी की रिपोर्ट पर पेश है ये विवरण। 4,200 जहाज, 7,80,000 कंटेनर और 1.3 लीटर ईंधन। 2025 के जुलाई महीने और 2026 के जून महीने के बीच बंदरगाह में ये गतिविधियां दर्ज।
4: MSc

0: MSC Alina put control, channel 14.
1: तीन वर्षों से मॉरिशस पोर्ट्स अथॉरिटी इस डिजिटल प्रणाली VCS का सहारा ले रहा है ताकि बंदरगाह प्रक्रियाओं में काफ़ी समय बच जाए। ईमेल्स का इस्तेमाल समाप्त, जहाज़ों का आना जाना डिजिटल तरीके से संचालित, बहुत जल्द सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा और ये बनेगा मैरिटाइम सिंगल विंडो, एक ऐसा मंच जो MPA की अन्य सेवाओं में एकीकृत हो जाएगा। मॉरिशस पोर्ट अथॉरिटी के असिस्टेंट पोर्ट मास्टर कैप्टन इमरान महमूद दौलत ने कहा, एक मैनेजमेंट पार्किंग स्लॉट होगा हर एक जहाज के लिए। मैरिटाइम सिंगल विंडो में वेसल क्लियरेंस सिस्टम भी शामिल, सामानों को उतारने, मैले तेल निकालने, कचरों को भी हटाने में आसानी होगी। कभी कभी फायर कवरेज की मांग भी की जाती है, ईंधन लेना पड़ता है, रखरखाव के काम भी करने होते
2: हैं।
1: ये डिजिटलाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय मैरिटाइम संगठन की जरूरतों को भी पूरा करता है। 2024 के जनवरी महीने से सदस्य राष्ट्रों को मैरिटाइम सिंगल विंडो का प्रयोग करना चाहिए। इससे जहाज़ों से जुड़ी जानकारियों का इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आदान प्रदान किया जा सकेगा और विकेंद्रित भी किया जा सकेगा। पोर्ट ऑपरेशंस एंड कंसेशन की निदेशक अनुमिता सिबालक ने कहा, यहाँ पर बहुत चीजें जमा करते हैं, रिपोर्ट्स हैं, स्टैटिस्टिक्स और बिलिंग पर भी। इस डिजिटल सिस्टम से एक ही बार एंट्री करते हैं और बाकी अपने कंप्यूटर पर सीधा प्राप्त हो जाता है। इससे समय बच जाता है, संसाधनों की भी बचत होती है, कार्यों में भी तीव्रता आती है, मौजूदा संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, चाहे ह्यूमन हो या कैपिटल संसाधन हो, ग्राहक भी संतुष्ट होंगे। पोर्ट्स में ट्रांजिट पर अतिरिक्त जहाज़ों के आने की उम्मीद है, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में तनाव के चलते। ऐसी स्थिति से बंदरगाह सिस्टम का महत्व बढ़ जाता है। 2027 के अंत तक धीरे धीरे इसे कायम किया जाएगा। इससे पहले हम इसकी चर्चा कर रहे थे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और त्वचा से जुड़ी समस्याओं के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई दवाइयों का स्टॉक आजकल देश में नहीं है। हालांकि इनमें से कई समस्याओं के इलाज के लिए दूसरे विकल्प मौजूद हैं। इन दवाओं की कमी के क्या कारण हैं और मरीजों के लिए क्या समाधान उपलब्ध हैं, इस पर सहा ओनो की रिपोर्ट पेश है, विवरण याचना मिश्रा।
3: रोज रोज की दवाइयां ढूंढना भी मुश्किल हो गया है। निजी फार्मेसीज में कई ऐसी दवाइयां हैं जिनकी मांग ज्यादा है, लेकिन जो मिल ही नहीं रही। ऐसी स्थिति जो अब फार्मासिस्ट के लिए आम सी हो गई है। त्वचा, मधुमेह या रक्तचाप की दवाई की कमी है। दवाई जैसे ही मिलती है खत्म हो जाती है, लोगों को जगह जगह जाना पड़ता है। साल की शुरुआत से ये समस्या हो रही है और स्थिति सुधर ही नहीं रही। मंत्रालय के अनुसार निजी क्षेत्र में 90 से 100 दवाइयां उपलब्ध नहीं और कारण है विदेशी सप्लाईज में कठिनाई। सप्लायरों और उत्पादकों के पास दवाई की पैदावार के लिए इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, यूक्रेन युद्ध आदि के कारण सप्लाई चेन प्रभावित हैं और यूक्रेन, चीन जैसे देश ही ये सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार करते हैं। इन्हें बनाने में ही देरी हो रही है।
4: Et peut-être personne pas réalisé que l'Ukraine, la Chine, l'Inde, c'est un gros producteur de matières premières. Nous trouvons-nous dans une période que ce produit-là n'est pas produit à temps.
3: Iska sambandh sarvajanik kshetra se bhi hai, jahan kareeb 50 dawaiyan out of stock hain. Supply pranali mein badhaon ke karan. मंत्रालय आश्वस्त करता है, ब्रांड्स की कमी का ये अर्थ नहीं कि इलाज नहीं हो पाएगा, इनकी जगह पर अन्य दवाइयां भी उपलब्ध हैं।
4: Sa confiance qui vous gagnez avec un produit là, vous pensez c'est ça qui peut soigner.
3: जब किसी दवाई से कोई ठीक होता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि यही ब्रांड सही है, लेकिन उसको ये समझना चाहिए कि दवाई का मॉलिक्यूल जरूरी है न कि ब्रांड। डॉक्टर को भी मरीजों को आश्वासन देना चाहिए कि सब्स्टिट्यूट हैं, ब्रांड बदल भी जाए तो भी दवाई में वही मॉलिक्यूल।

0: मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं
1: इनन सब्स्टिट्यूट एंड नो बीज कैपाब एफ डन कॉन्फियंस आ सा पेशेंट ला कि मालग्रे पेंडेंट Combien de mois te papé te prosanala te stabiliser le tlala ce nom différent mais de contenir même produit
0: अधिकारी मरीजों से मांग कर रहे हैं कि दवाई की कमी के कारण अपना इलाज न रोकें इसके बदले डॉक्टर की सलाह लेकर सब्स्टिट्यूट यानी अन्य विकल्पों के साथ इलाज जारी रखें
2: मॉरिशस में हर दिन कुल मिलाकर करीब 5 लाख डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं वित्तीय सेक्टर से जुड़ी ऐसी गतिविधियां आजकल हम बदलाव के दौर से गुजर रही हैं विशेषज्ञों के अनुसार मॉरिशस एक इलाकाई टेक्नोलॉजी हब बनने की राह पर है पेमेंट सॉल्यूशंस में माहिर हाईटेक पेमेंट सिस्टम्स नामक कंपनी ने 8 सितंबर को फ्रिकॉफ्लाक में इस विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया सिल्वाना परिमामन याचना मिश्रा
0: दुकानों में QR कोड स्कैन करना सुपरमार्केट में कार्ड से पेमेंट करना अपना वेतन सीधे बैंक अकाउंट में प्राप्त करना पिछले कुछ सालों से डिजिटल टेक्निक मॉरिशनों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं और आज इसका महत्व और बढ़ रहा है मॉरिशस में हर दिन 5 लाख डिजिटल पेमेंट्स किए जाते हैं आज दुनिया में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में औसतन हर साल 140 से 150 मिलियन डॉलर का कारोबार होता है सभी क्षेत्र इससे जुड़े हैं जहां नकद को डिजिटल रूप दिया जाता है जहां वस्तुओं और सेवाओं की खपत होती है वहां हम समाधान ला सकते हैं ये कार्यशाला मोरक्को की हाईटेक पेमेंट सिस्टम्स कंपनी द्वारा आयोजित की गई कंपनी के अधिकारियों का मानना है कि डिजिटल पेमेंट के बिना डिजिटल अर्थव्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती है
3: मॉरिस a prouvé sa capacité à devenir un hub financier dans la région
0: भुगतान उद्योग वित्तीय उद्योग का हिस्सा है मेरा मानना है कि अगला कदम एक तकनीकी हब होना चाहिए दुनिया में डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा 15 से 17% है अफ्रीका में 5 से 6% इस क्षेत्र में अभी काफी विकास की गुंजाइश है और ये विकास मॉरिशस से शुरू किया जा सकता है पेमेंट उद्योग अपने इतिहास के सबसे बड़े बदलावों में से एक में से गुजर रहा है दुनिया के साथ साथ मॉरिशस में भी रियल टाइम पेमेंट एक आदत बन गई है मास्टर कार्ड कंपनी के अनुसार इंटरनेट कनेक्टिविटी डिजिटल टेक्निक को अपनाने और वित्तीय समावेशन के कारण अफ्रीका में डिजिटल पेमेंट का बाजार 2030 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच सकता है
2: गणेश चतुर्थी पर्व से पहले बेलेगवेसेश के पुष्पलोचनाया मंदिर में 150 बच्चों और युवाओं ने भगवान गणेश की प्रतिमाएं अपने हाथों से बनाई मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन और आर्ट्स इंस्पायर के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य युवा पीढ़ी को इस परंपरा से जोड़ना है साथ ही पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल मिट्टी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना भी है पूजा अर्चना के लिए इन प्रतिमाओं को घर ले जाया जाएगा जिसके बाद इनका विसर्जन किया जाएगा रिपोर्ट आस्था गोविंद तमन के साथ
4: मिट्टी का एक गोला सृजन में तल्लीन नन्हे हाथ और कल्पनाओं की उड़ान धीरे धीरे एक आकृति आकार लेती है और सामने आता है भगवान गणेश का सौम्य स्वरूप पुष्पलोचन मंदिर में गणेश चतुर्थी के उपलक्ष में आयोजित इस कार्यशाला में 150 बच्चों और युवाओं ने भाग लिया प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में उन्होंने मिट्टी की मूर्ति बनाने की विभिन्न विधियां सीखी साथ ही प्रत्येक प्रतिभागी ने अपनी कल्पना के अनुसार अपनी मूर्ति को एक विशेष रूप और भाव प्रदान किया
5: आपने क्या बनाया है
6: मैंने गणपति जी की मूर्ति बनाया मैं इसकी पूजा करना चाहती हूँ गणपति पप्पा मोरिया
7: हम यहाँ पे माटी से मूर्ति बना रहे हैं गणेश जी के जो नदियों में पोल्यूशन नहीं करता और मछलियों को नहीं मारता है और अच्छे से नदी में घुल जाता है
5: तो आपने क्या बनाया हमें बताइए अपने डिजाइन के बारे में
7: यहाँ पे हमने बाल गणेश बनाया इनके हाथ पैर और मोदक हमें बनाना सिखाया गया है हमारे लिए हमारे गणेश जी एक दोस्त है और वो हमारे सारे दुख खत्म कर देते हैं चतुर्थी के दिन हम इसको समंदर में या फिर नदियों में इसको इसका विसर्जन करा देंगे
8: मूर्ति बनाने के लिए बहुत

0: पेशेंस चाहिए क्योंकि जब मन लगा कर करते हैं तो बहुत अच्छा और आसान दिखता है। मैंने एक गणेश मूर्ति बनाई है और उसके साथ मैंने मोदक और लड्डू उसके बाजू बीच लगाए क्योंकि गणेश भगवान को माना जाता है कि उसे बहुत मिठाइयाँ बहुत पसंद है।
1: किसी भी शुभ कार्य के आरंभ से पहले भगवान गणेश की वंदना की जाती है। वे बुद्धि, विवेक और जीवन की बाधाओं को दूर करने वाली शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। मूर्ति निर्माण के लिए मिट्टी का चयन करना पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देता है। ये प्राकृतिक सामग्री विसर्जन के समय सरलता से जल में विलीन हो जाती है, जिससे पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को सीमित किया जा सकता है।
2: सब टेक्निक बता रहे हैं कैसे मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं और उसके साथ कैसे काम करते हैं। मुश्किल कुछ नहीं था, बच्चे लोग अब समझ गए कैसे करने के लिए। और हम बता रहे हैं जो आर्ट्स इंस्पायर का जो टीम है यहाँ पर,
3: हमारा जो लक्ष्य है फेडरेशन का, हम यही चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे लोग हैं, नौजवान लोग हैं, वो हमारे मंदिर की ओर आए, हमारे जो हिंदू सनातन धर्म है फिर से उन लोगों का रुचि फिर से भरे।
1: कार्यशाला के दौरान माता पिता भी बच्चों का उत्साह बढ़ाते दिखाई दिए। कहीं वे उनके कार्य को निहार रहे थे तो कहीं मूर्ति को पूरा करने में उनका मार्गदर्शन कर रही थी।
4: मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं एक अध्यापिका हूँ और हमारी संस्कृति को और आगे बढ़ाने के लिए, हमारी नई पीढ़ी को जागृत करने के लिए कि हमारी संस्कृति क्या है।
5: आज बच्चों ने बहुत सुंदर, सभी बच्चों ने बहुत सुंदर मूर्ति बनाई है। इससे देख कर लगता है कि बच्चों में एक कल जो उनके अंदर जो एक कला है उनको उभारने का एक अच्छा अवसर दिया गया है बच्चों को। बच्चों का जो ध्यान आजकल जो भटक रहा है आज अच्छे काम में लगाया जा रहा है उनका ध्यान, जिससे उनकी कला और भी निखर कर सामने आएगी। इसके
1: मूर्ति निर्माण से लेकर विसर्जन तक इन बच्चों और युवाओं ने इस परंपरा को केवल जाना ही नहीं बल्कि अपने हाथों से गढ़कर उसे आत्मसात भी किया।
6: गणराज्य के राष्ट्रपति धर्म गोकुल के लिए कुछ खास यादें ताज़ा हुई। उन्होंने अपने बचपन के स्कूलों का दौरा किया जहां कुछ स्थल शशि सागर राम गुलाम की स्मृतियों को समर्पित हैं। इस महीने मनाई जाने वाली राष्ट्रपिता की जयंती के संदर्भ में ये गतिविधि आयोजित की गई। मकसद रहा उनके विचार और मूल्यों को नई पीढ़ियों तक बढ़ाना। शशि सागर राम गुलाम की 126वीं जयंती के संदर्भ में आज रविंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर जोन वन के छात्रों को सम्मानित किया गया जिन्होंने राष्ट्रपिता से जुड़े इतिहास और विरासत पर आधारित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया था। बढ़ते हैं विदेश समाचारों की ओर। 25 साल हो गए हैं 11 सितंबर 2001। न्यूयॉर्क वासियों के लिए दिन की शुरुआत सामान्य रूप से हुई थी। लोग हमेशा की तरह कामकाज में लगे थे जब सुबह 8:46 पर सब कुछ अचानक बदल गया। अदिति अवतार की ये रिपोर्ट पेश है।
7: कुछ ही मिनटों में ये खबर दुनिया भर में फैल गई। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की नॉर्थ टावर में जाकर क्रैश कर गई। मात्र 17 मिनट बाद ही एक दूसरा विमान साउथ टावर से जा टकराई। मिनटों में ये बात स्पष्ट हो गई अमेरिका पर आतंकी हमले हुए हैं। आतंकवादी गुट अलकायदा के 19 आतंकवादियों ने 4 व्यापारिक उड़ानें हाईजैक की थी। अमेरिकन एयरलाइंस का एक तीसरा विमान वॉशिंगटन डीसी के पास पेंटागन में गिराया गया, जबकि दूसरे हमलों के बारे में सूचित होने के बाद एक चौथे विमान के क्रू सदस्य और यात्री आतंकवादियों से भिड़े और विमान पेंसिल्वेनिया में एक खाली इलाके में क्रैश कर गया। 9:59 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का साउथ टावर ढह गया और उससे 29 मिनट बाद नॉर्थ टावर भी ध्वस्त हुआ। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दोनों इमारतें धूल और मलबों में तब्दील हो गईं। हताहत मची और हजारों लोग फंस गए। मारे गए लोगों में मुख्य रूप से ऑफिस के कर्मचारी, यात्री, दमकल कर्मी, पुलिस कर्मी और अन्य फर्स्ट एडर शामिल रहे। 9/11 के इन हमलों में कुल 2,977 लोग मारे गए। इनमें 90 देशों के नागरिक शामिल रहे, जिससे दुनिया भर में शोक की लहर चली। इस विनाश के बीच कुछ असाधारण साहस के दृश्य सामने आए। बचाव कर्मी बिना अपनी जान की परवाह किए घटनास्थल पर लोगों को बचाने में डटे रहे। कई महीनों

0: तक मलबे हटाने और लोगों को निकालने का काम जारी रहा। हालांकि बीतते समय के साथ जीवितों की संख्या घटती गई। सितंबर 11 की तारीख ने दुनिया में वैश्विक राजनीति को एक नया आयाम दिया। सभी देश आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष तेज करते दिखे। अमेरिका ने 7 अक्टूबर 2001 को अलकायदा के खिलाफ अफगानिस्तान में भीषण सैन्य कार्रवाई शुरू की, जब तालिबान ने अलकायदा के अधिकारियों को अमेरिका के हवाले करने से इनकार किया। 25 साल बाद सिर्फ समय बीता है। इस दर्दनाक हादसे की पीड़ा और उसकी यादें आज भी लोगों की जहन में जिंदा हैं। 11 सितंबर को न सिर्फ उस भीषण हमले के लिए याद किया जाता है, बल्कि ये मौका है कई लोगों के साहस को नमन करने का। एक ऐसा दिन जिसने दुनिया का इतिहास ही बदल डाला।
1: 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में ब्रिक्स 2026 शिखर सम्मेलन लग रहा है। कई अफ्रीकी राष्ट्र नेता, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसमें भाग ले रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी खास बैठकें निर्धारित हैं।

0: मौसम संबंधी जानकारियां याचना मिश्रा के साथ।
1: पूर्व दक्षिण पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा मस्करीन्स के दक्षिण में पाए जाने वाले एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह पूर्वी दक्षिणी इलाकों और ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी। दोपहर बाद भी ऊंचे इलाकों पर मौसम बरसाती रहेगा। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे दक्षिणी समंदर में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 13 से 16, अधिकतम 20 से 23, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 17 से 20 और अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:09 पर, शाम को सूर्यास्त 6:03 पर होगा।
0: मौसम संबंधी नई जानकारियों के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। आपने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। साथ ही हम धन्यवाद कहेंगे अपने तकनीकी सहयोगी फैजन को। कुछ ही समय में शोक समाचार। रागुलेन बॉम्बू में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड के श्रीमती गीता काली पैदाशी नाम गुरुदयाल, जो मंदिरा नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके घर रागुलेन बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 ए एम। कोमलोन रोड नोवेल फ्रांस में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सोसिल जोगी, जो सोबाउद्दीन नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके घर कोमलोन रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारी जानी रोजबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमारो एट 11 ए एम। रामधानी लेन पोंफाले में 43 साल के 43 ईयर्स ओल्ड के श्री जसबीर रामधानी, जो गासो नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके पिता श्री लोल रामधानी के घर रामधानी लेन पोंफाले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमारो एट 11 ए एम। आवेनी डिपिने कैटरबोर्ड में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती हेमवती खेदन पैदाशीना रामपासाद, जो सोना नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है कल दिन के एक बजे उनके बेटे श्री राज खेदन के घर आवेनी डिपिने कैटरबोर्ड से उठाकर अंतिम

0: संस्कार के लिए कोदेगाद की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमरो एट 1 PM टैगोर रोड घोंगुब में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती भानुमती भगवत पैदाशी नाम खंदर सिंह जो भानुमती नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है उनकी अर्थ है कल दिन के दो बजे उनके घर भगवत टैगोर रोड घोंगुब से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए घोंगुब की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमरो एट 2 PM शोक में डूबे सभी परिवारों के साथ हमारी दिल हमदर्दी है
1: Your news on NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: RM3 Radio.
3: Nee so.
4: नमस्कार नई सोच कार्यक्रम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं जहां भी होंगे आप खुश रहेंगे हंसते रहेंगे मुस्कुराते रहेंगे जीवन के हर पथ पर हिम्मत से काम लेते रहेंगे ऐसी हमारी प्रार्थना है हम है सुरेखा आपका साथ दे रहे हैं रेडियो मनोरंजन पर और आपके इस मनोरंजन के चैनल में लेकर आए हैं आपके लिए नई सोच कार्यक्रम इसका मकसद ही ये होता है कि अगर आपको थोड़ी सी भी निराशा हो रही हो तो आपकी सोच को बदलने की कोशिश करें हम और ऐसे में कुछ ऐसे गाने कुछ ऐसा म्यूज़िक होता है जो सोच को बदलने में बहुत मदद करता है तो चलिए आपके नाम करते हैं कुछ ऐसे गाने जो आपके जीवन में से निराशा निकाले आपके जीवन में आशा ही आशा भर दे चलिए आपको सुनवाएंगे हम सावन को आने दो मूवी का ये गाना जिसमें नज़र आता है कि खुशियाँ किस तरह हमारे अंदर बसती हैं ना औरों के की खुशी को देखकर ना औरों की खुशी से जलकर हमें तो बस मिलती है खुशी अपने अंदर हमें तो मिलती है खुशी बस अपने ही इर्द गिर्द

बस हम जीवन में कुछ पा जाएं, इस तरह से जाएं कि हमारे मन में खुशियां ही रहे, हमारे मन में संतोष रहे, और संतोष का ये मन जो लेकर हम जाते हैं तो हमारे जीवन में, हमारे जीवन के उपरांत भी हमें इस सुख शांति ही मिला करती है। चलिए जरा मुकद्दर का सिकंदर का ये गाना सुनते हैं। hey, hey!

आपको ही चलना होगा और चलते हुए जहाँ भी बाधाएं आएंगी हिम्मत से काम तो लेना ही होगा। इन बाधाओं के लिए आप तैयार ही रहिएगा कि जो आ जाए ये बाधाएं तो इनसे होड़ ले ही लेंगे हम और मंजिल पर पहुँच ही जाएंगे।

हर पल की वैल्यू हमें मालूम है हर पल को जी लेना हमें जरूरी है क्योंकि एक पल जो आता है एक पल में ही चला जाता है हर पल को आप मजे से जी लीजिए हर पल को आप बहुत प्यार से जी लीजिएगा हर पल का फायदा जरूर उठा लीजिएगा

नितिन मुकेश की आवाज़ का ये गाना होगा नई सोच कार्यक्रम का अंतिम गाना। इस गाने के बाद हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए दिलों की आवाज़ कार्यक्रम, और दिलों की आवाज़ कार्यक्रम में साथ आप

0: दिलों की आवाज,
1: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज कार्यक्रम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। दिल से जो निकलती है आवाज, वो आवाज आप हम तक पहुंचाइए। बता दीजिए आपके दिल में क्या है, कौन सा गाना सुनना चाह रहे हैं आप। हम आपकी पसंद के गाने आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और दिल की आवाज में अगर किसी का नाम भी शामिल हो तो वो नाम भी हमें बताइएगा, उनके नाम ज़रूर ये गाना कर लेंगे हम जो आपने फरमाइश की है। सो अगर आप फरमाइश करना चाहते हैं तो 5250-6200 पर आप हमें ज़रूर मैसेजेस भेजिएगा, और अगर कॉल करना चाहते हैं तो 4028070 पर कॉल कीजिएगा। हम आपकी पसंद के गाने आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल तो चलिए हम आपके लिए जिद्दी मूवी का ये गाना पेश करते हैं जो हम बजवा रहे हैं हमारे इस सभी श्रोताओं के लिए और लीना जी के लिए जो कोंफुको की रहने वाली हैं।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: continuous music.
1: तो बस चले चले हम दिलों की आवाज़ कार्यक्रम के रास्ते पर और सिलसिला हम छेड़े हमारे दूसरे गाने की और दूसरा गाना है, दूसरी फरमाइश है फिल्म साथी के गाने की। साथी मूवी का ये गाना सचिन जी सुनाना चाह रहे हैं और सचिन जी रहते हैं पोंपली मुस। तो चलिए जॉली मुखर्जी और अनुराधा पोड़वाल की आवाज़ों का ये गाना हम पहुँचाते हैं सचिन जी तक।

0: continuous music. RM3.
1: चलिए आशाएं बांधे रखते हैं और आशाओं के इस जीवन में हमारी इच्छाएं पूरी हो, सबकी इच्छाएं पूरी हो, सबको सबका मन शांत रहे, सबका मन खुश रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं हम। चलिए आशा मूवी का ये गाना पेश करते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गाने की फरमाइश करने वाली हैं कल्याणी जी त्रियोले से और उन्होंने ये गीत मांगा है अपनी चार बेटियों के लिए, दो बेटों के लिए, बहू दीपिका के लिए और वियांश और शिवांश के लिए, तो और शिवांश के लिए, माफ कीजिए, वियांश और शिवांश के लिए। तो चलिए सुनते हैं हम लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज़ें आशाओं की इस माला में।

सावन ये आशाओं को का आता रहे और इस सावन में मन आपका हमेशा बारिशों की तरह भीगता रहे खुशियों में। चलिए जरा हम माँ बढ़ते हैं फिल्म उमंग के गाने के साथ और इस गाने की प्यारी सी फरमाइश की है नवीन जी ने मोताए ब्लॉन्स से। चलिए नवीन जी की पसंद का ये गाना उन तक पहुंचाते हैं, मन में जितनी उमंगें हैं उनकी

और अब तो चलिए जरा हम पेश करते हैं वो गाना जिसकी फरमाइश हमसे धानी जी ने की है, और ये गाना आप सुनिएगा फिल्म वो कौन थी मूवी से दिया गया, और ये गाना लता मंगेशकर जी की आवाज़ में है। बौशाही के धनी जी ने ये गाना मांगा है अपने अपने पोते यश और हेमिश के लिए। तो चलिए सुने हम वो गाना जिसकी फरमाइश धनी जी कर रहे हैं, जिस गाने को धनी जी सुनना चाह रहे हैं।

सातों जन्म की मोहब्बत की बात की जा रही है अगले गाने में और ये गाना है फिल्म दिलवाले से लिया गया और दिलवाले मूवी का ये गीत हम पेश कर रहे हैं सुदेवी जी की पसंद पर। सुदेवी जी जो रहती हैं वाकवा उन्होंने इस गाने की फरमाइश की है अपनी दीदी ललिता के लिए और कुशल फैमिली के लिए जो थियोले के रहने वाले हैं, दीदी सुनीता शुभा देवीना के लिए, मालेगा के पूरे रामरतन और कुआहू परिवार के लिए। तो चलिए हम ये गाना गुनगुनाते हैं साथ में कुमार सानू और अलका याग्निक के।

0: की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: दिलों की आवाज में हम आपके दिल की आवाज सुन भी रहे हैं, आपके दिल की आवाज सुना भी रहे हैं। इनफैक्ट आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 4028070 पर, मैसेजेस भेज सकते हैं 5250-6200 पर, और अपने दिल की आवाज़ यानी कि आपके दिल में कौन सा गाना सुनने की इच्छा है वो हमें बता सकते हैं। तो चलिए ज़रा हम इस बार नंदा जी की पसंद का गाना पेश करते हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का ये गाना है। ये गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में दोस्ती मूवी से लिया गया है, और ये गीत हम पेश कर रहे हैं नंदा जी की तरफ से उनके बच्चों के लिए, उनकी बहू के लिए, पुनीता फैमिली और गणेश फैमिली के लिए।

आवाज तो आप जरूर दीजिएगा क्योंकि सुनने वाला आवाज सुनकर ही आ जाएगा और ये आवाजें होती हैं दिल से निकली हुई इन आवाजों को उनके दिल तक पहुंचते देर नहीं लगती। चलिए जरा आवाजों की जो बात की हमने अमित कुमार की आवाज में भी आवाज वाली ही चर्चा सुनते हैं हम। जी हाँ, आमने सामने मूवी का ये गाना है और इस गाने की फरमाइश की है सूरज शर्मा सजादा जी ने। सूरज जी ने इस गाने की फरमाइश अपने बेटे निशाल के लिए की है और पूरे बिसेसर परिवार के लिए की है, सखी हंसिनी के लिए की है और हमारी पूरी टीम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज जी। सो चलिए आपकी पसंद का गाना हम साथ मिलके सुनते हैं अमित कुमार की आवाज़।

7:50 हुए हैं। चलिए जरा हम इस बार पेश करते हैं गिरीश हरलोल जी की पसंद का गाना, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों का ये गाना है। चलिए जरा जवानी दीवानी मूवी का ये गाना सुनते हैं हम।

जन्मदिन बड़ा स्पेशल दिन होता है और स्पेशल दिन है आज रणधीर जी का, रणधीर कुशल जी का, जो तो योले के रहने वाले हैं और रणधीर जी को स्पेशल डे पर स्पेशल विशेस मिले हैं पत्नी नताशा की तरफ से। बहुत बहुत मुबारक हो आपको रणधीर जी, आपका ये जन्मदिन, आपकी माता जी ललिता कुशल आपको बहुत सारी बधाइयाँ और बहुत सारा आशीर्वाद दे रही हैं, आपके बेटे शायन सोन और बेटी श्रेया और पूरा कुशल परिवार मिलकर आपको मंगल कामनाएं दे रहा है। और साथ ही साथ आपके भाई अजय, भाभी आशना, बहन आरती और जीजू विकास आपको मंगल कामनाएं दे रहे हैं। और जो नेफ्यू निसेस हैं वो कैसे बोल सकते हैं आपको हैप्पी बर्थडे कहना, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू रणधीर जी, आपको ढेर सारी दुआएं आपकी माता जी की तरफ से।

फूलों जैसा जीवन हो आपका, पंखड़ियों जैसी हो खुशबू आपकी, और आपके जीवन में ऐसी खुशबुएं बिखरती रहें जिससे जिस खुशबू से आपके जीवन में हमेशा हमेशा सौंदर्य बढ़ा रहे। चलिए जरा हम आपके नाम करते हैं ये अगला गाना। ये होगा मुकेश की आवाज़ का गाना, मैं नशे में हूँ मूवी का ये गीत है, और ये गाना हम पेश कर रहे हैं ताया के रफीक मोहित जी के लिए उनकी फरमाइश पर, और यही गीत हम पेश कर रहे हैं प्रियोले की ललिता जी की तरफ से उनकी सखियों के लिए, छोटी जी और प्रभावती के जी के लिए, और भाई आत्माराम भाई हरीश जी के लिए।

0: दिलों की आवाज़
1: दिलों की आवाज़। दो घंटे का ये शो है, एक घंटा बीत चुका है, एक घंटा लगभग 50 मिनट अभी बाकी है और इसमें हमारा आपका जो रिश्ता है दिलों का, ये और भी गहरा होता जाएगा। दिलों की ये तार छिड़ जो गए हैं तो इन तारों में समा गए हैं हमारे श्रोतागण। चलिए ज़रा हम पेश करते हैं ये अगला गाना। ये होगा फिल्म हम तो मोहब्बत करेगा से और बहुत स्वीट सा मैसेज मिला है हमें दागन जी की तरफ से, श्वेता, रवीश और प्रिशा तथा लवेशा की तरफ से। और ये गाना हम इन सब की तरफ से पूरे अपाड़ू परिवार के लिए पेश करते हैं खुशनुआ की। तो चलिए सीधा खुशनुआ तक पहुँचाते हैं हम ये गाना। कुमार सानू की आवाज़, अलका याग्निक की आवाज़ और साथियों की आवाज़ सब।

सो ये गाना हम पेश कर रहे हैं देवदास मूवी का, जिसे मांगा है हमारी श्रोता श्यामा रघुनंदन जी ने गौगुप से। तो ये गाना हम पेश कर रहे हैं श्यामा जी की तरफ से उनकी सखियों के लिए, वीना रामफल जी के लिए और साथ ही साथ विश्वानी दुखी जी के लिए, वीना रामफल जी के लिए, विश्वानी दुखी जी के लिए और भैया जयप्रकाश के लिए और भतीजों के लिए युधिष और केशव के लिए।

चलिए जरा हम गिरीश हरलोल जी की पसंद का गाना पेश करते हैं, थोड़ा गुनगुनाएंगे साथ में और गिरीश हरलोल जी की आवाज़ भी मिलेगी इन आवाज़ों में। ये आवाज़ें होंगी कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की तू चोर मैं सिपाही मूवी का गाना।

चले चलते हैं हम गुडलैंड्स की ओर, बाहुश गुडलैंड्स की संध्या जी की फरमाइश की ओर। संध्या जी ने मांगा है फिल्म आशीर्वाद का गाना। जी हाँ, उनके मैसेज में ये भी लिखा है कि उन्हें नहीं पता ये गाना किस मूवी का है। सो संध्या जी, ये गाना आपके लिए आशीर्वाद मूवी से लिया गया हम पेश करते हैं। और आपने इस गाने की फरमाइश की है अपने पति विनोद के लिए, सेजल के लिए, रायना, निर्वय, नेहा और आकाश के लिए। सो ये गाना आपकी तरफ से इन सबों के लिए, आपके पूरे परिवार के लिए, आपके सभी चाहने वालों के लिए, आपके सभी अपनों के लिए। तो चलिए सुनते हैं मन्ना डे की आवाज़।

मुकेश की आवाज का ये गाना आप सुनिएगा, ये है बाबू अनातवाजी की पसंद का गाना अंजू का तो बोन रहते हैं और इस वक्त दुकान में काम कर रहे हैं और बाबू अनातवाजी को हम बोन को आज कहेंगे।

चलिए जरा हम इस वक्त यानी कि 8:36 पर पेश करते हैं फिल्म आवारा का गाना है। आवारा मूवी का ये गाना आप सुनिएगा पोर्ट्रीज के इब्राहिम जी की पसंद पर। बहुत सारी दुआएं देते हुए इब्राहिम जी ने इस गाने की फरमाइश की है।

चलिए इस बार बढ़ते हैं और फरमाइश पूरी करते हैं हम राधा जी की, माफ कीजिए राधा नहीं, रेखा जी आपके नाम करते हैं हम आपकी पसंद का गाना। ये है नाजायज मूवी का गाना, आपने अपने लव राकेश बुधन जी के नाम ये गाना किया है, सो ये गाना उन्हीं के नाम जाएगा। किशोर कुमार सानू, माफ कीजिएगा, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों का ये गाना है। और चलिए ब्रीफली हम बताते हैं, रिज्यूम में पेश करते हैं रेखा जी की तरफ से राकेश बुधन जी के नाम ये गाना।

0: अभी तो चहूं और गणपति जी का नाम लिया जा रहा है, गणपति जी की आराधना की जा रही है, गणपति जी के नाम का व्रत रखा जा रहा है और गणपति बप्पा को बुलाने के कई तरह से तैयारियां की जा रही हैं। आपको गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं।
1: एमपीसी च्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीचा मंगलमय

0: शुभेच्छा। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। MBC की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। MBC wishes you all a pious गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।
1: गणपति बप्पा सबके घर में सुख समृद्धि लाए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। चलिए गणपति जी का नाम लेते हुए ये गाना हम सुन

पेश कर रहे हैं अनीता जी के लिए जो फ्रीकॉन फ्लाक की रहने वाली हैं, उनकी तरफ से उनके पूरे परिवार के लिए, उनके पति राज के लिए, बेटे आंतिश अंकुश के लिए, बहू मनीषा अशीमा के लिए, पोती हिमेशा और आद्या के लिए और पोते अंश के लिए फ्रीकॉन फ्लाक की अनीता जी ने आप सबको मंगल कामनाएं भेजी हैं गणेश चतुर्थी की।

और इस बार चलिए जरा हम हलाकू मूवी का ये गाना पेश करते हैं आपके लिए। ये गाना है रेहाना जी की पसंद का और फिर इसकी रेहाना जी ने ये गाना बड़े प्यार से हमारे इस प्रोग्राम में शामिल करना चाहा है। चलिए जरा सुनते हैं रेहाना जी की पसंद।

और चलिए जरा आप हम अंतिम गाना पेश करते हैं। ये अंतिम गाना हम पेश कर रहे हैं महेंद्र जी की पसंद पर। पालमे के महेंद्र जी ने ये गाना मांगा है और यही गीत हम पेश कर रहे हैं अनीता जी के लिए, जो क्यूपिप की रहने वाली है। और क्यूपिप की अनीता जी के नाम ये गाना करते करते हम समाप्त करते हैं आज का दिलों की आवाज़ कार्यक्रम। बस थोड़ी देर में मिलते हैं हम भोजपुरी तड़का के साथ। उम्मीद करते हैं कि दिलों की आवाज़ कार्यक्रम आपके दिल की गहराई तक पहुँच चुकी होगी। तो मिलते हैं हम भोजपुरी तड़का प्रोग्राम में।

0: भोजपुरी के सवाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का।

भोजपुरी तड़का में तुहार स्वागत करते हैं जहाँ जहाँ हो बजा हमने के कार्यक्रम में जरूर साथ दिया जा और ये हमने कई कार्यक्रम में जून गाना सुने खोज बजा वो गाना की फरमाइश जरूर करिया जा कथो तो कथों में सैंक पर सक बजा टेलीफोन करे या फिर सक बजा हमने कई कार्यक्रम में मिसाज भी भेजे सैंक डिसंक सैद जेहो सैंक पर हमने के कार्यक्रम में भाग लिए सब बजा अपन पसंद के गाना के फरमाइश मिसाज से सब बजा करे संदेश सब बजा भेजे तो चला अभी पहला गाना तो लेके सुनवाई ला जा और ये गाना हमने सब माता पिता के नाम करी जा और सब लड़का लोग के नाम भी करी जा

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में हमने प्रस्तुत करे थे जा ज्ञान महीपतलाल जी के गावल गाना और ज्ञान महीपतलाल जी के गावल ई गीत। ऐसे तो सब कोई पसंद करेला, मगर अभी पसंद करे होला हवन संजय जी। संजय जी पीछे आप कैसे गाना मंगले हवन अपन सब दोस्त लोग के नाम।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया. तो होशीला देवी रिसोल जी के गावाले को गणपति गाना हमने तहलब के खातिर बजवावत है. जा गणपति जी की वंदना करत हवन होशीला देवी रिसोल जी. और ये गणपति वंदना हमने बजावत है जा रवि और कवि जी खातिर. रवि और कवि जी हवन दुगो भाई और उनकर माता जी सुदेवी उनकर खातिर गाना मांगत हवन. उनकर आप बहुत बहुत मंगल कामना देवत हवन और उम्मीद करत हवन कि गणपति बप्पा उनकर बेटा लोग पर बहुत कृपा करियन.

विश्वानी दीपा जी के गावल गाना चला सुनी जा हमनी गमा ठोला गाना और गमा ठोला गाना तो बजेबे करब जा हमनी रणधीर जी के जन्मदिन जेबा स्त्रियल के रणधीर जी अपन जन्मदिन मनावत हवन उनकर पत्नी नताशा उनकर बेटा शायान सोन श्रेया उनकर बेटी कुशल परिवार सब कोई मिल के और उनकर माता जी ललिता उनकर आशीर्वाद देवत हवन जा उनकर मंगल कामना देवत हवन जा उनकर भाई हवन अजय उनकर बहू जी आचना और ही बहिन आरती जीजा जी विकास और उनकर सब भतीजा भतीजी भगीना भगिनी लोग सब को मिल के उनकरा जन्मदिन के मंगल कामना देवत हवन जा तो चला बिस्वानी दीपा जी के गावल ई गाना जो गमठ होला बा उनकर जीवन में डाली ला जा उनकर अभी जो न माहौल बनता उकर में डाली ला जा तो गमठ करा जा जन्मदिन अभिनंदन रन

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का में चला अब रिकुत हमनी जुबेदा होला गाना सुनी जा रहा हमारा हम तो हर जी के गावल गाना सुनी जा सुने ना जी गाना मांग ले हवन की ब्याज खोपा से ये गाना सुने ना जी अपन माँ केशी ना खातिर मांग ले हवन अपन नानी माँ खातिर अपन दादी माँ खातिर मांग ले हवन तो चला सुनी जा जुबेदा लुत लेके आए तो चला चढ़ी जा हमने लुतु में

0: भोजपुरी तड़का तड़का
1: भोजपुरी तड़का में अभी चला हमने सुनी जा बीच सीमा में जब पुलिस रोकेला तब काहे रोकेला पुलिस तो रोकेला ताकि हमने के सड़क पर सुरक्षा बनल रही तो चला हमने भी अपन अपन जिम्मेदारी निभाई ला जा और इस सड़क पर सुरक्षा बने ले रखे के हर तरह से कोशिश करी ला जा। गणेशन हरी जी के गावाली गाना हमने बजाओ थे जा उर्मिला जी खातिर उर्मिला जी गाना मंगले हो वन पिची वैसे से और ये गाना अपन पति राघव के नाम करे था वन तो चला सुनी जा हमने सड़क सुरक्षा गाना याद दिलाई दिलाई जा तो लोग अभी थोड़ा घड़ी में एगो हमने क्वीज गेम रखब जा क्वीज एगो प्रश्न करब जा तोहर से और तोहर खातिर एगो इंटरेस्टिंग इनाम भी रखल रही

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का में अभी बखत हो हमने के क्वीज के अभी कब से बोला थे जाता हो लोग के कि कार्यक्रम में गो क्वीज रखब जा तो चलो क्वीज के बखत हो गल बा और क्वीज प्रायोजित बा और शीजावाद सर्कस के बगल से तो चलो अभी इतना तो बता दिला जाता हो लोग के जीते होला के बागातिल में जिन हुआ था और शीजावाद सर्कस के दो एंट्री टिकट मिली तो लोग के तो लोग ने मतलब जीते हो ला के हमने के विजेता के तो जइया हो जा पर अपन पूरा परिवार के संगे वो यादगार एक्सपीरियंस रही तो खातिर जन्म मासिक रही थ्रिल रही ठहाका सब रही वो शानदार सर्कल परफॉर्मेंस सर्कस के परफॉर्मेंस रही सियागजावाता जिन बगातेल में लगा था वो बिफे के और सुख के सांझ के 6 बजे से रही और सामदी और दिमास के दिन के 2:30 से सांझ के 5:30 लिख रही अभी जे जस्ती जानकारी खोजब जा या फिर बुकिंग खातिर टेलीफोन करे खोजब जा तो नंबर है 5250941 5250 94 3 एक कब्बो नहीं मिस बिल्कुल नहीं मिस करिया ये है एगो मैजिकल बड़ा सा शो ना चुकिया ये बड़ा मैजिकल शो के चला था हमने के इनाम के बारे में तो सुन लेला अब चला सुनी जा

हमनी के प्रश्न प्रश्न के उत्तर देवे खातिर 4028085 पर यानी कि कथो बैंक पर टेलीफोन करके हमनी के जवाब दे जा। चला सर्कस में एगो जगला के है। चला ये देखी जा आगे कि एगो जगला के है। जगला एगो सर्कस के उ व्यक्ति है जे बहुत ही कुशलता से अपन दोनों हाथ से एगो चीज से दूसर चीज से तीसर चीज हवा में उछलते जाला और सब कोई के मनोरंजन करेला। तो एगो चीज से दूसर चीज से तीसर चीज उछलते ई सर्कस के बड़ा मनोरंजक बना देवेला। अब हमने के ई बतावा प्रश्न हमने के ई है कि एगो जगला कौन चीज के प्रयोग करेला। एगो जगलिंग बॉल के या फिर एगो फुटबॉल बूट के। एगो जगला कौन चीज के जस्ती प्रयोग करेला कौन चीज के प्रयोग करेला बल्कि एगो जगलिंग बॉल के उबिया फुटबॉल बूट्स के। हमने के जवाब द 402-8085 पर तोहर जवाब के इंतजार करत है। ये अच्छा सन प्यारा सन इंटरेस्टिंग सन इनाम पाए खातिर। अभी फिलहाल तो चला हमने तोहर खातिर प्रस्तुत करब जा आज के अगला गाना। हरिपारस कहनाक जी के गावल गाना है ई अपन परी जैसन बहू के नाम करत हवन इंदिरा जी रहे लना खुशबेल। ई गाना अपन परिनियन बहू स्मिता के नाम करत हवन।

0: हमने के प्रश्न रहल कि एगो जगला कोंची के जस्ती प्रयोग करेला कोंची के प्रयोग करेला बल्कि जगलिंग बॉल्स के कि फुटबॉल बूट्स के और ही हमने के सही जवाब देवे खातिर या फिर गलत जवाब देवे खातिर हमने के संगे एगो श्रोता हवन चले देखी जा कौन जवाब देवत हवन इ हवन उमा जी क्यूपिप्स से नमस्ते उमा जी
1: नमस्ते सुरेखा जी कैसे हो
0: हम तो ठीक ठाक बड़ी मस्त मस्त तो हर संगे हैं नहीं तो हर बीच में है तो उमा जी क्यों पिप से बोला था और ये हमने के बोला जन सर्कस बा देखे के खुशी रहेला
1: हाँ
0: खुशी रहेला सर्कस देखे के
1: हाँ
0: अच्छा तो

0: बोले तो हमने के सवाल के जवाब कौनसी है एगो जगला कौनसी जस्ती सर्वी करेला जगलिंग बॉल की एगो फुटबॉल
1: एगो जगलिंग बॉल ना
0: एगो जगलिंग बॉल ना
1: या वी
0: हाँ ये तो सही बोला था बधाई हो तारा सही जवाब मिला
1: एगो धन्यवाद
0: उमा जी उमा जी

0: ओके
1: उमा जी, तो
0: ओके
1: बहुत बहुत बधाई है तोहरा।
0: धन्यवाद जी।
1: तो उमा जी के मिला था बागा तेल में जुड़ना और शीजा पत्ता सर्कस हुआ था और तुको एंट्री टिकट और ये हो जा पर तो लोग भी सक बजा जाए जाए के तैयार रह जा अपन पूरे फैमिली के संगे संगे एक यादगार एक्सपीरियंस रही तोहर खातिर जन में मासिक रही थ्रिल रही ठहाका रही शानदार सर्कस परफॉर्मेंस में सब तोहरा मिली। सियक जवाता जो बगातेल में लगा था वो हर बिफे के और इस सुख के सांझ के 6 बजे से रही और सामदी दिमाग के दिन के 2 बजे से सांझ के 5:30 लिख रही और ये अगर जी और जानकारी खोज प फिर बुकिंग करे खोज प तो सब बच्चा टेलीफोन करे 5250943 पर। सियक जवाता बहुत मस्त रही ना चुकिया जा ये बड़ा ही मैजिकल शो रही
2: का।
1: ता आज के हमने के श्रोता हवन उमा जी क्यूपिप से

हमने के खेल प्रतियोगिता कर ली जा और ये हमने के विजेता होवन उमा जी क्यूपिप से उमा जी सुने खुजत होवन गीत गवाए होला गाना बिजमावती संपत जी के गावली गाना चल हमने उमा जी के नाम करत हैं जा।

और चला बढ़ी जा अभी 10 बजल बावरी 10 बजे से 9 बजे से हमने शुरू कर रहे हैं अपन कार्यक्रम 11 बजे लग चली अभी चलावत है जहाँ हमने प्रकाश दुखी जी के गावली गीत और एक गीत है रवि जी के पसीन पर रवि जी अपन माँ कविता के नाम करता वाली गाना और दादी माँ

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।
2: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
3: भोजपुरी तड़का
4: तड़का।
5: भोजपुरी तड़का में हमने पूर्णिमा फकीरा जी की गावाली को गाना प्रस्तुत करा था। पूर्णिमा फकीरा जी मंजल गायिका हवन और उनकर आवाज के गाना हमने प्रस्तुत करे थे। जानू अल्फोंस के गायत्री जी के पसीन पर उनकर बेटा अजय का तीर, मायबू के मामी कल्याणी मोहन का तीर, लॉन्ग माउंटेन के भाभी शकुंतला का तीर, नोवेल फ्रांस के सखी गीता बाई जी खातिर।

चला अब आगे बढ़ब जा हमने अनीता जी खातिर बजाओ जाहे को गाना अनीता जी फ्लिकों फ्लाक से मंगले हवानी गाना ये महेंद्र हरपाल जी के गावल गीत मंगले हवन आध्या और आध्या खातिर और राज खातिर और अनीता जी फ्लिकों फ्लाक से सब को के शुभ रात्रि बोले हवन

जयहर लाल जी के गावल मच्छी मरवा गाना हमने बजावा था जब वाकवा के अबू जी के पसीन पर अबू जी ये गाना मंगले हवन अपन पूरा परिवार खातिर उनकर परिवार में हवन जा अफेज असलम आया जायान जाहिरा कलाचोटी रईस और ये अपन दोस्त अपी खातिर भी मंगले हवन ये गाना उनकर पत्नी खातिर और ये रकीबाजी खातिर

और अब चला चमेली होला गाना सुनी जाहनी सुनीता ननकू जी के गावल सुनीता जी गाना सुनंत जी के गावल गाना अमृता जी मंगले हवन पितो से अमृता जी गाना मंगले हवन अपन लैकल खातिर सोनिया और परी खातिर बेटा विशान और पतो मीनाक्षी खातिर और पूरा गणेश परिवार खातिर

घूमते घूमते तो चला हमने बकुआ पहुंच जाए राजा। बकुआ से फिसवानी धुमन जी मंगले हवानी गाना, एक गाना सुनीता ननकू जी के गावल तो चला। ई गाना तोहर नाम करे थे जस फिसवानी जी, और ई गाना तोहर बगल से तोहर बहिनी इंदिरा शारदा खातिर, सहेली नीला प्रतिभा खातिर, शोभा जी खातिर, और गीता गजाधर

विनोद शिवदत्त जी के गावे ली गाना हाउ रिपीति पिनी पीमा होला गाना सुने खोजा था हवन सुदेवी जी गाना बाकुआ से मंगले हवन दीदी ललिता खातिर कुशल फैमिली खातिर दीदी सुनीता दीदी शोभा देवीना खातिर मालिका के राम रतन परिवार हृदय परिवार और कुवारू परिवार खातिर

गीतवा हमने बजावत है जा सूरज शर्मा सजादा जी खातिर और ये गाना सूरज जी मंगले हवन अपन पूरा सजादा परिवार खातिर और विशेषर परिवार खातिर और ये गीत सुनत है जा हमने पूर्णिमा फकीरा जी की आवाज में

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का।
2: चलो भोजपुरी तड़का में हमने सब्जी दादी के बारे में सुनी जा। सब्जी दादी आवेला ना अपन पैया लेके आवेल।

अपन पहिया में कितना तरह के सब्जी लेके आवेलन। चलो ये सब सब्जी के नाम भी सुनब जाए, सब्जी के बारे में भी सुनब जाए। जे काल सोचते हुए कोची पकाई बताए, ये गाना से सकेला तोहरा एगो विचार त मिल जाए कोची पकाई बा। यह गाना प्रीतम कुमार दुचवा जी के गावल, और ये गाना मंगलवान हमनी से रतन जी घोंबे से। रतन जी ये गाना अपन पत्नी करुणा के नाम करत हवन।

बहल गौरी सुग्रीव गौरी जी के गावाली गाना मामा और पापा और अगवा के लेके महेंद्र जी बंगले वाली गाना पाल माँ से दीदी मान के भी सुनवाई खोजा था वन चलो सुनी जा।

दिलीप जी के पसंद के गाना चला सुनीजा घोड़वा घुड़ दौड़वा। घोड़वा जब धोगेला सांदे में उसमें तो मनवा कैसे धक धक करेला। ऐ सुनी जा हमने जवाहरलाल चोईते जी के गावल गाना है और दिलीप जी अपन सब संगति आलू के नाम कर ले हमारी गाना।

0: घोड़वा दौड़ेला सौदे मौसम में और फटफटवा सीमा पर दौड़ेला
1: भोजपुरी तड़का
0: हाँ जी भोजपुरी तड़का में तो लोग के घोड़वा के बारे में सुनवाई ली जाता फटफटवा के बारे में भी सुनवाओ अब जा फटफटवा गाना व्यास परसेनो जी गए होवन और व्यास परसेनो जी के गावल ये गीत हमने बजावत है जा अवनी खातिर अंगलेतिया में रहलन अवनी अपन जन्मदिन मनैलन 9 तारीख के और ये अभिलेख उनका परिवार जन्मदिन के माहौल बनैले रखले हवन जा राजन लक्ष्मण जिला फ्लोगा से टेलीफोनी करलन और बोलन कि उनकर नातिन हवन अवनी अवनी के जन्मदिन के शुभकामना उनका पूरा परिवार देवत हवन जा पूरा परिवार के सदस्य लोग देवत हवन जा उनकर पापा अरविंद उनकर मामा निष्मा बहिन अरुषि मामू मामी उनकर कजिन लोग हवन जा नानी प्रेमिला भी हवन जा हवन दादी प्रेमिला भी हवन और इस संगे में संगे संगे हवन मामी दू चाचा अमर मामा आश पापू सूरज भाई संदीप भाई सैनिश और पूरा लक्ष्मण परिवार

चला अभी कुछ हमने के लॉन्विरोनमेंट के बारे में सोची जा हमने के पर्यावरण के बारे में सोची जा हमने के पर्यावरण उधन हा जन के बचा के रखे के चाहला हमने के लइका लोग खातिर हमने के अगले की पीढ़ी लोग खातिर अगला पीढ़ी में जी खुद अपन लइका लोग के संग सुरक्षित रखे के तो अपन लॉन्विरोनमेंट के पर्यावरण के सुरक्षित रखे चाहिए। ये गाना हमने सुना था जा ईश्वर दत्त जीनिया जी के गावल।

गमटवा तो होते बा फकीर गमटवा के समय पूरा हुआ था। अभी तो 11 बजे होला बा, 3 मिनट बाकी बा 11 बजे में हो रही हमने के कार्यक्रम में भोजपुरी तड़का के समाप्त तो हुई में किशोर की में आज के गावली गाना सुनते रह जा और गमटवा में अपन दिल लगाई ले रह जा। आवत हला फिर मिलब जा आवत हला तक हम तो हर जाग्या चाहते हैं। शुभ रात्रि नमस्कार। अभी थोड़ा घर में सुनहरे पल कार्यक्रम सुनिया जाए गिनीशा से।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम। हाँ जी दोस्तों, आप सभी लोगों का बड़े प्यार से हम स्वागत करना चाहेंगे इस खूबसूरत से शो में जिसका नाम है सुनहरे पल, सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। वैसे जिंदगी की भागदौड़ में कभी कभी ना जरूरी होता है कि थोड़ा सा हम रुक जाए और मुड़कर देखे उन हसीन लम्हों की तरफ जो आज भी दिल के किसी कोने में महफूज हैं। तो आइए उन्हीं यादों को फिर से महसूस करते हैं पुराने बॉलीवुड के अमर गीतों के साथ। मैं हूँ आरजे गिनिशा और आपका साथ दूंगी सुनहरे पल में, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर।

हर पुराना गाना सिर्फ एक धुन नहीं होता है, वो होता है एक कहानी, एक एहसास और एक खूबसूरत याद। आज की रात हम सजाएंगे उन्हीं अनमोल नगमों के नाम जो वक्त के साथ साथ और भी हसीन हो गया है। तो दिल खोल कर बैठ जाइए मेरी जान, क्योंकि शुरू हो रहा है, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका सुनहरे पल आपके और हमारे बीच में ऑन रेडियो मॉरिशस। कभी रेडियो के पास बैठकर पूरा परिवार गाने सुना करता था, तो कभी कैसेट रिवाइंड होती थी सिर्फ एक ही फेवरेट गाने सुनने के लिए। आज उन्हीं यादों की खुशबू लेकर हम फिर से लौट आए हैं और गिनिशा बस बड़े प्यार से लेकर आए हैं कुछ ऐसे गिने चुने नगमे फॉर यू माय डियर लवली लिसनर्स, जो बड़े प्यार से आप भी हमारा साथ दे रहे हैं सुनहरे पल में। यादों और सुरों का ये खूबसूरत सफर जारी है आपके और हमारे बीच में।

वो जमाना याद है आपको जब रेडियो के आसपास पूरा परिवार बैठकर गीत सुना करते थे। बिल्कुल जी, आज हम फिर से वही माहौल लेकर आए हैं। तो अपनी यादों की किताब खोलिए और हमारे साथ इस सफर में जुड़ जाइए। मैं हूँ गिनिशा, जो साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पल। और ऑफ कोर्स इस पल को हम खास बनाएंगे इस गीत के साथ।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: फोटो एल्बम्स, पुरानी डायरीज और वो पहला प्यार। बिल्कुल जी, फोटो एल्बम्स, पुरानी डायरीज और वो पहले प्यार की यादें, सब कुछ याद आ जाता है जब पुराने गीत बजते हैं ऑन रेडियो मॉरिशस। आज फिर वही सफर हमने शुरू किया है आपके और हमारे बीच में, जो चलेगा रात के 12 बजे तक। मैं हूँ गिनिशा और आप सुन रहे हैं सुनहरे पल, और हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी।

0: सुनहरे पल सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: रेडियो की दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास तब होता है दोस्त जब पुराने बॉलीवुड के गीत दिल की दहलीज पर दस्तक देते हैं। हर सुर एक कहानी, हर नगमा एक याद और हर लफ्ज एक मुस्कान लेकर आता है। तो आज के इस यादों भरे सफर में हमारे साथ बने रहे। ये है सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस, जहाँ बीते कल की खुशबू आज भी महकती है और हर गीत दिल से जुड़ा होता है।

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, फिर से मिलेंगे एक और खूबसूरत सुनहरे पल वाले शो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर, और प्लीज अपना ख्याल रखना।

0: ABC Radio 24 hours a day.
1: दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए

0: सी रेडियो, वजह मुस्कुराने की।
1: मैं एक और एक डायरेक्टर के साथ काम काफी कर चुका हूँ, जैसे नासिर हुसैन, तो वो भी ऐसा करते थे कि गाना बनाने के टाइम में मेरे साथ शॉर्ट डिवीजन करते थे। कभी कभी वो क्या करते थे कि तुम गाना बनाओ, मैं शॉर्ट डिवीजन करूँगा। तो कभी कभी मुझे बोलते थे कि पहले शॉर्ट डिवीजन करके देता हूँ, तो पूरा शॉर्ट डिवीजन बताते थे और उस शॉर्ट डिवीजन से गाना निकलता था।